रस भोगण अत रूप रस माते इन संग सूख न पाया धन धन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम त्याया जाए बसो वडभागणी सखिए संतां संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग व्यापै चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चल सरनी पाइए प्रेम बिछोहो ना मोह व्यापै नानक हर एक त्याईए दृष्ट धार मन बेदिया प्यारे रतड़े सहज सुपाए सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच पजाए नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया

आदि एक रूप सगलोपासारा आपे बंज आप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाई जत जत जाइए।

आप ही पुजारी आप ही देवा, आपह जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभव आप ही जरना, रहाउ आप ही मस्त आप ही बोलना, आप ही अशालना जाई चलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संग रचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना, बलाव महला पंजवा, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारी, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी। रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा। बलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पौ सब अपना, कमन सो मत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोभा मेरे आंगन। रहाउ अनक जुगत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मन है उदारो, मत बुद्ध सुत नाही चतराई, ता मिली है जा लई मलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया। कहो नानक सफल सो आया, बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटाया।

मन तन निर्मल पाप जल खीना कहो नानक प्रभ पये परसीना बिलावल महला पंजवा सगल मनोरथ पाई है मीता चरण कमल स्यों लाई है चीता हौ बलिहारी जो प्रभु ते आवत जलन बुझै हर हर गुण गावत रहाउ सफल जन्म होवत बड़ पागी साध संग रामह लिव लागी मत पत धन सुख सहज आनंदा एक निमुख न विसरहु परमानंदा हर दर्शन की मन प्यास कनेरी भणत नानक शरण प्रभ तेरी।

मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभु घर मह आया रहाऊ। भगत वचल पै काट नहारी, संसार सागर अब उतरी पारी। पतत पावन प्रभ बिरद भेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैन पेखिया। साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायन। बलावल महला पंजवा, कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा। प्रभ अवनासी अलख अपेवा, गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे।

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारै मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन तन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंधकूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवां, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घणे, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहि ना गणे रहाव। सगल सरंजाम करे प्रभ आपी, भय मनोरथ सो प्रभ जापी। अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर बेधाता। साध संग नानक रंग माणिया, कर आया पूरे गुर आणिया। बिलावल महला पंजवां, सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव। हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खवार साख नर थीवे। राम नाम होआ रखवारा, चख मारो साकत बेचारा। निंदा कर कर पचह कनेरे, मृतक फास गले सिर पैरी। कहो नानक जपह जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बुलावल महला पंजवां, कर चौथा दुपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कवन संजोग मिलो प्रभ अपने। पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो। कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर न काहू बेरे। बिलावल महला पंजवां, चरण कमल प्रभ हिरदय त्याय। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटिया दीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान रहाओ। अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवां, शांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। ताप पाप संताप बनासे, हर सिमरत किल विख सब नासे। आनंद करहु मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैज सुवारी। बिलावल महला पंजवां, ममता मोह त्रोह मद माता। बंधन बांधिया अत बिकराल, दिन दिन सिजत बकार करत औद। फाही फाथा जम कै जाल, तेरी शरण प्रभ दीन दयाला। महा बिखम सागर अत भारी, उधरहु साधु संगर वाला रहाव। प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवां, सगल आनंद किया परमेश्वर। अपना बिरद समारिया, साध जना हुए कृपाला। बिगसे सब परवारिया, कारज सतगुर आप सुवारिया। वड्डी आर जा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाओ। वण तिण त्रिभवन हरिया होए, सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। बिलावल महला पंजवां, जिस ऊपर होवत दयाल। हर सिमरत काटै सो काल रहाओ, साध संग भजियै गोपाल। गुण गावत टूटै जम जाल, आपे सतगुर आपे प्रतपाल।
नानक जाचै साधरवाल बलावल महला पंजवा मन मैं सिंचहो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करहु मन मेरे आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाउ कहो नानक जाके निर्मल भाग हर चरणी ताका मन लाग बलावल महला पंजवा रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज घर आया रहाउ रज रज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम हृद माही त्याई नानक गुरपुरे।

जो जो निंद करे इन ग्रहण की तिस आगे ही मारे करतार। नानक दास ताकी सरनाई जा को शब्द अखंड अपार। बलावल महला पंजवा ताप संताप सगले गए बिनसे ते रोग। पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाऊ। सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन अरोग। गुण गावु नित राम के एह अवखद जोग। आए बसो घर देश मह एह भले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे लह गए बियोग। बलावल महला पंजवा काहू संग ना चाल ही माया जंजाल। ऊट सधारे शतरपत संतन कै ख्याल रहाव। हम बुद्ध को बिनसना एह तुर की ताल। बहु जोनी जन्मह मरह बिख्या बिकराल। सत बचन साधु कह नित जपह गोपाल। सिमर सिमर नानक तरे हर के रंग लाल। बलावल महला पंजवा सहज समाध आनंद सुख पूरे गुरदीन। सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन रहाव। जय जय कार जगतर मह लोचह सब जिया। सो प्रसन्न पए सत गुर प्रभु कछ बिघन ना थिया। जा का अंग दयाल प्रभ ताके सब दास। सदा सदा वडियाईया नानक गुरपास। राग बलावल महला पंजवा घर पंजवा चौपदी एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू घर बार। बिन सतबार ना लाग गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख बीचार। सिद्ध साधक गिरही जोगी ताज गए घर बार। रहाउ जैसा सुपना रैन का तैसा संसार। दृष्ट मान सब बिनसी है क्या लग है गावार। कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार। एक चाले एक चाल सह सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्थिर हर द्वार। जन नानक हर का दास है राख पै जुमरार। बलावल महला पंजवा लोकन किया वड़ियाईया वैसंतर पागों। ज्यो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो। जो प्रभ जियो दयाल हुए तो भगती लागो। लपट रहे मन बासना गुर मिल एह त्यागो। रहाओ करो बेनती अत घनी एहो जियो हमागो। अर्थ आन सब वारिया प्रिय निमक सुहागो। पंच संग गुरते छुटे दुख अर रागो। हृदय परगास प्रगट भया निसबासर जागो। सरल सुहागन आया जिस मस्तक भागो। कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बलावल महला पंजवा लाल रंग तिस को लगा जिसके वड भागा। मैला कदे न होवई नह लागे दागा। प्रभ पाया सुखदाईया मिलिया सुख पाए। सहज समाना पीतरी।

गुर अमर कराया, सो जानै जिन चाखिया, हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए, क्या कह मुख बोला। सफल दर्स तेरा पार ब्रह्म, गुण निध तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की, नानक कुरबाणी। बलावल महला पंजवां, रख हो अपनी सरन प्रभ, मोहे कृपा तारी, सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी, रहाओ हम अवगन करहे असंख नीत तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारी, तुम देव हो सब किश दया तार, हम अकिर्त कनारे, लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे, तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे, कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बलावल महला पंजवां, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए, जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए, कहिए काए प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा, रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा, अवर नहीं चारा, नी धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा, जो तुम करहो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता, चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावै, हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावै। बलावल महला पंजवां, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बूझै, बाद साध अहंकार मह मरना नहीं सूझै, सतगुर से ओह अपना काहे फिर हो अभागे, देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे, रहाओ कर कर पाप दर्द किया वर्तन कह ताई, माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई, जा कह किया श्रम करे ते बैर बरोधी, अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी, दास रेन सोई हुआ

मिलहु दयाल। निस्बासर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाव। जगत उदारन साध प्रभ इन लागो पाल। मोको दीजै दान प्रभु संतन पागराल। उकत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल। परम पै राखो मोहते काट हो जमजाल। बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल। गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल।

जमदूत छड जाए तुमरी कृपा ते छूती है बिनसै अहमेव सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाउ खोजत खोजत खोजिया नामे बिनकूर जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर जित जित लाभ हो तित तित लग है स्यानप सब जाली जात कात तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली सब किश तुम ते मांगना वड भागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवां गुन गाए बलावन महला पंजवां साध संगत कै बास बै कल मल सब नसना प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना रहा हर रस चाखत त्रापिया मन

सास सास सुमार करनहार जो कर रहे आ, साई वडे आई गुर पूरे अपदेसिया सुख खसमर जाई। चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुक्म पछाता नह बिन सह नह छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा महा तप्त ते भई शांत परसत पाप नाठी अंड कूप मैं गलत थे काढे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन रहाओ। परा पूर्व ला लिखिया मिलिया अब आए बस्त संग हर साधकै

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवा सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझे आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रभ चेते आई संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मह थापे कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापे पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना भया संग चलिया कमाया।

जापै, हर हर हर हर जापिए अंतर लिव लाई, के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई, सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई, महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बलावल महला पंजवा, पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत, गुरपूरा जिस पेटिया ताकै सुख परवेश, मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश। रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार, मन ते कबहु ना विसरै सो पुरख अपार, चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव, जाको कृपा करो प्रभ ताको लावो सेव, निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद, नानक कबहु ना विसरै प्रभ परमानंद। बलावल महला पंजवा, कृष्ण बुझी ममता गई नाठे भय परमा, थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा, गुरपूरा आराध्या बिनसी मेरी पीर, तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर। रहाउ सोमत हर जप जागया देखिया बिस्माद, पी अमृत तृपतासिया ताका अचरज स्वाद, आप मुक्त संगी तरे कुल कटंब उदारे, सफल सेवा गुरदेव की निर्मल दरबारे, नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन, नानक को कृपा पई दास अपना कीन। बलावल महला पंजवा, हर भगता का आसरा अन नाही ठाऊं, तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊं, कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए, निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए। रहाव संता एक त्यामना दूसर को नाहे, एक से आगे बेनती रव्या सब थाई, कथा परातन इयों सुनी भगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी, सत बचन नानक कह प्रगट सब माही, प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भओ नाही। बलावल महला पंजवा, बंधन काटै सो प्रभु जा कै कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूती है राखो हर नाथ, तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल, छूट जाए संसार ते राखै गोपाल। रहाउ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना, झूठ समगरी मन वसी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी

नानक तरिया साध संग हर हर गुण गाओ। बलावल महला पंजवां। कमन कमन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा। खर का पैखर तौ छुटै जो ऊपर लादा रहाऊ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाय महामीत तिस स्यों तेरा भेद, बीदा पंच बटवारे उपजियो महा खेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तन तन सरबस अपना प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवां। उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म अराधते मुख अमृत पीवा रहाऊ। जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच, पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अत घना।

पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिए प्रभ संग रहा वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओहो स्वरूप संतन कह विरले जोगी सर कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न भई देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करिया हरियाप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखूट

अर धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार भगत अराध है एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई बलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूरन प्रभु

लागता गुर पै अरदास रखवाला गोबिंद राए भगतन की रास तोट ना आवै कदे मूल पूर्ण भंडार चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार बस्त कमावत सब सुखी किसी ऊन ना दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सबै करहै सच थान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया बलावल महला पंजवा हर हर हर आराधिय होइय आरोग राम चंद की लष्कर का

जिस सिमरत सुख पाई है बिनसै बेयोग नानक प्रभ शरणागति करन कारण जोग राग बलावल महला पंजवां दुपदे घर पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागिया दारू नाम लिया।

प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनारबिन जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ता की निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपै अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई

पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाउ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याध मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई बलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखियन पार

ताप रोग मटाए जिवालियन जा कावड परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शिवां

दाती मिल संगत हर गुण गाए रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन।

नमस्कार दंडौत वंदना अनक बार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरत।

मन पूर रही दिन अर रात रहाउ कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन पे जात तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मलात बलावल महला पंजवा राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सोग संताप रहाओ गुण गोविंद गाव हो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे सरन सुख दाती।

अपर अपारा एक बस तीरन एक संपूर्ण एक है प्राण अधारा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूच

मह ऐठ ठीलो फूल फूल क्या पावत ही पंच दूत मूंड पर ठाटे केस गहे फेरावत ही दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी सोई रहो मद मावत ही जाल पसार चोग बिस्थारी पंखी ज्यों फहावत ही कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख त्यावत ही बिलावल महला पंजवां हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारू मन है अधारू चीत चितवो जैसे पान तंबोली रहाओ सहज समायो गुरह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रिय मुख लागो जो वड भागो सुहाग हमारो कतो ना डोली रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रिय रवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली बिलावल महला पंजवां गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते भेटे साध दयारा तब ते दुर्मत दूर पई रहाओ पूर्ण पूर रहो संपूरन शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन ते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सोच संतन ते एहो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिनको सगली सोज पई बिलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारी वर्ण ना साकह एक रुमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंदिरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किस कथन ना जाई जह जह देखा तह रहे आसमाई रहाओ जह महाभयान दुख जम सुनिए तह मेरे प्रभ तू है सहाई शरण परयो हर चरण गहे प्रभ गुरु नानक को बूझ बुझाई बिलावल महला पंजवा अगम रूप अबनासी करता पतत पवित एक निमुख जपाई है अचरज सुनियो प्राप्त भेटले संत चरण चरण मन लाई है कित विधि है कित संयम पाई है कहो सुरजन कित जुगती त्याय रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा ओह तिसकी लई लई फुन जाई है नानक सरन सरन सुख सागर मोहे टेक तेरो एक नाई है बिलावल महला पंजवां संत सरन संत टहल करी धंद बंद अर सगल जंजारू अवर काज ते छूट परी रहाऊ सूख सहज अर कनो अनंदा गुर ते पायो नाम हरी ऐसो हर रस बन ना साको गुर पूरे मेरी उल्ट तरी पेख्यो मोहन सब कै संगे ऊन ना काहू सगल भरी पूर्ण पूर रहो कृपा नित कहो नानक मेरी पूरी परी बिलावल महला पंजवा मन क्या कहता हौ क्या कहता जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे तिस आगे क्या कहता रहाऊ अनबोले को तू ही पछान है जो जीन मह होता रे मन काए कहां लो डह कहें जो पेखत ही संग सुनता ऐसो जान भये मन आनंद आन ना बियो करता कहो नानक गुर भये।

सुनो तुम भाई, जो कालर भीत गिरी है रहाओ, जो देखै शिदर तो निंदक उमा है, भलो देख दुख भरी है, आठ पहर चितवै नहीं पहुंचै, बुरा चितवत चितवत मरी है, निंदक प्रभु पलाया काल नेरह आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानक का राखा आप प्रभ स्वामी, क्या मानस बपरे करी है, बलावल महला पंजवा, ऐसे काहे भूल परे, करह करावह मूकर पावह, पेखत सुनत सदा संग हरे रहाओ, काच बेहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया मह लपटाए जरे, अंध कूप मह परे ओ प्राणी, परम गबार मोह बंद परे, कहो नानक प्रभ होत दयारा, गुर भेटै काढ़ै बाहां परे, बलावल महला पंजवा, मन तन रसना हर कीना, भय आनंदा मिटे अंदेसे,

फल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहू ना मान्यो मन सीना बलावल महला पंजवा गुरपुरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाउ निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपुरे का जपया जाप कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड परताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही ताकि शरण परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही बलावल महला पंजवा सदा सदा जपिए प्रभ नाम जरा मरा कछ दुख न व्यापै आगे दरगाह पूर्ण काम रहाउ आप त्याग परिय नित सरनी गुर ते पाइए एहो निदान जन्म मरण की कटिए फांसी साची

पंजवा अच्युत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्प रखो हर आगै सर्व जिया का है प्रतपाल रहाउ सरन समरथ अकथ सुख दाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राखै अपने को तिसनो लगै ना ताती बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्वस संत जना धन माल नानक जाचक दर्श प्रभ मांगै संत जना की मिलै रवाल बलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन भए साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास अहे रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मन तन प्रभ के चरण गहे आवन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपौ होए भजो जगदीसै इहो पदार्थ वड भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे बलावल महला पंजवा सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे सुलही हुए मुआ ना पाक रहाउ काड कुठार कसम सिर काटिया इनमह हुए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचिया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु ना रहयो सो छोड़ गया सब पाई साक कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक बलावल महला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेव आपे आप वरतै स्वामी कार्ज रास किया गुरुदेव रहाउ आद मद

हस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समरथा सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचन पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाओ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान भ्रम पै बिन सगए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास आराध नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दोवे थाम रखे गुरसूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्य हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आवन जान रहे थित पाई जन्म मरण के मिटे बिसूरे भ्रम पै तरे छुटे पै जम के घट घट एक रहे आपर पूरे नानक सरण परयो दुख भंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बलावल महला पंजवा दर्शन देखत दुख नस्ते कभो न हो वो दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्रभ तुझे

अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया महाविकार घोर दुख सागर जिसमें प्राणी गलत पया सरन परे

सुख सहज आनंद कनेरे नानक जीवै हर गुण है बखान। बलावल महला पंजवां पार ब्रह्म प्रभ भये कृपाल। कार्य सगल सवारे सतगुर जप जप साधु भये निहाल रहाउ। अंगीकार किया प्रभ अपने दुखी सगले भये रवाल। कंठ लाए राखे जने अपने उधर लिए लाए अपने पाल। सही सलामत मिल घर आए।

ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माही बस्त है तू कर कृपा प्रभे अपनी बल बल जाऊं श्याम सुंदर को कथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मोहे करहो कृपा ठाकुरे अपनी बलावन महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हृदय धर मन ध्यान रहाउ सिमर सिमर सिमर सुख दाता जाका किया सगल जहान रसना रवहु एक नारायण साची दरगाह पावु मान साधु संग परापत जाको तिन्ही पाया एहो निदान गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजै दान बलावन महला पंजवा राख लिए सतगुर की शरण जय जयकार हुआ जागे अंतर पार ब्रह्म मेरु तारन तरन रहाउ विश्वंबर पूर्ण सुख दाता सगल समगरी पोखण भरन थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरन राग बलावल महला पंजवा दुपदे घर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा ईक है निर्गुण ऊग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव नगर मह आप बाहर थुन आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा आपे ही राजन आपे ही राया कह कह ठाकुर कह कह चेरा का कौ दराओ का स्यो बल बंचा जह जह पेखो तह तह नेरा साध मूत गुर पेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा बलावल महला पंजवा तुम समरथा कारण करन ताकन तात गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराती सरन चरन रहाओ जो जो कीनो सो तुम जान्यो पेखियो ठौर नाही कछ ढीठ मुकरन बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो कोट अगा तेरो नाम हरन हमरो सहाओ सदा सद भूलन तुमरो बिरद पतत उधरन करना मैं कृपाल कृपा नित जीवन पद नानक हर दर्शन बलावल महला पंजवा ऐसी कृपा मोहे करहो संतह चरण हमारो माथा नैन दर्श तन तूर परहु रहाओ गुर को शब्द मिरहि अरै बासै हर नामा मन संग धरहु तस्कर पंच नवारहु ठाकुर सगलो भरमा होम जरहु जो तुम करहो सोई भल मानै पावन दुबदा दूर टरहो नानक के प्रभ तुम ही दाते संत संग ले मोहे उधरहो बलावल महला पंजवा ऐसी दीखिया जन स्यों मंगा

0: प्रभ मेरे।
1: पूरब प्रीत गोबिंद विचार हो रहा,
0: पतस पावन प्रभ बिरद तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जा रहो, जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारू, जन नानक प्यास चा

मन तन रब रहया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचार्यो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अभनासी नानक उचरै हर की जया बलाव महला पंजोआ बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदारन राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औद बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवां।

ताजे अभिमान अरचिंत बरानी साध है सरन पाई जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खाए महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए कहो नानक गुर पूरा पेट्यो आवन जान रहे बलाव महला पंजवा जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुर पूरे तब

दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गण का जेह सिमरत मुक्त भये जी जानो रहाओ गज की त्रास मिटी सिन्हु मह जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत ध्रुव बारक भजन माहे लपटानो अचल अमर निरभय पद पायो जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रस कहार निकट ताहे तुम मानो।

जोग जग निःफल ते मानो जो प्रभ जस बिसरावे मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावे कहो नानक एह बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावे बलावल महला नौवां जा मैं भजन राम को नाही तेह नर जन्म अकारथ खोया यह राखो मन माही रहाउ तीर्थ करे व्रत फुन राखे नह मनुआ बस जाको निःफल धर्म ताहे तुम मानु साच कहत मह जाको जैसे पाहन जल मह राखे हो पिदे नाही ते पानी तैसे ही तुम ताहे पछानु भगत हीन जो प्राणी कल मैं मुक्त नाम ते पावत गुर यह भेद बतावे कहो नानक सोई नर गरुआ जो प्रभ के गुण गावे बलावल अष्टपदियां महला पहला कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद निकट वसै देखे सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई बिन भै पै भगत न हुई शब्द रते सदा सुख होई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रस मान रहाउ ज्ञान ज्ञान कथै सब कोई कथ कथ बाद करे दुख होई कथ कहण ते रह न कोई बिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रहत साचा मन सोई मनमुख कथनी है पर रहत न होई नाम भूले थाओ न कोई मन माया बंदेओ सर जाल घट घट व्याप रहो बिख नाल जो आंजै सो दिसै काल कारज सीधो हृदय संभाल सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई मनमुख हो मैं पत गवाई आपे करतै भगत कराई गुरमुख आपे दे बड़े आई रैन अंधारी निर्मल ज्योत नाम बिना झूठे कुचल कशोत वेद पकारै भगत सरोत सुन सुन मानै वेखै ज्योत शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ामं गुरमुख शांत उत्तम करामं मनमुख जोनी दुख सहामं।

आप ना बूझै लोक बुझावै मन का अंधा अंध कमावै दर कर महल ठौर कैसे पावै हर जियो सेविया अंतर जामी घट घट अंतर जिसकी जोत समानी किस नाल क्या चलै पहनामी साचा नाम साचा शब्द जानै आपै आप मिलै चूकै अभमानै गुरमुख नाम सदा सदा बखानै सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई औगण काट पापा मत खाई कंचन काया ज्योति ज्योत समाई सतगुर मिलै वड्डी वड्याई।

गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार साधार। बलावल महला चौथा अष्टपदिया घर ग्यारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आपे आप खाए हों मेटे, अन दिन हर रस गीत गवैया। गुरमुख परचै कंचन काया, निरपौ ज्योति ज्योत मलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह ना सको बिन नावे। गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाउ, एक गिरहु दस द्वार है जाकी। अहनस तस्कर पंच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावे। मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहु मानक भरिया। जागे ज्ञान तत लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने। गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोहिता। खेवट शब्द गुर पार लंघैया, जम जगाती नेड़ ना आवे। ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावे सदा दिन राती। मैं हर जस कहते अंत ना लहिया, गुरमुख मनुआ इकत घर आवे। मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्श मन तृप्तै। श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत

लहिया एक दृष्ट सब सम कर जाने नदरी आवे सब ब्रह्म पसरिया राम नाम है जोत सबाई गुरमुख आपे लख लखिया नानक दीन दयाल पए है भगत पाए हर नाम समैया बलावल महला चौथा हर हर नाम शीतल जल त्यावो हर चंदन वास सुगंध गंधैया मिल सत संगत परम पद पाया मैं हिरड पलास संग हर बुहिया जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया सरल परे से ही जन उबरे ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहाओ पार अठारह मह चंदन उत्तम चंदन निकट सब चंदन हुईया साकत कूड़े ऊब सुख हुए मन अभमान विछड़ दूर गईया हर गत मित करता आपे जाने सब बिद हर हर आप बनैया जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवे जो तुर लिखिया सो मिटै ना मटैया रतन पदार्थ गुरमत पावे सागर भगत पंडार खलैया गुर चरणी एक शरदा उपजी मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया परम बैराग नित नित हर त्याय मैं हर गुण कहते भावनी कहिया बार बार खिन खिन पल कहिए हर पार न पावे परै परैया शास्त्र वेद पुराण पकार है धर्म करहो खट कर्म दृढ़ैया मनमुख पाखंड परम विगूते लोभ लहर नाभ भार बढ़ैया नाम जपहो नामे गत पावहो सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया हउ मैं जाए ता निर्मल होवे गुरमुख परचै परम पद पैया इहो जग वर्ण रूप सब तेरा जित लावह से कर्म कमैया नानक जंत बजाए वाजह जित पावै तित राहि चलैया बलावल महला चौथा गुरमुख अगम अगोचर त्याया हों बल बल सतगुर सतपुरखैया राम नाम मेरे प्राण वसाई सतगुर परस हर नाम समैया जान की टेक हर नाम टिकैया।

सुन गुर बचन मन पीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हम आकल बिकल पई गुर देखे, हम लोट पोट होए पैया रहाओ। हम निरखत फिरौ सब देश दसंतर, मैं प्रव देखन को बहुत मन चैया। मन तन काट देऊ गुर आगै, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा, हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट देऊ चरना तल, जो हर प्रभ मेले मेल मलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबुद्ध है, गुण कामन कर हर प्रभ लहिया। भगत वचल ओआ को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछे पैया। थिमा शिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर वड गहन गहनैया। हर हर शरदा सेज वछाई, प्रभ छोड़ ना सकै बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किश कीजै, सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया। कियो शिंगार मिलन कै ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया। हम तेरी तो अगम गुसाई, क्या हम करह तेरे वस पैया। दया दीन करहो रख लेव हो, नानक हर गुर शरण समैया। बलावल महला चौथा, मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का। खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया, गुर देखे शरदा मन पूरी। ज्यो चात्रक प्रियो प्रियो बूंद मुख पैया। मिल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाओ। रोम रोम मन तन एक बेदन, मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया। वैदिक नाटक देख पुलानी, मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया। हों खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम, ज्यो बिन अमले अमली मर गईया। जिनको प्यास हुए प्रभ केरी, तिन अवर ना पावे बिन हर को दुईया। कोई आन आन मेरा प्रभु मलावे, हों तिस विट हो बाल बाल घूम गईया। अनेक जन्म के विछड़े जन मेले, जहां सत सत सत गुर शरण पवैया। सेज एक एको प्रभ ठाकुर, महल ना पावे मनमुख परमैया। गुर गुर करत शरण जे आवे, प्रभ आए मिले खिन ढील ना पैया। कर कर किरिया चार वधाए, मन पाखंड कर्म कपट लो भैया। बेसवा कह कर बेटा जन्मिया, पिता ताहे क्या नाम सदैया। पूर्व जन्म भगत कर आए, गुर हर हर हर हर भगत जमैया। भगत भगत करते हर पाया, जा हर हर हर हर नाम समैया। प्रभ आन आन मेहंदी पसाई, आपे कोल कोल अंग लैया।

सतगुरु प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभु की, उपमा जात ना कही, ताजे आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमल अपार, हौ जाऊं सद बलिहार, मन प्रीत लागी ताहे, ताजे आन कतह ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन,

समाद चख अनद पूर्ण साध नह डोलिय इत ऊतर प्रभ बसे हर हर चीत तिन नाहे नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास ते जम ना पेख नैन सुन मोहे अनहत बैन हर सरन सूर गोपाल प्रभ भगत वस दयाल हर निगम लह ना पेव नित करह मुन जन सेव दुख दीन दर्द निवार जा की महा बिखड़ी कार ता की मित न जाने कोए जल थल मही अल सोए कर बंदना लख बार थक परियो प्रभ दरबार प्रभ करहो साधु तूर नानक मन सापूर बलाव महला पंजवा प्रभ जन्म मरण निवार हार परियो द्वार गह चरण साधु संग मन मिष्ट हर हर रंग कर दया ले हो नर लाए नानका नाम त्याई।

गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उधार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावन महला पहला थिती घर दसवा जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखिया।

कीमत पाए रहया भरपूर किस नेड़े किस आखां दूर चौथ अपाए चारे बेदा खानी चारे बाणी पेदा अष्ट दशा।

मुख शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाय सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अरादे पौन पानी अग्नि बिसराऊ तही निरंजन साचो नाउ किसमें मनुआ रहे लिव लाए प्रणवत नानक काल न खाए नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा कट कट नाथ महाबल।

देखा, फलोहार किए फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुद्रा मन अवतूता, ऐन सजागह कबह ना सूता, जागत जागर

सब सुच संयम साच पछाण तेरा सतरवर समुंद किनार अमृत मूल शिखर लिवतार डर डर मरे न बूढ़े कोए नडर बूढ़ मरे पत खोए डर मह घर घर मह डर जान तख्त नवास सच मन पाण चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गैनार बूझो हो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहि मनमुख भूले।

भिनस बनासा फूटे खपर दुबदा मनसा ममता जालते रह उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा। बलावल महला तीजा वार सत कर दसवां।

आप अपाय सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

0: वार वार
1: दिन सरहण तिवें संसार आवा गौण किया करतार निश्चल साच रहया कल धार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आद पुरख आपे सिष्ट साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटे सो जी पाए परपंच चूकै सच समाए जां कै मस्तक लिखिया लेख तां कै मन वसे।

तह काय परमे भूला आवे जाय सतगुर सेवै सो जन बूझै हमें मारे ता दर सूझै एक

साहिब की सेवक रह सरनाई, आपे बख्शे दे वड़ियाई, किसते ऊपर नाही कोए, कौन डरे, डर किसका हो।

वह मुग्ध ग्वार नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए इकत नाम सदा रहे आसमाय। बलावल महला पहला शंत दखनी।

हर धरी हर लिवलाई राम लिवलाई हर स्यो रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक मुन

आय मन सुख सुमाना राम गुरु तुठे हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम वड भागिया सुहागनी हर मस्तक माना राम हर प्रभ हर सुहाग।

तो आया नित हर हर जापै राम मेरे हर प्रभ भावै सो करै हर रंग हर रापै राम गन नानक सहज मलाया हर रस हर त्रापै राम मानस जन्म हर पाईऐ हर रावण वीरा राम गुरमुख मिल सोहागणी रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म ना पाया तिन भाग मंदेरा राम हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन तन रंग पीना राम भगत वच्छल हर नाम है गुरमुख हर लीना राम बिन हर नाम ना जीव दे ज्यों जल बिन मीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम बलावल महला चौथा सलोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो मन वसै वड भाग गुरपूरै वेखालिया नानक हर लिव लाग शंत मेरा हर प्रभ रावण आईया हौ मैं बिख झागे राम गुरमत आप मटाया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल पर गासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड भागे राम हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगट आई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ भाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो बिलक मसाई राम गुर पूरे हर मेलिया हर रस अघाई राम जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिव लाई राम हम मूर्ख मुग्ध मलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु साबास है जिन हौ मैं मारी राम जिन वड भागियां वड भाग है हर हर पुर तारी राम जन नानक नाम सलाहे तू नामे बलिहारी राम।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइये गोविंद पाइये देहो सखिए मोहे मते दिन रहन थाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया पया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ पह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथाहा साहा अटल गणया पूर्ण संजोगो राम सुख है समूह भया गया विजोगो राम मिल संते आए प्रभ ते आए बने अचरज जानिया मिल अकत्तर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत ज्योती पोत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंदिन वजह वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरण स्वामी संत संग लिव लागी बलावल महला पंजवा भाग सलखना हर कंत हमारा राम अनहद बाजितरा तिस धुन दरबारा राम आनंद अंदिन वजह वाजे दिन सरैन अमाहा तह रोग सोग ना दुख ब्यापै जन्म मरन ना ताहा रिद सिद्ध सुधारा से अमृत भगत भरे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखी सहेलरियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसै भावह एक निमख पलक ना त्यागीय गह कंठ लाइय नह लज्जाइय चरण राज मन पागीय भगत ठगौरी पाए मोह है अनत कतहु ना ताव है बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पाव है बिस्मन बिस्म भई पेख गुण अबनासी राम कर गह पुजा गही कट जम की फासी राम गह पुजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोत जनाया मरण मोह बिकार नाठी दिवस निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए। आप करता आप भुगता आप कारण किया। बिनवंत नानक।

वास्याहु सखी असि तिरका मंगल गावे है तजमान सखी तजमान सखी माते अपने प्रीतम भाव है तजमान मोह बेकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो हुए दास दासी तज उदासी बहुड़ विधि ना तावां।

नह चतर सुगर सजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप धूप ना नैन बंके जह पावे तह रख तू ही जय जय जय अम्पह सगल जाको करना पत गत किन लखो हो।

जियो सुख सागर प्रभ भेटिया नानक सुखी होत एहो जियो संत सुख सागर प्रभ पाई जब होवे भागो राम मानन मान वंजाई है हर चरनी लागो राम छोड़ सियान पचातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पवो सरनाई राम राय फिर हुए सुहागो राम सो प्रभ तज कत लागी है जिस बिन मर जाई है राम लाज ना आवे ज्ञान मती दुर्जन बिरमाई है राम पतत पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराई है राम नानक भगत भाओ कर दयाल की जीवन पद पाई है राम श्री गोपाल ना उचर है बल गईये दोहचारन रसना राम प्रभ भगत बछल न सेवही काया काक ग्रसना राम भ्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसमा राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा हों मैं बिख त्यागण राम ईत ऊत नह डोलिय हर सेवा जागण राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम बलावल महला पंजवा हर खोज हो वडभागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद।

नानक प्रभ शरणागती जप अनत तरंगे राम। एक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम। बड़ भागी मेला वड़ा गुरमुख पिर चीना राम।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रास पिन्याड़े अपने।

हरि उत्तम हर प्रभ गावया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा पाग सब दिन सरैन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिवलाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाई मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया।

हर त्यावुहु भगतोहु दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बलावल ना होवे मनमुख ताए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावनी थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है विचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति जोत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक सस्यों लिबलाई जन्म मरण दुख कटिया सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

आप सो भगतां का मित हर सब कोई हर कै वस भगतां कै आनंद घर हर भगतां का मेली सरबत सौ नसल जन टंग धार हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुगे अपड़ कोई ना सकै सब चख चख पवै झाड़ सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंद है ते ब्राह्मणा जे चल सतगुर पाई।

इस जुग में है विरले ब्राह्मण, ब्रह्म बिंद है चेतलाय। नानक जिनको नदर करे हर सच्चा, से नाम रहे लिवलाय। महला तीजा, सतगुर की सेवना कीतिया, शब्द न लगो पाओ हम मैं रोग कमावना। हत दीर्घ बहु सुआउ, मन हट कर्म कमावनी, फिर जोनी पाए। गुरमुख जन्म सफल है, जिसनो आपे लए मलाए। नानक नदरी नदर करे, ता नाम धन पल्ले पाए। पौड़ी सब वडियाइयां हर नाम विच, हर गुरमुख त्याईए। जे वस्त मंगीए साई पाईए, जे नाम चित लाईए। गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास, ता सर्ब सुख पाईए। गुर पूरा हर उपदेश दे, सब भुख लह जाईए। जिस पूर्व होए लिखिया, सो हर गुण गाईए।

सतगुरु का दर्शन सफल है। जिहा को इच्छे तिहा फल पाई, गुर का शब्द अमृत है। सब तृष्णा भुख गवाई, हर रस पी संतोख हुआ। सच वस्या मन आई, सच त्याई अमरा पद।

नानक जिने अंदर सच है से जन छपहना किसे देश पाए। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाईए जां कहो नजर करे मानस ते देवते भए सच्ची भगत जिस दे हौ मैं मार मलायन गुर कै शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई हर करतै आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन उना अंदर हिरदै पाई निंदक दुष्ट वडियाई वेख ना सकन उना पराया भला ना सुखाई। क्या हुआ किसे ही की चख मारी जां सच्चे स्यों बन आई जे गल करते पावे सा नित नित चढ़े सवाई सब चख चख।

फित की है सच भगत वडियाई सच साहेब सच्चा न्याओ है सिर निंदक शाई जन नानक सच अरादिया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा पूरे भाग सतगुर पाई है जे हर प्रभ बख्श करे।

गुणी नदान सुखदाता तेरे मन वसै हमें जाए अभमान नानक नदरी पाईए अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किस हर करावे सो ओहे करह सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कै वल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले कर सतगुर अग्गे।

कडिए हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर हरे अपनी कृपा कर हरे आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है मनमुख ध्यान ना लागे दुख विच कार कमावनी दुख वरतै दुख आगे करमी सत गुर भेटिए ता सच नाम लिव लागे नानक सहजे सुख होए अंदरो भ्रम भउ भागे। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है हर का नाउ मन पाया गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार भनत नानक सुनो जन पाई सतगुर सेवे हो हऊ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे सिर धंधा नित मार दूजे पाए सूते कबहु ना जाग है माया मोह प्यार। नाम ना चेत है शब्द ना विचार है इहो मनमुख का विचार हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा होर तहट ना वथ ना विसाहु। भगत जना को सन्मुख होवे सो हर रास लए वे मुख पास पा।

आप तरिया कुल उदरे धन जनेंदी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हमें मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा ब्रह्म भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश हो।

गुरमुख हर नाम धन ना खट्यो से दवालिए जुग माहे ओए मंगदे फिर है सब जगत मह कोई मोहे थुक ना तिनको पाए पराई बखीली करह अपनी प्रतीत खोवन सगवा भी आप नखाहे जिस धन कारण चुगली करह सो धन चुगली हाथ ना आवे ओए पावे तिथे जाहे गुरमुख सेवक पाए हर धन मिलै तितो कर्महीन लै ना सकै होर थै देश संतर हर धन

हुए कहना किशु ना जाए। नानक तिनका आख्या आप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। काल मार मनसा मनह समाणी अंतर निर्मल नाम। अन दिन जागे कदे ना सोवे सहजे अमृत पियाव। मीठा बोले अमृत बाणी अन दिन हर गुण गाव। निज कर वासा सदा सुंदे नानक तिन मिलिया सुख पाव। पौड़ी हर तन रतन जवेहरी सो गुर हर तन हर पासों देवाया। जे किसै किहो दिस आवे ता कोई किहो मंग ले अकै कोई किहो देवाए। इहो हर तन जोर कीता किसै नाल ना जाए बंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर शरदा लाए तिस हर धन की वंड हाथ आवे। जिसनो करतै तुर लिख पाया इस हर धन का कोई शरीक नाही। किसै कै खत नाही किसै कै सीव बन्ने रोल नाही। जे को हर धन की बखी

सतगुर सुख विखालिया सच्चा शब्द विचार नानक अवर ना सुजई हर बिन बख्शन हार महला तीजा हमै माया मोहनी दूजे लगे जाए ना ही मारी ना मरे ना ही हट बकाए गुर कै शब्द पर जालिए ता एह विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारन शब्द है गुरमुख पाया जाई पौड़ी सतगुर की वड़िया।

का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियोस सब जहान जे सतगुर नो मिल मन्ने सो हलत पलत सिजे जे विमुख होवे सो फिरे पृष्ठ थान जन नानक कै बल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै सब

का अन्न पांच चोर तिना घर मोहन हम मैं अंदर सन साकत मुठे दुरमती हर रस ना जानन जिन्नी अमृत भरम लुटाया देख स्यो रचहर चन दुष्टा से ती पिरहड़ी जान स्यो वाद करन नानक साकत नरक मह जम बदे दुख सहन पै किरत कमाम दे जिव राख तिवै रहन महला तीजा जिन्नी सतगुर सेविया ताणन ताने तिस सास ग्रास सदा मन वसै जम जोहे न सकै तिस हिरदय हर हर नाम रस कबला सेवक तिस हर दासां का दास हुए परम पदार्थ तिस नानक मन तन जिस प्रभ वसै हम सद कुर्बान है तिस जिनको पूर्व लिखिया रस संत जना स्यो तिस पौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेश्वर सुनिया सोई वर्तिया जगत मह कट कट मुख भणिया बहुत वड्याईया साहिब है नह जाही गणिया सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे ज्यों बनिया।

आनंद वडभागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ नाम मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुरु बख्श लई।

राजा परजा सम कर मारे ऐसो काल बडानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे आवह ना जाहे ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र।

आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुर जार गयो भ्रम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत खोई मेरे परम भूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ता एकै जाने अबह ना माता सो कबो ना माता कह कबीर रामे रंग राता बलावल ग्रह तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजो विकार ना छोड़ई पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो पवजन निद पारी राख राख मेरे बीठला जन सरन तुम्हारी रहाओ विखै विखै की बासना तजी नह जाई अनक जतन कर राखी है फिर लपटाई जरा जीवन जोबन गया।

दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाखस नख बिदरियो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो।

को जन कहा करह बेचारी रहाउ त्रिग तन त्रिग धन त्रिग एह माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फन्नी जिस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचन्नी क्या खेती क्या लेवा दे परपंच झूठ गमाना कह कबीर ते अंत बिगूते आया काल निदाना बलावल शरीर सरोवर पीतरे आछै कमल अनूप परम ज्योत प्रखोतमो जा कै रेख न रूप रे मन हर पज भ्रम तजहो।

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार कह कबीर सेवा करहु मन मंज मरार बलावल जन्म मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समानिया गुर साखी जागी रहाओ काशी ते धुन उपजै धुन काशी जाई काशी फूटी पंडता धुन कहां समाई त्रिकुटी संध मैं पेखिया घट हूं घट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी घट माहे त्यागी।

चरण कमल जा कह हृदय बस है, सो जन क्यों डोले देव, मानो सब सुख नौ निदता कै, सहज सहज जस बोले देव रहाउ, तब एह मत जो

बर्ण अबर्ण रंक नहीं ईसर बिमल बास जानी है जग सोए रहाउ ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए हुए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह।

की कार में एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म ना नासे सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रास रहाऊ एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे।

जो हर जन नीच जात सेवकान, गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तह वरतै, जिहा हर कराए तिहा को करै, सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दू रख लई, मेरे मन हर जप हर नित पड़ै, हर बिन को मार जवाल ना साकै, ता मेरे मन कायत कड़ै रहाउ, हर परपंच किया सब करतै, विच आपे अपनी जोत तरै, हर एक को बोलै हर एक बुलावै, गुर पूरै हर एक दिखै, हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चोरै, निह कपट सेवा कीजै हर केरी, ता मेरे मन सर्ब सुख पई, जिस दै वस सब किश सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्यई, जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद ले छड़ै, गोंड महला चौथा।

मेरा वीर, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर, जन नानक की हर आस पुजावहु, हर दर्शन शांत शरीर, शका एक राग गोंड महला पंजवा, चौपदे कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब करता सब भुगता रहाउ, सुनतो करता पेखत करता, अदृष्टो करता दृष्टो करता, ओपत करता परलो करता, व्यापत करता लिपतो करता, भक्तो करता बूजत करता, आवत करता जात पी करता, निर्गुण करता सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कपक की न्याई, तू उर्ज रहो संपाए ले, पग धार है सास लेख लै, तो उदर है हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़ आवाए ले, अपने

राग गोंड महला पंजवा चौपदे हर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कै परे पंडार सगल कटां देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटै कोट अग निमक जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा नाम संग कीनो व्यवहार नामो ही इस मन का आधार नामो ही चित कीनी ओट नाम

गुण महला पंजवा नमाणी कौ जो दे तो मान सगल भूखे कौ करता दान गर्भ घोर मह राखनहार तिस ठाकुर कहो सदा नमस्कार ऐसो प्रभ मन माहे त्याय काट अवकट जत कतह सहाय रहाउ रंक राहो जा कै एक समान कीत हस्त सगल पुराण बियो पूछ न मसलत धरै जो किछ करै सो आपै करै जा कायंत न जानस कोए आपे आप निरंजन सोई आप अकार आप निरंकार काट काट काट सब काट आधार नाम रंग भगत भय लाल जस करते संत सदा निहाल नाम रंग जन रहे अगाए नानक तिन जन लागे पाए गोंड महला पंजवा जा कै संग एहो मन निर्मल जा कै संग हर हर सिमरन जा कै संग किल बिख होहे नास जा कै संग हृदय परगास से संतन हर के मेरे मीत केवल नाम गाइए जा कै नीत रहाउ जा कै मंत्र हर हर मन वसै जा कै उपदेश परम पौ नसै जा कै कीर्त निर्मल सार जा की रेन बांछै संसार कोट पतत जा कै संग उधार एक निरंकार जा कै नाम आधार सर्ब जिया का जान पेओ कृपा निदान निरंजन देव पार ब्रह्म जब पये कृपाल तब पेटे गुर साध दयाल दिन रैन नानक नाम ते आय सुख सहज आनंद हर नाय गोंड महला पंजवा गुर की मूरत मन मह ध्यान

गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहे आसमाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोविंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्व पूज चरण गुर सेव, गुर बिन अवर नाही मैं थाऊ, अन बिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ, गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है बड़ भागी,

नानक दास गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करहे सलाम लूट ले साकत पत खोवे सात जना पग मल मल धोवे पंच पूत जने एक माई उत्पुज खेल कर जगत व्याय तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छड़ाई जिसके सेतन रखे हटाई कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब हुए खुआर गोंड महला पंजवां कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उर तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा का अंतर जामी।

नानक निस्तरिए गोंड महला पंजवा गुर के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध इस तन ते मार होए रही है सगल की रीना घट घट रमैया सब महचीना इन बिदरम हो गोपाल गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ जी प्राण को एह सुआओ ताज अभमान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर स्यो मन रंग जिन तू किया तिस को जान आगे दरगाह पावे मान मन तन निर्मल होए निहाल रसना नाम जपत गोपाल कर कृपा मेरे दीन दयाला साधु की मन मंगेर वाला हो दयाल देहो प्रभ दान नानक जप जीवै प्रभ नाम गोंड महला पंजवा धूप दीप सेवा गोपाल अनक बार बंदन करतार प्रभ की शरण गही सब त्याग गुरसो प्रसन्न भये वड़ भाग आठ पहर गाइय गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ हर गुण रमत भये आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बख्शंद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मलाए कर्म धर्म एह तत् ज्ञान साध संग जपिए।

कृपा तार पंच दूत भागे बिकराल जुए जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख अनद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवार पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हार औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिय भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए कर्म कारण समरथ दयार सर्वनदान महा विचार नानक बख्श।

उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन।

गुण महला पंजवा संत का लिया तर्त बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभ हाथ संत कै संग बसे दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोए जो निंदा तिसका पतन होए जिस को राखे सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया बसास जियो पिंड सब तिसकी रास नानक को उपजी प्रतीत मन मुख हार गुरमुख सद जीत गुण महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहि निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहे आधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पानी दायन नारायण सद सद बख्श।

साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जा कौ राख राखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ मह अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पोह है साध संग जपै

जाए, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरण आए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाई, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कूनाल, है पी साचा होवनहार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवां।

समीत नाय सहरख नहीं इस सोग, सब किस इसका यह करने जोग, ना इस बाप नहीं इस माया, यह अपरंपर होता आया, पाप पुन का इस लेप न लागे, घट घट अंतर सद ही जागे, तीन गुणा एक सकत उपाया, महामाया ता की है छाया, अछल अछेद अभेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ताकी गत मित कछु ना पाए, नानक ताके बल बल जाए, गोंड महला पंजवा, संतन के बलिहार जाओ, संतन के संग राम गुण गाओ, संत प्रसाद किल लिख सब गए, संत सरन वड भागी पए, राम जपत कछ बिघना व्यापै, गुरु प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ, पार ब्रह्म जब हुए दयाल, साधु जन की करै रवाल, काम क्रोध

जागे चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद रौ सच व्यापार दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन तूर राग गोंड अष्टपदियां महल।

उमराओ पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जयकार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाही, सगल पै मिटे जाकी सरन, निंदक मार पाए सब धर्म।

जो नर होवे है तीन भवन में अपनी खोवे है छोड़ है अन्न करह पाखंड ना सुहागन ना ओहे रंड जग में बक्ते दूधा तारी गुप्ती खाव है बटका सारी अन्न बिना ना हुए सुकाल तजय अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जानिया तन अनाद ठाकुर मन मानिया राग गोंड बाणी नाम देव जी की कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद असमेद जगने तुला पुरख दाने पराग इशनाने तौ ना पुज है हर कीर्त नामा अपने राम है भाजरे मन आलसिया रहाउ गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पढ़ता सगल कर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं पाज नामा तरस पाव सिंदं गोंड नाद ब्रह्मे जैसे मृगाए प्राण तजे वाको ध्यान ना जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत ना फेरो रहाओ ज्यों मीना हिरे पशुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यों बिखी हिरे परनारी कौडा डारते हिरे जुआरी।

दास बलाए निश्चो नानक करते पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संद मलाए दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध भेटन को आई निश्चो देह वड्याई गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अवनासी हौ तुझको बलिहारिया रहाउ सिद्ध साधक जोगी अरजंगम एक सिद्ध जिन्नी त्याया परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिनको आया जप तप संयम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक भेट्यो साचे शब्द नबेरा राम कली महला पहला सुरती सुरतर लाइए एत तन कर तुलहा लंघ जेत अंतर पाहे तिसे तू रख अहनस दीवा बले अथक ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सोजी पाए रहाओ हसी मिट्टी सोजी होए ताका किया माने सोए करनी ते कर चको ढाल एथे उथे निभही नाल आपे नदर करे जा सोए गुरमुख विरला बूझे कोए तित घट दीवा निश्चल होए पानी मरे ना बुझाया जाए ऐसा दीवा नीर तराए डोले वाओ ना वड्डा होए जापे ज्यों संघासन लोए खतरी ब्राह्मण सूद के वैस निरत ना पाइया गणी सहंस ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो पारंगत होए राम कली महला पहला तुदनो निमन मनन तेरा नाऊ साच भेट बैसन कौ थाऊ सत संतोख होवे अरदास ता सुन सद बहाले पास नानक बिरथा कोए ना होए ऐसी दरगाह साचा सोए रहाउ प्राप्त पोता कर्म पसाउ तू देव है मंगत जन चाउ भांडे भाउ पवे तेत आए तुरते छोड़ी कीमत पाए जिन किश किया सो किश करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक तकार कह मंगत जन मांगत मान ना पाया सहकियां गल्लां दरकियां बातां तैं तां कहन कहाया राम कली महला पहला सागर मह बूंद बूंद मह सागर कमन बुझे बिद जाने उत पुज चलत आप कर कीने आपे तत पछाणे ऐसा ज्ञान बिचारे कोई तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाउ दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकि गत मित अवर न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख मह नार नार मह पुरखा बूझो हो ब्रह्म ज्ञानी तुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन मह जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिनकै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जा हर प्रभ कृपा तारी ता हों मैं विचों मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी बीचारी सो हर जन हर प्रभ पावे अहनस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ टुन वाजे अनहद घोरा मन मानिया हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद बेद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तह तीर्थ वर्त तप सारी गुर मिलिया हर निस्तारी जह आप गया पौ भागा गुर चरणी सेवक लागा
गुर सतगुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मलाया। राम कली महला पहला, साधन भोजन मांगत भागे, खुदिया दुष्ट जले दुख आगे। गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावे जन कोई। जोगी जुगत सहज घर वासे, एक दृष्ट एको कर देखिया। भीखिया पाए शब्द तृप्ता सह रहाउ, पंच बैल गडिया देह धारी। राम कला निबह पत सारी, धर टूटी गाडो सिर भार। लकड़ी बिखर जरी मंज भार, गुर का शब्द विचार जोगी। दुख सुख सम करना सोग बियोगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी। अस्थिर कंध जपे निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा। काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन मह मुंदरा हर गुर सरना। नानक राम भगत जन तरना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम कली महला तीजा घर पहला, सतजुग सच कह सब कोई। घर घर भगत गुरमुख होई, सतजुग धर्म पैर है चार। गुरमुख बूझै को बीचार, जुग चारे नाम वडियाई होई। जे नाम लागै सो मुक्त होवै, गुर बिन नाम ना पावै कोई। रहाउ त्रेतै एक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जानन दूर। गुरमुख

जान है दोई, द्वापर धर्म दोए पैर रखाई, गुरमुख होवे ता नाम दृढ़ाई। कलयुग धर्म कला एक रहाई, एक पैर चले माया मोह वधाई। माया मोह अत गुबार, सतगुर भेटे नाम उधार। सब जुग में साचा एको सोई, सब में सच दूजा नहीं कोई। साची कीरत सच सुख होई, गुरमुख नाम बखाणे कोई। सब जुग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझे कोई। हर नाम त्याए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वड्याई होई। राम कली महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जे वड पाग हुए वड भागी, ता हर हर नाम त्यावे। नाम जपत नामे सुख पावे, हर नामे नाम समावे। गुरमुख भगत करहु सद प्राणी, हृदय प्रगास हुए लिव लागे। गुरमत हर हर नाम सुमानी रहाओ, हीरा रतन जवे हर मानक। बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग हुए वड मस्तक। तिन गुरमत काड काड लिया, रतन जवेहर लाल हर नामा। गुर काड तली दिखलाया, भाग हीन मनमुख नहीं लिया। त्रिण ओले लाख छपाया, मस्तक भाग हुए तुर लिखिया। ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवेहर पावे। तन तन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा। राम जना मिल भया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाई। दुर्मत मैल गई सब निकल, सत संगत मिल बुद्ध पाई। राम जन गुरमत राम।

तू मुक्ता राम जपत सोहाय रहाउ। जे वड पाग हो वह मुख मस्तक हर राम जना पे ठाय। दर्शन संत देहो कर कृपा सब दालत दुख लह जाय। हर के लोग राम जननी के पागहीन ना सुखाए। ज्यो ज्यो राम कह जन ऊचे नर निंदक डंस लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए। हर के सखा सखाए से हर के चोर वे मुख मुख काले। जिन गुर की पैज ना पाए दया दया कर राख हो हर जियो। हम दीन तेरी सरनाए हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे। जन नानक बख्श मलाए राम कली महला चौथा। हर के सखा साध जन नीके तिन ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध से प्रभ पाए कर कृपा आप मलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे। अमयो अमयो हर रस है मीठा मिल संत जना मुख पावे रहाउ। हर के लोग राम जाने उत्तम मिल उत्तम पदवी पावे। हम होवत चेरी दास दासन की मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेव है से वड भागी हृदय।

सुख होई, जो इच्छो हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चेतना आवै, मोहे अंध लपटाना।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संतोह ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलहो गुरमुख बाणी रहाओ। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलहो नवे निध पावहो, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर,

जिन्नी कालम है हर पाया, जन नानक सद कुर्बानी, राम कली महला पंजवा, आवत हरख न जावत दुखा, नह व्यापै मन रोगनी, सदा आनंद गुरपूरा पाया, तो उतरी सगल बेयोगनी, एह बिद है मन जोगनी, मोह सोग रोग लोग न व्यापै, तह हर हर हर रस भोगनी, रहाउ सुर्ग पवित्रा मित पवित्रा, पयाल पवित्र अलोगनी, आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै, जत कत पेखो हर गुनी, नह सिर शक्ति जल नहीं पवना, तह अकार नहीं मेदनी, सतगुर जोग का तहां निवासा, जह अवगत नाथ अगम तनी, तन मन हर का तन सब हर का, हर के गुण हो क्या गनी, कहो नानक हम तुम गुर खोई है, अम्बे अम्ब मलोगनी, राम कली महला पंजवा, त्रै गुण रहत रह निरारी, साधक सिद्ध ना जाने, रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण, सतगुर कै खजाने, अचरज किश कहन ना जाई, बस्त अगोचर भाई रहाओ, मोल नाही कछ करने जोगा, क्या को कह सुनावे, कथन कहन को

व्यापी पूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी।

गहिरा तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण हम पी संग अगाए मिलत मिलत मिलत मिल रहया नानक कहन ना जाए राम।

जिहवा तोने अगाजा निरत करे कर मनुआ नाचे आनी घुंगर साजा राम को निरतकारी पेख पेखन हार दयाला जेता साज सिंगारी रहाऊ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन बचोला करत अकेला जल ते ओपत होआ पांच तत कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चांद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातो पांच संगीता एक है पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेट है पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंद पाल नार दी नर हर जान हदूरे उंगर खड़क त्याग सूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की

कोई बादशाह भिसत कोई सुरगिंदु, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मह पवन समाया, ज्योति मह ज्योत रल जाया, माटी माटी हुई एक, रोव नहारे की कवन टेक, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बीचारा, एहो तौ चलत भया रहाउ, अगली किश खबर न पाई, रोव नहार पे उठ सदाई, परम मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया करता।

ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, ऐसो रे हर रस मीठा, गुरमुख किने विरले दीठा, रहाउ निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर भये निह काम, तन मन सी तल अग्न निवारी, अनंद रूप प्रगटे संसारी, क्या देवो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जाओ लख बेरा, तन मन जियो पिंड दे साजिया, गुर किरपा ते नीच निवाजिया।

सर्व प्रतिपाल नानक रातो रंग गोपाल राम कली महला पंजवा मुख ते पड़ता टीका सहत हृदय राम नहीं पूर्ण रहत अपदेश करे कर लोक दरडावे अपना कहया आपना कमावे पंडित।

पार, जिसा सहाई होए भगवान, अनक जतन ओआ कै सरंजाम रहाउ, करता राखै कीता कौन, कीरी जीतो सगला भवन, बेअंत महिमा तां की केतक वर्ण, बल बल जाइए तां के चरण, तिन्ही किया जप तप ध्यान,

था घट घट रमैया तिन ही दीठा राम कली महला पंजवां पंच शब्द तह पूरन नाद अनहद बाजे अचरज बिस्माद केल करह संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण।

जन्म जन्म का सोया जाग, हर हर जाप जपला, गुर कृपा ते हृदय वास्ते, पौ जल पार परला रहाओ, नाम निदान त्याए मन अटल, ता छूटह माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा हुए निर्मल जियो, सोदत सोदत सोद बीचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध कै संग, मन तन रापै हर कै रंग, छोड़ सियाणप बहु चतराई, मन बिन हर नावै जाए ना काई, दया तारी गोविंद गुसाई।

सुख घर में आया, संत प्रसाद कमल बिगसाया, नाम रतन जिन पाया दान, तिस जन होए सगल निदान, संतोख आ

जिस हृदय वसाई नानक ते जन उत्तम पाई राम कली महला पंजवा गौ कर पकरी ना आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दई तब ओह चरणी आए पई सुन संतो हो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुर पूरा भेटत उदार रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गमान जब उसको कोई मन पर हरे तब ओह सेवक सेवा करे।

सो भूखा रह, इस संग राचै सो कछु न लह, इस त्याग सत संगत करै, वड भागी नानक ओ तरै। राम कली महला पंजवां, आत्म राम सर्ब मह पेख, पूर्ण पूर रहया प्रभ।

कित कास संग रचै, जिस नहीं बुझावै सो कित बिद बुझै। जानन हार रहया प्रभ जान, ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस

कबह न उस्तत करै, निरपहो निरंकार दातार, तिसस्यो प्रीत न करै गवार, सब साहा सिर साचा साह, वे मोहताज पूरा पातशाह, मोह मगन लपट्यो भ्रम गृह, नानक तरिय तेरी मेहर, राम कली महला पंजवां।

खोजहु संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा, परम गत पावह हर सिमर प्राणी रहाव। गण में देखो हो सगल विचार, नाम बिना को सके ना तार, सगल अपाव ना चाल है संग, पवजल तरिय प्रभ कै रंग, देही तोये न उतर मैल, हम मैं व्यापै दुबदा फैल, हर हरे औखद।

नानक की प्रभ शरदा पूर राम करे मोहल्ला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुद बिन दूजा नाही कोई तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरन तारन प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा।

दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सह राचै हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपूरे की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे पाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे, टूट ना आवै अखुट भंडार, नानक भगत सोहै।

का पूता हर भगता हवालै होता मेरे राम को पंडार खात खर्च कछ तोट ना आवे अंत नहीं हर

दोष्ट करत तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख

जाऊं। संकरा नहीं जान पेव खोज तहारे देव, देवियां नहीं जान मर्म सब ऊपर अलख पार ब्रह्म। अपने रंग करता केल आप बिछोरै आपे मेल, एक परमे एक भगती लाए।

राम कली महला पंजवां राखन हार दयाल कोट भव खंडे निमुख ख्याल सगल अराध जंत मिलिय प्रभ गुर मिल मंत जीयन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घट घट राता मेरा प्रभ रहाउ ताकि गही मन ओट बंधन ते होई छोट हृदय।

मत सार जित हर सिमरीजै कर कृपा जिस आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाउ नानक जपिया गुरु।

दिन दान, तां दरगाह पावे मान। गुर का बचन जप मंत, एहा भगत सार तत्। सतगुर पए दयाल, नानक दास निहाल। राम कले महला पंजवा, होवे सोई पल मान। अपना तज अभमान, दिन रैन सदा गुण गाओ। पूर्ण एही सवाओ, आनंद कर संत हर जप। छाड़ सियानप बहु चतराई, गुर का जप मंत निर्मल रहाओ। एक की कर आस पीतर, निर्मल जप नाम हर हर। गुर के चरण नमस्कार, भवजल उतरह।

निदान नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दलाब दे सवार जाही न दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला ले छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोए सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिन सह सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरे पार पूरन तेरी होए आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनी जय।

किसका सब कोए, किसह अराध सदा सुख होए, काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे, मेरा मेरा कर बहुत पछतानी रहाउ, जो जो करे सोई मान ले हो, बिन माने रल हो वह छे, किसका पाणा।

जिस चित आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा उजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गनन ना जाई कीम ना पाए, बूढ़त लोह साध संग करै, नानक जिसह प्राप्त करै, राम कली महला पंजवा, मन माहि जाप भगवंत, गुरपुरै इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किछ कहन ना जाई, साचे सच अलख।

सच सहज सुख पावे मीत, साहिब मेरा अत पारा, किन मैं थापयो थाप नहारा, किस बिन अवर न कोई, जन का राखा सोई, कर कृपा अरदास सुनीजै, अपने सेवक को दर्शन दीजै, नानक जापी जप जाप, सब ते ऊच जा का प्रताप, राम कली महला पंजवा, बिरथा परवासा लोक, ठाकुर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास, एको नाम त्याए मन मेरे, कार्य तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ, तुम ही कारण करन, चरण कमल हर सरन, मन तन हर ओही त्याया, आनंद हर रूप दिखाया, तिस ही की ओट सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान, राखन हार निदान, सर्व की रेण हवीजै, आप मटाए मलीजै, आनंदेन त्याय नाम, सफल नाम।

ओ नमो भगवंत गुसाई खाल करव रहया सर्ब ठाई रहाउ जगन्नाथ जगजीवन माधो पौ पंजन रिद माहे अराध।

परा पूर्वला कर्म बन आया, हर के गुण नित रसना गाया, हर के संत सदा परवान, संत जना मस्तक निशान, दास की रेण पाए जे कोए, नानक तिसकी परम गत होए, राम कले महला पंजवां, दर्शन को जाइए कुर्बान, चरण कमल हृदय तार ध्यान, दूर संतन की मस्तक लाए, जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए, जिस भेट मिटे अभमान, पार ब्रह्म सब नदरी आवे, कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ, गुर की कीर्त जपिए हर नाओ, गुर की भगत सदा गुण गाओ, गुर की सुरत निकट कर जान, गुर का शब्द सत कर मान, गुर बचनी समसर सुख दुख, कदे न व्यापै तृष्णा भूख, मन संतोख शब्द गुर राजे, जप गोविंद पढ़दे सब काजे, गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुरदाता दयाल बख्शिंद, गुर चरणी जा का मन लागा, नानक दास तिस पूर्ण भागा, राम कले महला पंजवां, इस परवासै बिच रह भवन, मूड़ मुगद तेरा संगी कवन, राम संगी तिस गत नहीं जानै, पंच बटवारे से मीत कर मानै, सो कर सेव जित उदरह मीत, गुण गोविंद रवियह दिन राती, साध संग कर मन की प्रीत रहाओ, जन्म बिहानो अहंकार अरवाद, तृप्त न आवे बिखिया साध, परमत परमत महा दुख पाया, तरी न जाई दुत्तर माया, काम न आवे सो कार कमावे, आप बीज आपे ही खावे, राखण को दूसर नहीं कोए, तो निस्तर जो कृपा होए, पतत पुनीत प्रभ तेरो नाम, अपने दास को की जय दान, कर कृपा प्रभ गत कर मेरी, शरण गही नानक प्रभ तेरी, राम कले महला पंजवां, एह लोके सुख पाया, नहीं भेटत धर्म राया, हर दरगाह सो बावंत, हुन गर्भ नाही बस।

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे दिल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्स डीठा नाम प्रभु का घट घट बूठा मिटाने सब कल कलेश जिस ते उप

बंसुरी सत पाई, करनहार प्रभ हृदय बूठा, हाथी मछली का जाला टूटा, सूके काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्न नवारी सत गुर देव, सेव के अपनी लायो सेव, किरत कणा का करे उदार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई, राम कली महला पंजवां, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिघियाड़ी लई।

कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाउ दाज गए त्रिण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप।

रहाओ। जहाँ कह राम बसे मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सुवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसका मस्तक हाथ गुर धरै, सो दास अंधे

जिस कृपा करे, साध संग सो पव जल तरे, अमृत पीवो हो साध प्यारे, मुख उज्जल साचै दरबारे, आनंद करहो तज सगल विकार, नानक हर जप उतरोह पार। राम कली महला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भागै, माटी को जल दह दिस त्यागै, ऊपर चरण तले आकाश, घट मह सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जीव आप, निमख न बिसरै जी भगतन कै।

बिखैठ गौरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया, निंदा कर कर बहुत विभूता, गर्भ जोन में किरत पया, उर्ब कमाणी छोड़ नाही, जमदूत ग्रास्यो महा भया, बोले झूठ कमावे अवरा, कृष्ण ना बूझे बहुत हया, असाद रोग उपजया।

ते अब कीजै जाते दुर्मत सगल बनासे राम भगत मन पीजै रहाउ मन माया मह उर्ज रहियो है बूझै नह कछ ज्ञाना कौन नाम जग जा कह सिमरै पावे पद निर्वाणा भई दयाल कृपाल संत जन।

सुर में निमख एक उर तार है, जम को त्रास मिटे नानक तेहे अपनो जन्म सवार है। राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुध ले, छिन छिन औध घट है निस्बासुर, बिरथा जात है दे रहाउ, तरनापो बिखिन स्यो खोयो, बालपन अज्ञाना, बिरद भयो अजहु नहीं समझे, कौन कुमत उरजाना, मानस जन्म दियो जेह ठाकुर, सोते क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जा कै सिमरै।

नानक कहत चेत चिंता मन होए है अंत सहाई राम कली महला पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिन यर तपत रह सा धरती सो पौन चुलारे जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार होए परवाना करे तिंगाना कल लखन विचार रहाऊ कितै देश ना आया सुनिए तीर्थ पास ना बैठा दाता दान करे तह नाही महल उसार ना बैठा जे

लखन एई जिस सकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना जां सिकदारै पवै जंजीरी ता चाकर हथों मरना।

अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नावहो धोवहो तिलक चढ़ावहो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बकरान पोथी पंडत रहे पुराण नानक नाओ पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावे है।

दुबदा दुख भागे घर कर मांगत लाज ना लागे रहाउ गावह गीत ना चीनह आप ज्यों लागी निवरै प्रताप गुर कै शब्द रचै मन पाए भिख्या सहज विचारी खाए पसम चढ़ाए करह पाखंड माया मोहे सह जम डंड फूटै खापर भीख न पाए बंधन बांधिया आवे जाए बिंद न रख है जति कहावे है माई मांगत त्रै लभावे है निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़े

कैसे उतर सपारी, मुंदरा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना, त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार है चूक ससोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारी सोए, तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग, जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रिभवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजे अनहद मेरा मन नीना, गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाइए, गुरमुख हर हर मीठा लागे, हर हर नाम समाइए रहाउ, माया मोह विवर्ज समाई, सतगुर भेटे मेल मलाई, नाम रतन निर्मूल कहीरा, तितराता मेरा मन पीरा, हऊ मैं ममता रोग न लागे, राम भगत जम का पौ भागे, जम जंदार न लागे मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार पय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गाते अंतर पाई, अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस्कर पंचो शब्द संघारी, पार कर जाए ना मन डुलाए, सहज निरंतर रहो समाय, गुरमुख जाग रहे अवतूता, सद बैरागी तत् परोता, जग सूता मारे आवे जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए, अनहद शब्द बजे दिन राती, अवगत की गात गुरमुख जाती, तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहिया निर्वाणी, सुन समाद सहज मन राता।

में देही दुख दीजै, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं कीजै, मनमुख जन्म है जन्म मरीजै, सतगुर पूछ संगत जन कीजै, मन हर राचै नहीं जन्म मरीजै, राम नाम बिन क्या कर्म कीजै, ऊंदर दूंदर पास तरीजै, तुरकी सेवा राम रुबीजै, नानक नाम मिलै कृपा प्रभु कीजै, राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कहियै सो प्रभु ते होई, जुगहा जुगंतर साहिब सच सोई, उत्पत पर लहो अवर ना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया तिन्ही सुख पाया, हर कै नाम ना लगै जम तीर रहाऊ, नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल, एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान, नाम बसार पच है अभमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पाव है दरगह मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीरथ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बहादो लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावह पेवा, शब्द विचार गह गुर

नाम विसार भवजल पया, तन तन देखत गर्भ गया, कनक कामनी स्यो हेत वधाई हे, की नाम विसार है भरम गया रहाउ। जत सत संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर मह काष्ट भया, पुन दान इशनान ना संजम, साध संगत बिन बात जया, लालच लागै नाम बसारियो, आवत जावत जन्म गया, जां जम धाई केस गह मारै, सुरत नहीं मुख काल गया, अहनस निंदा तात पराई, हिरदय नाम ना सर्ब दया, बिन गुर शब्द न गत पत पावह, राम नाम बिन नरक गया, खिन मैं वेस करह नटुआ ज्यो, मोह पाप मह गलत गया, हित उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन भया, करह विकार वथार कनेरे, सुरत शब्द बिन भरम पया, हौ मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत लेव हो रोग गया, सुख संपत को आवत देखै, साकत मन अभमान पया, जिसका एहो तन तन सो फिर लेवै, अंतर सहसा दुख पया, अंतकाल किस साथ ना चालै, जो दिसै सब तिसह मया, आद पुरख अपरंपर सो प्रभ, हर नाम हृदय लै पार पया, मुए को रोवह किसे सुनावह, पै सागर असराल पया, देख कटंब माया ग्रह मंदर, साकत जंजाल पराल पया, जां आए तां तिने पठाए, क्याले तिने बलाए लया, जो किस करना सो कर रहया, बख्शन हारे बख्श लया, जिन एहो चाख्या राम रसायन, तिन की संगत खोज पया, रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ सरन पया, दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हरख सोग ते बिरकत पया, आप मार गुरमुख हर पाई, नानक सहज समाए लया, राम कली दखनी महला पहला, जात सत संजम साच दृढ़ाया, साच शब्द रस ली।

काट काट चुंगरी वाई नानक शरण प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ ममता मार हो मैं सुख है तेरे भवन जोत तुम्हारी मनसा मार मन मह राख है सतगुर शब्द विचारी सिंही सुरत अनाह दवाजै कट कट जोत तुम्हारी पर पंच बेन तही मन राखिया ब्रह्म अग्न पर जारी पंच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राव सस लोके इहो तन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मह आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसह विचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुण का।

भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म कीने हृदय एक मुरारी मनुआ अस्त्र शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पाखांडे औदू गुरमुख शब्द बीचारी गुरमुख जोग कमावे औदू जात सत शब्द बीचारी शब्द मरे मन मारे औदू जोग जुगत बीचारी माया मोह भवजल है अवदू शब्द तरे कुल तारी शब्द सूर जुग चारे औदू बाणी भगत बीचारी एहु मन माया मोहया औदू निकसै शब्द बीचारी आपे बख्शे मेल मलाए नानक सरन तुम्हारी राम कली महला तीजा अष्टपदियां।

योग जुगत एव पाए नदरी आवंदा सब किस बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोजी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कतंब छोड़ पर भवन करहै ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जोग जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों भरम चुकाए बिन बजाई।

अल्ला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संतो गुरमुख दे वड्याई रहाउ सच रहो सदा सहज सुख उपजै काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजै तिसते बिनसै अंते नाम सखाई सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवै घट अंतर सच्चे स्यों लिवलाई सत संगत मह नाम निर्मोलक वड्डै भाग पाया जाई भरम ना भूलो सतगुर सेवहो मन राखो एक ठाई बिन नावै सब भूली फिरदी बिरथा जन्म गवाई जोगी जुगत गवाई हंडै पाखंड जोग ना पाई शिव नगरी मह

ए सच समाई काया नगरी शब्दे खोजै नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी एता अदिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हों गुर सलाही सदा अपना

अहंकारी जिच्चर्यंतर सास तिच्चर सेवा कीचै जाए मिलिया राम रारी अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुरबिटो बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर।

जो किस करना सो कर रहया अवर ना करना जाई। आपे साजे सिरते अपाए सिर सिर तंदे लाई। तिसह सरेवो तां सुख पावो सतगुर मेल मलाई। अपना आप उपाय लख न लखना जाई। आपे मार्ज वाले आपे तिसनो तिन ना तमाई। एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई। सेवड भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन ना जाई। आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम फलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता नगुरी अंद फिरै लोकाई। जिन्नी चाखिया तिन्ना साध आया सतगुर बूझ बुझाई। इक ना नाम हो आप पलाई इक ना गुरमुख दे बुझाई। सदा सदा सलाह हो संतो तिस दी वड्डी वड्याई। तिस बिन अवर ना कोई राजा करत पावस बणत बनाई। न्याओ तिसै का है सद साचा बिरले हुक्म मनाई। तिसनो प्राणी सदा त्यावहु जिन गुरमुख बणत बनाई। सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस हिरदय नाम वसाई। सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई। नानक सुन वेख रहया विस्माद मेरा प्रभ रव्या सर्व थाई। राम कली महला पंजवां अष्टपदियां।

भावै नहीं सीजै, कारज सबरै मन प्रभत्याइजै, इहा उहा एकै ओही, जत कत देखिए तत तत तोही, तिस सेवत मन

कर मारी, गुर बोहित वडभागी मिलिया, नानक दास संग पाथर तरिया, राम कली महला पंजवां, काहू बिहावै रंग रस रूप, काहू बिहावै माए बाप पूत, काहू बिहावै राज मिलख वापारा, संत बिहावै हर नाम अधारा, रचना साच बनी सबका एक तनी रहाऊ, काहू बिहावै बेद अरबाद, काहू बिहावै रसना साद, काहू बिहावै लपट संग नारी, संत रचे केवल नाम मरारी, काहू बिहावै खेलत जुआ, काहू बिहावै अमली हुआ, काहू बिहावै पर दर्ब चुराए, हर जन बिहावै नाम त्याय, काहू बिहावै जोग तप पूजा, काहू रोग सोग परमीजा, काहू पवन धार जात बिहाए, संत बिहावै कीर्तन गाए, काहू बिहावै दिन रहन चालत, काहू बिहावै सो पिड़ मालत, काहू बिहावै बाल पढ़ावत, संत बिहावै हर जस गावत, काहू बिहावै नट नाटक निरते, काहू बिहावै जिया एह हिरते, काहू बिहावै राज मह डरते, संत बिहावै हर जस करते, काहू बिहावै मता मसूरत, काहू बिहावै सेवा जरूरत, काहू बिहावै सोदत जीवत, संत बिहावै

पंजवा दावा अगन रहे हर बूट मात गर्भ संकट ते शूट जा का नाम सिमरत पहु जाए तैसे संत जना राखे हर राय ऐसे राखन हार दयाल।

का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावे बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यों साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम पहु खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मन है सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दया।

कोट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नास है।

ज्ञान अंधेर वंजाई, करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई, बंधन तोड़ चरण कमल दिरडाई, एक शब्द लिवलाई, अंधकूप बिख्या ते काढ्यो, साच शब्द बन आई, जन्म मरण का सहसा चूका, बहुर कतहु ना

निहाला हर सिमरत तृप्त अगाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आदि जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहे आ सब ठाई संतो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुष्टारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति जोत तुम्हारी तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला।

सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दो तांगा वो हरि केरा मन जिन्नी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले।

संतोहु शब्द तरहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पांच शब्द तित कर सा भागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पांच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी बेन माणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाई कृपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारिया।

आनंद सदा गुरते किरपा करे प्यारिया कर किरपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया।

सुर नर मुन जाने अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाय एक वेख परसन आया लभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया।

भगत हां तेरी विखव मार्ग चलना लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना थन्यो तिखी वालो निक्की एक मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वास ना समाणी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग नराली ज्यो तू चला हे तिव चल है स्वामी और क्या जाना गुण तेरे जिव तू चला हे तिव चल है जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे जिसनु कथा सुनाए अपनी।

नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सियो पवित संगत सबाइया।

है। कित संयम तो ता जाय, मन तो वो शब्द लागो, हर सिंह रहो चित लाय। कह नानक गुर प्रसादी, सहज उपजै एहो सहसा इव जाय। जियो मैले बाहर हो निर्मल, बाहर हो निर्मल जियो ता मैले। तिन्नी जन्म जू है हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा।

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रह परने, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संतो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सत

करह रसना कहया कछु ना जानी चित जिन का हिरलया माया बोलन पए रवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाऊ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाऊ शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाऊ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाई कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाऊ सेव सकते आपे उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेखे गुरमुख किसह बुझाई तोड़े बंधन होए मुक्त शब्द मन वसाई गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एकस स्यों लिवलाई कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाई सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दी।

संसार भ्रम सुत्ता सुतियां रैन विहानी गुर किरपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागे।

गुणदाता जे अग्न मह आहार पहुंचावे उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाई गुरमुख सदा सुमहली है कह नानके वड़दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उधर में है तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जे ही करता खेल रचाया जां तिस पाणा ता जम्मिया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुल कहै मुल ना पाया जाई मुल ना पाया जाई किसे बिटहु रहे लोक बिललाई ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौंपिए बिचो आप जाई।

मन बन जारा, हर रास मेरी मन बन जारा, सतगुर तेरा स जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हरे आपे।

प्यास न जाए, प्यास न जाए हूत किते, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ना तृष्णा लागे आई, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आई, कह नानक होर आन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आई, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रखिया, जोत राखी ता तू जग मह आया, मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

कर्मक माया, हे कर्मक माया तुझ शरीरा, जां तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो इस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिले दिव दृष्ट हो।

सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी सच अलख वडाणी तां की गत कही ना जाए कह नानक अमृत नाम सुनो

केशो गोपाल पंडित सद्यो हो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर पावे। पिंड पत्तल किरिया दीवा, फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया, गुरसिखा मन लई रजाए जियो। मोहरी पुत सनमुख होया, रामदास पैरी पाए जियो। सब पवै पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया। कोई कर बखीली निवै नाही, फिर सतगुरु आन निवाया। हर गुरह भाणा दी वडियाई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो। कह सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो। राम कली महला पंजवां शंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा। नैन अलोया कट कट सोया, हत अमृत प्रिय गूड़ा। नाल होवंदा लह ना सकंदा, सुआओ ना जाने मूड़ा। माया मद माता होची बाता, मिलन न जाई भरम धड़ा। कहो नानक गुरबिन नाही सूजै, हर साजन सब कै निकट खड़ा। गोविंदा मेरे गोविंदा।

अपर अपारा कट कट अंतर सोहनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया जिसनो राखै सो सच पाखै गुर का शब्द बीचारा कहो नानक जो प्रभु।

ओंकार शब्द उधरे ओंकार गुरमुख तरे ओन में अखर सुनो विचार ओन में अखर त्रे भवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साच संभाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भये मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं भावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच सु

घर हुए आथ देख निवै जिस दोए आथ हुए ता मुग्ध सियाना भगत बिहूना जग बौराना सब मह वरतै इको सोए जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए।

प्राप्त हुए। गुणदाता विरला संसार, साची करनी गुर विचार। अगमय गोचर कीमत नहीं पाए, ता मिलिय जान ले मलाय। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिय नीत। काम क्रोध काया कौ गल, ज्यों कंचन सुहागा ढाल। कस कसवटी सह सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ। जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करतै करनी कर पाई। जिन कीती तिन कीमत पाई, होर क्या कहिए किस कहन ना जाई। खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया। खरा खरा आखै सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए। खात पी अंत मुए नहीं जानिया, हिन मह मुए जा शब्द पछानिया। अस्थर चीत मरन मन मानिया, गुर किरपा ते नाम पछानिया। गगन गंभीर गगन अंतर वास, गुण गावै सुख सहज निवास। गया न आवै आए न जाए, गुर प्रसाद रह लिवलाई। गगन अगम अनाथ अजूनी, अस्थिर चीत समाध सुगुनी। हर नाम चेत फिर पवह ना जूनी, गुरमत सार होर नाम बिहूनी। घर दर फिर था की बहु तेरे, जात असंख अंत नहीं मेरे। केते मात पिता सुत धिया, केते गुर चेले फुन हुआ। काचे गुरते मुक्त ना हुआ, केती नार वर एक संभाल। गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दह दिस ढूंढ कर मह पाया। मेल भया सतगुरु मलाया, गुरमुख गावे गुरमुख बोले। गुरमुख तोल तलावे तोले, गुरमुख आवे जाए न संग। पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार। गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार। नानक गुरमुख पावे पार, चंचल चीत न रही ठाई। चोरी मिर्ग अंगूरी खाए, चरण कमल उर तारे चीत। चिर जीवन चेतन नित नीत, चिंतत ही दिसै सब कोए। चेतह एक तही सुख होए, चित वसै राचै हर नाय। मुक्त भया पत स्यों घर जाए, सीजै दे खुलै एक गंड। छिया नित देखो जग हंड, धूप शाम जे सम कर जान। बंधन काट मुक्त घर आण, छाया शूशी जगत भुलाना।

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै सुमावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यो वाद, झूर मरे देखै परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले भय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल।

पूजै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साची अखोट, गुर कहया साकार कमावहु, गुर की करनी काहे तावहु, नानक गुरमत साच समावहु, टूटे नेहो के बोलह सही, टूटे बाहा दुहू दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुर्मत पर हर छाडी ढोल, टूटे गंठ पड़े विचार, गुर शब्दी घर कारज सार, लाहा साच न आवे टोटा, त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाई, ठहक मुई अब गुण पछताई, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़ियार, पर घर जाती ठाक रहाई, महल बलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, दाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिन ठी डार, डरप मुई घर आपने, दीठी कंत सुजान, दर राख्या गुरे आपने, निरपहु नाम बखान, ढूंगर वास तिखा कनी, जब देखा नहीं दूर, तिखा नवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर, देह देह आखे सब कोई, जय पावे तै दे, गुरु द्वारे देवसी, तिखा नवारे सोई, टंडोलत टूंडत हौ फिरी, तह तह पवन करार, पारे तहते तह पई, हौले निकसे पार, अमर अजाची हर मिली, तिनकै हौ बल जाऊं, तिनकी धूड़ अकुली है, संगत मेल मलाऊं, मन दिया गुर आपने, पाया निर्मल नाव, जिन नाम दिया तिस सेवसा, तिस बलिहारै जाऊं, जो असारे सो ढासी, तिस बिन अवर ना कोई, गुर प्रसादी तिस सम्मला, तां तन दुख ना होए, ना को मेरा किस गही, ना को हुआ ना हो।

कंध गरंत विण नावे क्यों छूटी है जायर सातल अंत गणत गणावे अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुर बिन ज्ञान ना होए टूटी तंत्र बाब की वाजे नहीं वियोग विछड़िया मेले प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगह मिले एक से तिनको फास नारंच।

अपना तन मन आगे देव अस्त्र करता तू धनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द रत्ती।

राह गुरा पेहावला सर ढूंगर असगाह मैं तन अवगुण झुर मुई विन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन्ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमाव है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोड़े मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजहो गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हाथ वडियाईया जय पावे तैं दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचै नाय वण तृण ढूंढत फिर रही मन मह करो विचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाई रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बेअंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़ै रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़ै गारड़ तुम सुनो हर वस्तै मन माहि गुर प्रसादी हर पाई है मत को भरम भलाहि सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोइना रूपा संची है धन का चा बिखसार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया।

साचो ठाकुर मन वसै हौ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत न आवै क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणे अपना खूले बंद न पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हौ मैं खपै खपाए सी बीजो अथ बेकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौ हौ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन बीचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपिय हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुर अपने जिन हिरदै दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखी विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सोधै तत लहै राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखी चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारू तिस आगै रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट तरी तिस आगै तन मन आगै देऊ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेउ क्या भविए सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाउ कौन तुम्हें क्या नाउ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआउ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आई हुक्म सुधाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए, दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइयै पारो, चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारो, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार गरामी, तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै, नानक नाम वखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासू, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासू, सुन स्वामी अरदास हमारी।

मन मटाया अनहद राति इहु मन लाया मनसाया सा शब्द जलाई गुरमुख जोत निरंतर पाई त्रै गुण मेटे खाइए सार नानक तारे तारन हार आद को कवन विचार कथियले सुन कहां घर वासो ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले घट घट कवन निवासो काल का ठींगा क्यों जलाइयले क्यों निरभउ घर जाइए सहज संतोख का आसन जाने क्यों छेदे बैराइय गुर कै शब्द हउमै बिख मारे ता निज कर होवै वासो जिन रच रचिया तिस शब्द पछाणे नानक ताका दासु कहां ते आवै कहां एहो जावै कहां एहो रह समाई एस शब्द को जो अर्थावै तिस गुर तिल ना कमाई क्यों तत्तै अवगतै पावै गुरमुख लगै प्यारू आपे सुरता आपे करता

आवे गत मित शब्दे पाई आद को विस्माद विचार कथियली सुन निरंतर वासलिया अकलपत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियली कट कट साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाइय तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार ना करनी सेवै सिख सो खोज लह हुक्म विस्माद हुक्म पछाण जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईए साचै शब्द समाए लिया एक एक ओ सच एका जाने हों मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाण अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे ता सब किश सूजे अंतर जाने सर्ब दया नानक ता को मिले वडाई आप पछाणे सर्ब जिया साचो उपजे साच सुमावे साचे सूचे एक मया झूठे आवह ठवर ना पावे दूजे आवा गौण भया आवा गौण मिटे गुर शब्दी आपे परखे बख्श।

अंतर मसान शब्द ना चीने लवे कुबान नानक साच रते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावे गुरमुख बाणी अकाड़ कढ़ावे गुरमुख निर्मल हर गुण गावे गुरमुख पवित्र परम पद पावे गुरमुख रोम रोम हर त्यावे नानक गुरमुख साच समावे गुरमुख परचै वेद बीचारी गुरमुख परचै तरिय तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर बिद जानी गुरमुख पाई अलाखे अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै बीचार गुरमुख निबह सब परवार गुरमुख जपिय अंतर प्यार गुरमुख पाई शब्द अचार शब्द भेद जाने जानाई नानक हम मैं जाल समाई गुरमुख धरती साचै साजी तिसमह उपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाय साच रतो पत स्यो घर जाय साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नावै क्यों साच समावै गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि गुरमुख सारे अपसर बिद जानै गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पार उतारी नानक गुरमुख शब्द निसतारी नामे राते हों मैं जाए नाम रते सच रही समाई नाम रते जोग जुगत बीचार नाम रते पावह मूख द्वार नाम रते त्रे भवन सोजी होए नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते सिद्ध गोष्ट होए नाम रते सदा तप होए नाम रते सच करनी सार नाम रते गुण ज्ञान बीचार बिन नावे बोले सब वेकार नानक नाम रते तिनको जयकार पूरे गुरते नाम पाया जाय जोग जुगत सच रह समाय बारह मह जोगी परमाई सन्यासी छे चार गुर कै शब्द जो मर जीवै सो पाए मूख द्वार बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय बीचार नानक वड्डे से वड भागी जिन्नी सच रखिया उर धार गुरमुख रतन लह लिवलाय गुरमुख परखै रतन सुभाय गुरमुख साची कार कमाय गुरमुख साचे मन पतियाय गुरमुख अलख लखाए तिस भावै नानक गुरमुख चोट ना खावै गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख लागै सहज ध्यान गुरमुख पावै दरगाह मान गुरमुख पौ भंजन प्रधान गुरमुख करनी कार कराई नानक गुरमुख मेल मलाय गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद गुरमुख पावै घट घट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावै गुरमुख सगली गणत मटावै गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर भरमै आवै जाई बिन

गुरमुख कोड़ ते तीस उधारे, गुरमुख चूकै आवन जान, गुरमुख दरगाह पावे मान, गुरमुख खोटे खरे पछान, गुरमुख लागे सहज ध्यान, गुरमुख दरगाह सिखत समाए, नानक गुरमुख बंद ना पाए, गुरमुख नाम निरंजन पाए, गुरमुख हमै शब्द जलाए, गुरमुख साचे के गुण गाए, गुरमुख साचा रह समाए, गुरमुख साच नाम पाते उत्तम होए,

आपना पुन्नं घट घट सुन का जाने भेव आदि पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रति से कैसी जिस ते उपजे तिस ही जैसी कोई जन्म ना बरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवें पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचे राचे देख हजूरे घट घट साच रहिया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाई मिलिए सुख होवे गुरमुख जागे नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारे कहते मुक्त शब्द निस्तारे गुर की दिखिया से सच राते नानक आप गुआए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवे सो के तठाए क्यों तत न बूझे चोटा खाए जम दरबादी कोई न राखे बिन शब्द नाहीं पत साख।

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथि अले पवन कहां रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हमें प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन तृप्ता सह नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल ना ग्रासै रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह कौ नानक आत्म राम कौ लहै।

सच सफाके सच रपे रंग कबहू ना जावे जां एहो हिरदा दे ना होती तो मन कैठे रहता नाभ कमल अस्थंब ना हो तो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रखत बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे ना होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाभ कमल असथंब ना हो तो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप न रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रह तो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है ना हो तो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जग उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हम मैं विच जग उपजै पुरखा नाम विसरे है दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारे हम मैं शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचे रह समाई नामे नाम रह बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावे जोग कदे ना होवे देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारे कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होई गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होई गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाई बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हो मैं मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाने नानक गुरमुख शब्द पछाणे शब्द कान बेड़ा सुन तू औदू बिन नावे जोग ना होई नामे राते अन दिन माते नामे ते सुख होई नामे ही ते सब प्रगट होवे नामे सोजी पाई।

आपे सब रंग माणै, साधक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिर है फरमाणै, मांग है नाम पाए ए भिखिया, तेरे दर्शन कौ कुरबाणै, अविनाशी प्रभ खेल रचाया, गुरमुख सोजी होई, नानक सब जुग आपे वरतै, दूजा अवर नाम

है सहसा गया बलाई, ना किस बीजे ना उगवे, जो बख्शे सो खाए। अंब है सेती अंब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाए, नानक गुरमुख।

कोई। राम कसौटी सो सह जो मर जीवा होए महला तीजा। क्यों कर इहो मन मारिय क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानी हों मैं छड़ै ना कोई। गुर प्रसादी हों मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होई। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा जीवत मरना सब को कहै जीवन मुक्त क्यों होई। भय का संयम जे करे दान भाऊ लाए। अन दिन गुण गावै सुख सहजे बिख भव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाईऐ जा कौ नदर करी पौड़ी। दूजा भाउ रचायो त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन। हुक्म कमावन कारा पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझ बीचारा। सब किश तेरा खेल है सच सिरजन हारा। जिस भावै तिस बख्श लै सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा मन का झूठा झूठ कमावै। माया नू फिरै तपा सदावै परमे भूला सब तीर्थ गह। ओह तपा कैसे परम गत लह। गुर प्रसादी को सच कमावै नानक सो तपा मूखंतर पावै। महला तीजा सो तपा जे इहो तप काले सतगुर नो मिलै शब्द संभाले। सतगुर की सेवा इहो तप परवान नानक सो तपा दरगह पावै मान। पौड़ी रात दिन स उपायन संसार की वर्तन। गुरमति घट चानना अनेर बनासन। हुक्मे ही सब साजियन रबिया सब वन त्रिन। सब किसे आपे आप है गुरमुख सदा हर भन। शब्दे ही सोजी पई सच्चा आप बुझाई। श्लोक महला तीजा अभ्यागत ए नायाखियन। जिनके चित में भरम किस दै दितै नानका। तेहो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद। ताका भूखा होए तिसका भोजन नानका। विरला पाए कोई महला तीजा अभ्यागत एह ना आखियन। जे पर कर भोजन करेन उदरै कारण अपने बहले भेख करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन। पाल लहन सहो अपना निज कार्य रहन करेन। पौड़ी अंबर धरत विछोड़ियन विच सच्चा असराव। घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाव। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाव। सच्चा आप तखत सच्चा वह सच्चा करे नियाव। सब सच्चो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई।

लोभ रथ विचों जाए, ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का पौ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहणी जो रते हर रंग लाए, महला तीजा राम कली राम मन वसिया, ता बने आशिंगार गुर कै शब्द कमल बिगसिया। ता सौंपया भगत भंडार, भरम गया ता जागया, चूका अज्ञान अंधार।

चुकै घर हिंदू आवै सूत जनेऊ पढ़ गल पावै सूत पाए करे बुरियाई नाता धोता थाए ना पाई मुसलमान करे वडियाई बिन गुर पीरै को थाए ना पाई राह दसाए उथे को जाए करनी बाजो किस्त ना पाए जोगी कै घर जुगत दसाई।

सो जाए सियान है, होर पकड़ हिंदू मुसलमान है, सबना का दर लेखा होए, करनी बाज हो तरे ना कोई, सचो सच बखाने कोई, नानक अगे पुछ ना होए पौड़ी, हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेरी गुरमुख हर नाम पढ़, हर का मंदर शरीर अत सोहना, हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़, सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई। श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंत फिरह, ना सत मूंड मडाई केसी, ना सत पढ़िया देश फिरह, ना सत रुखी बिरखी पत्थर, आप तशाव है दुख सह, ना सत हस्ती बदे संगल, ना सत गाई काहु चरह, जिस हथ सिद्ध देवै जे सोई, जिसनो दे तिसे आए मिले, नानक ताको मिले वडाई, जिस घट भीतर शब्द रवै, सब घट मेरे हो सबना अंदर, जिसे खवाई तिस कौन कह, जिसे दिखाला वाटड़ी किसे पलावे कौन, जिसे पलाई पंध सिर किसे दिखावे कौन। महला पहला। सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संयम भीख्या करे, पुन दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर, बोले ईश्वर सत स्वरूप।

संताप औ हट पट्टन में है भीख्या करे सो अवधूती शिवपुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े ना कंध

ये काया पखाले, काया की अगन ब्रह्म पर जाले, सुपने बिंद न दे चरना, तिस पाखंडी जरा न मरना, बोले चरपट सत स्वरूप, परम तंत मह रेखना रूप, महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म, गगन मंडल मह रूपै थम, पहन स्वतंत्र रह।

पौड़ी हर मंदिर सोई आखी है जिथों हर जाता मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम पछाता बाहर मूल ना खोजी है घर माहे बधाता मनमुख हर मंदिर की सार ना जाननी तिन्नी जन्म गवाता सब मह एक वरतदा गुर शब्दी पाया जाई। श्लोक महला तीजा मूर्ख होए सो सुने मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लक्षण है क्या मूर्ख का करना मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना एत कमाणे सदा दुख दुख ही मह रहना अत प्यारा पवे खू केहो संयम करना गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुब दे पी तरना नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही अजराइल फरिश्ता हुसी आए तई आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है हर रब रहया सब आपै हर की कीमत ना पवै किस कहन ना जापै गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापै सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपै।

कौड़ी काया हंस तुर मेल करता लिख पाया सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उच्चरै गुण माही सुमाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया सब किसे आपे आप है आपे दे वड़ियाई श्लोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रत्ना।

गुथली रतनी खोली आई वखर तै बणजारिया दुहां रही समाई जिन गुण पल्ले नानका माणिक वणजह से रतना सार ना जाननी अंधे बतह लोए पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जै बजर कपाट ना खुलनी गुर शब्द खुली जै अनहद वाजे धुन वज दे गुर शब्द सुनी जै तित घट अंतर चानना कर भगत मिली जै।

सो क्यों उजड़ पाए, अंधे एह ना आखियन जिन मुख लोइन नाहे, अंधे से ही नानका खसम हो कुथे जाहे। महला दूजा, साहिब अंधा जो किया करे सुजाखा होए, जेहा जाने ते हो वरतै जे सौ आखै कोई, जितै सो वस्त ना जापई आपे वरतौ जान, नानक गाहक क्यों लए सकै ना वस्त पछाण। महला दूजा, सो क्यों अंधा आखियै जे हुक्म हो अंधा होए, नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहियै सोए। पौड़ी, काया अंदर गण कोट है सब दे संतर देसा, आपे ताड़ी लाइयन सब मह परवेसा, आपे सिख साजियन आप गुप्त रखेसा, गुर सेवा ते जानिया सच प्रगटियेसा, सब किस सचो सच है गुर सोजी पाई। श्लोक महला पहला, सावन रात आहार देहो काम क्रोध दोए खेता।

दूजै भाई बोलै, दूजै भाई सदा दुख है, नित नीर बरोलै, गुरमुख नाम त्याई है, मत तत कडोलै, अंतर परगास घट चानना, हर लद्दा टोलै, आपे परम भुलाएगा, किछ कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा, नानक किन

नानक जो मर जीव्या सहला आया सोए महला तीजा। ना किस आसा हथ है क्यों निराशा होए, क्या करे एह बपड़ी जां भलाए सोए पौड़ी। त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बिन, प्रभ दाता दा तार निचल एहो धन। सास सास अराधे निर्मल सोए जन, अंतर जामी अगम रसना एक पन। रव रहे आसरबत नानक बल जाई, सलोक महला पहला सरवर हंस तुरे ही मेला। खसमै वै पाणा सरवर अंदर ही रामोती,

नानक सोई सेविया जित सेविया दुख जाय अवगुण वंजन गुण रवह मन सुख वसै आय पौड़ी आपे आप वरतदा आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेश दा गुरमुख पतियायन एक आपे उजड़ पायन एक भगती लायन जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाए लायन नानक नाम त्याई है सच्ची वड्याई शुद्ध राम कली की वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पंजवा जैसा

आपे रंग रटिया कुदरत कीम ना पाए अलख ब्रह्मटिया अगम अथाह बेअंत परै परटिया आपे वड पातशाह आप वजीरटिया कोय ना जाने कीम केवड़ मटिया सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुरु देहो देखाल हूं तिस देवा मन अपना नित हिरदय रखा संभाल इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मलायुन

कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो मेले प्रीतम मोहे गुर पूरै मेलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेविया तिस जेवड अवर ना कोई पौड़ी देवन हार दतार कित मुख सलाहिय जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिय कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा आनंद बनोद किशु ना जानिए सर्ब धार समरथ हो तिस कुर्बानी है गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया श्लोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहुड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवा बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पात रखै आप सो भवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै श्लोक महला पंजवा धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रते रंग गोविंद कै हों तिन बलिहारै जाउ आखा बिरथा जी की हर सज्जन में लोहराए गुरपूरै मेलाया जन्म मरण दुख जाए जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूर्त पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलिया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसम पाणिया श्लोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सज्जनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरता जी की कदे ना मोड़े रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन कर्ण समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ
हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक धर कै हथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन कियां इच्छा पूरियां पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग महला पंजवां मन मुखां केरी दोस्ती

जाने टिचर रखन गांड जित दिन किछ ना होवई तित दिन बोलन गंद जी की सार ना जाननी मनमुख ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना चलई।

सब काज सुवारिया जिस तू आवह चित्त सो परवान जन जिस तू आवह चित्त बहुता तिस धन जिस तू आवह चित्त सो वड परवारिया जिस तू आवह चित्त तिन कुल उधारिया।

नाम कर्म हो जुगता तुह कुटे क्या फल पावै हंसा विच बैठा बग ना बणी नित बैठा मच्छी नो तार लावै जां हंस सुभा विचार

नाम सत गुर पाए पै मन तन अंतर वस दुखा नास होए हाथ दे आप रख व्यापै भौ ना कोई।

दूजा तिस न बुझायो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगमय गोचर साहिबो समरथ सच दातार तू निश्चल निर्वैर सच सच्चा तुद दरबार कीमत कहन ना जाइए अंत ना पारावार प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब बिखिया रस शार से सुखिए सच साहसे जिन सच्चा व्यवहार जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक अरादे संतन रे नार महला पंजवा अंग सुख विश्राम नित हर का कीर्तन गाय अवर सियाण पछाड़ दे नानक उदरस नाए पौड़ी ना तू आवह वस बहुत कणावणे ना तू आवह वस बेद पढ़ावणे ना तू आवह वस तीर्थ नाइय।

भोगा हरख आनंद हुक्मी जपे निरुद्र गुरमंद हुक्मी आवन जान रहाई नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावे गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार वो ढाडी तुद त्याई कलाने दिन रैनार मंगै अमृत नाम ना आवे कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो हो सच्चा एह सुआओ। जन्म पदार्थ सफल होए मन में लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे दरगाह पाईए थाऊ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपूरा मत दे। भाणे जप तप संयमो भाणे ही कड ले। भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे। भाणे भोग पगाएंदा भाणे मनह करे। भाणे नरक सुर्ग अवतारी भाणे धरन परे। भाणे ही जिस भगती लाए नानक विरले हे पौड़ी। वडियाई सच्चे नाम की हों जीवा सुन सुने। पशु प्रेत अज्ञान उधारी एक खाने। दिन सरहण तेरा नाऊ सदा सद जापी है। तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है। रोग सोग दुख वंजै जिस नाऊ मन वसै तिसह प्राप्त लाल। जो गुर शब्दी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया। तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। सलोक महला पंजवा मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया। रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी। हौ तुद बिन अड ना लहंदी। महला पंजवा सस वरायण नानक जीओ ससुरावादी जेठो पौ पोलू है। हबे भस पुणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी। जिस तू बुठा चित तिस दर्द निवारणो। जिस तू बुठा चित तिस कदे ना हारनो। जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारनो। जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो। जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो। जिसनो एको रंग भगत सो जान।

ना कोई जाचक सदा जाचो है महला पंजवा देह सजंदड़ी ऊण मचूना गुर सज्जन जियो तराया हब्बे सुख सुहेलड़ा सुता जिता जग सवाया पौड़ी वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह निश्चल चौर छत जो भावे पार ब्रह्म सोई सच न्याऊ जे भावे पार ब्रह्म।

दिखाया जाहर जन नानक सच्चे सच समाहर महला पंजवा आहर सब करदा फिरे आहर एक ना होए नानक जित आहर जग उदर है विरला बूझै कोई पौड़ी वड्डी हूं वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरा वस तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाई तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर।

क्या करे सा बात हुए दरहाली गुरे अंगद दी दोही फिरी सच करत बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल हुई जंगाली दर दरवेश खसम दे नाए सच्चे बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर कियाली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जां काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली होरो गंग बहाई है दुनियाई आखै के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैन बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवागौन चिलक्योन कुदरत ऐह वे खालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान क्याड़ा सिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहि आप आपे सेती मिक्योन सिखा पुतना कोख कै सब उम्मत वेखो जे क्यों जा सदोस ता लहना टिक्योन फेर वसाया फेर पान सतगुर खाडूर जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर लब बनाहे मानसा ज्यो पानी बूर वरिय है दरगाह गुरु की कुदरती नूर जित सो हाथ ना लबई तू ओहो ठरूर नौ निद नाम निदान है तुद विच भरपूर निंदा तेरी जो करे सो वन्ये चूर नेड़ै दिसै मात लोक तुद सुजै दूर फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर सो टिक्का सो बहना सोई दीवान प्यू दा दे जेवहा पोता परवान जिन बासक नेत्रै कत्या करने ही तान जिन समुंद वरोलिया कर मेर मधान चौदह रत्न निकालियन कीतुन चानान घोड़ा की तो सहजदा जत कियो पलान तनख चढ़ायो सत दा जस हंदा बाण कल विच तू आधार सा चढ़िया रै पहाण सतो खेत जमायु सतो सावान नेत्र सोई तेरी है क्यों मैदा खान चारे कुन्ना सुजियोस मन मह शब्द परवान आवागौन निवारियु कर नदर निशान अवतरिया अवतार लै सो पुरख सो जान।

ग्रहण में लो गुर का शब्द गुण की नरे तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दीन रे कोई है रे संत सहज सुख अंतर जाको जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे रहाओ पवन चतर दस भाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस प्यो रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर के सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

कर जानी। हम निर्धन ज्यो एहो धन पाया, मरते फूट गमानी। करै गमान चुभ है तिस सूला, को काढ़न को नाही। अजय सो चोभ को बिलल बलाते, नरके घोर पचाई। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा, संतन दो रादे। हम काहू की कान ना कटते, अपने गुर पर सादे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन।

सो रन मैं जूझ बिन दागे भग जाई साधु होए सो भगत पछाने हर लए खजाने पाई कोठरे मह कोठरे परम कोठी बीचार गुरदीनी बस्त कबीर को लेव हो बस्त समार कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग अमृत रस जिन पाया फिर का सुहाग जेहे मुख वेद गायत्री निकसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करै जाकै पाए जगत सब लागै सो क्यों पंडित हर ना कह काहे मेरे बामन हर ना कह राम ना बोल है पांडे दोजक पर है रहाव आपने ऊच नीच कर भोजन हठे कर्म कर उदर पर है चौदस अमावस रच रच मांग है कर दीपक लै कूप पर है तू ब्राह्मण मैं कांसिक जुलहा मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बन है हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे पांडे डूब मर है तरवर एक अनंत डार साखा पोहप पत्र रस भरिया ए अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया जानी जानी रे राजा राम की कहानी।

दया कर झूली पत्रका करहो बिचारी चिंतायो तन सियो अपना नाम करहो आधार रे ऐसा जोग कमावो जोगी जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाव बुद्ध बेभूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावनित धर्म तारन चिंता मन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाउ भगत नहीं साधी रहा पर तन परती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

बंधन पाया, मुख तै गुरे अनल बुझाया, जब नक सिख इहो मन चीना, तब अंतर मज्जन कीना, पवन पत उन मन रहन खरा, नहीं मृत ना जन्म जरा रहाऊ, उल्टी ले सकत सहारं, पैसी ले गगन मजारं, बेदी अले चक्र पुवंगा, पेटी अले राय नसंगा, चूकी अले मोह मै आसा, सस कीनो सूर ग्रासा, जब कुंभक पर फुर लीना, तह बाजे अनहद बीना, बकतै बक शब्द सुनाया।

गुडी आकाश मदे परमियले पंच जना स्यो बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नामा वेदियले जैसे कनक कला चित मांदियले रहाउ आनीले कुंभ पराईले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडियले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखियले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडियले अंतर बाहर काज विरुद्धि चीत सो बारक राखियले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कवितना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावो गो बैरागी राम मह गावो गो शब्द अतीत।

दोए सम कर राखो ब्रह्म जोत मिल जाओगो तीर्थ देख ना जल मह पैसो जी जंत ना सतावोगो अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए घट ही भीतर नाओगो पंच सहाई जन की सोबा पलो पलो ना कहावोगो नामा कह चित हर सिओ राता सुन समाद समाओगो माए ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया राम कोई ना किसी केरा जैसे तरवर पंख

जय छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना की जय हर का नाम नित नित है लीजै रहाउ गंगा जो गोदावर जाइए कुंभ जो केदार नाइय गोमती सहस गौदान कीजै कोट जो तीर्थ करे तन जो हिवाले।

वचन हिरण हुए कैसे, जो पारस है ना परस है, देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्स।

धारी असुर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजर जरे सो निचर चरे जगन्नाथ स्यों गोष्ठ करे

मह गुहै मस्तक पदम द्वालय मणि माही निरंजन त्रे पवन धनी पंच शब्द निर्मायल बाजे तुलके चवर शंख कन गाजे।

जप अहल सुनाम हरि कोट कोट दुख बहु कीने सब पर हर पास तरी रहाऊ हर हर नाम जप है आराध है सेवक भाई खरे किल बिख दुख गए सब नीकर ज्यों पानी मैल हरे खिन खिन नर नारायण गाव है मुख बोल है नर नर हरे पंच दुख असाद नगर में एक खिन पल दूर करे वड भागी हर नाम त्याव है हर के भगत हरे तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों मैं मूड मुग्ध निस्तरे किरपा किरपा तार जग जीवन रख ले वो सरन परे नानक जन तुमरी सरनाई हर राख हो लाज हरे नट महला चौथा राम जप जन राम नाम रले राम नाम जपियो गुरबचनी हर धारी हर किरपले रहाउ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन कै बल बलले पुरखोत्तम हर नाम जन गायु सब दालद दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई ज्यों देखै सस कमले उनवै कन कन कन हर गरजै मन बिगसै मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीव है देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाई हर मेल हो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम त्यायु हम सतगुर चरण पखे रहाउ उत्तम जगन्नाथ जगदीश्वर हम पापी सरन रखे तुम वड पुरख दीन दुख भंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे।

मालक स्वामी हम राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को ना उधरेओ। प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारेओ। प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गाव है स्वामी। हौ बल बल बल तिनगे, पवन पवन पवित्र सब किए। जह तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम। तुम वड वड पुरख वडगे,

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाऊ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानु हो हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानु हो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्याव है हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यों सलल सलल उठह बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर देवस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछ हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पग रे नरवाल सब दाल दे पांच दुख दाल।

मन प्यास बहुत दरसावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद त्यावे। कमन योग कमन ज्ञान त्या

बुद्ध सियानप जित निमुखना प्रभ बिसरावे संत संग लग एहो सुख पायो हर गुण सद ही गावे देखियो अचरज महामंगल रूप किस आन नहीं दिसटावे कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो तह गर्भ जोन कह आवे नट नारायण महला पंजवां दुपदे

वीर जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हम मैं पीर रहाऊ तप्त बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई वीर खुले ब्रह्म पीत।

कै संग बस्यो मन ते नाही बसारियो रहाउ वर्ण चेहन नाही किश पेखियो दास का कुल ना बेचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुपाए सुवारियो महाबिखम अग्न का सागर तिस ते पारि उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुनः पुनः बलिहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहियो कोट अपराध मिट है खिन पीतर ताका दुख न रहियो रहाउ खोजत खोजत भयो बैरागी साधु संग लहियो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गहियो कहत मुख

शरण पायो। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, कहो नानक आनंद पायो। नाट महला पंजवा, चरण कमल संग लागी डोरी। सुख सागर कर परम गत मोरी, रहाउ अंचला गहायो जाने अपने को। मन बीतो प्रेम की खोरी, जस गावत भगत रास उपजियो। माया की जाली तोरी, पूर्ण पूर रहे कृपा निद। आना पेखो होरी, नानक मेल लियो दा।

ते आठ पहर गुण गायन रहाउ साधु तूर करो नित मज्जन सब किल बिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दुए कर जोड़ नानक दान मांगै तेरे दासन दास दसायन नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निदान कर कृपा साधु संग मिलियो।

खंड खंड कीने बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख बखाना प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान नट महला।

काल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दर्शन हाल नट

दहलिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिलिए परम पद पाया हौ सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवै जम काल खड़ा सिर मारी उगवै दिनस आल जाल संभालै बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिख सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़ै के खलवारी साकत नार सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख करज चढ़िया बिख भारी उतरै शब्द विचारी जितने करज करज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर अपाई नक खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खिंच

हर अमृत सर नावारे, सतगुरु ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारे रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस पय कुबिजा को, लै बैकुंठ सधारी,

गुर सरल प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए फकर चलायो, कर ऊपर कढ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत आत्मिके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावे।

सब एका नदर निहारी, हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई, सब चेरी जगत समारी, आप दयाल दया दान देवे, विच पाथर कीरे कारी, अंतरवास बहुत मुशकाई, भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी, बन बन ढूंढ ढूंढ फिर थाकी, गुरपुरै घर निस्तारी।

जन मान प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हास दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए।

आप निस्तारी नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी रहाउ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह कहो हर गुर मेल सवारी साकत कर्म पानी ज्यो मथी नित पानी झोल चुलारे मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारी नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारे मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारी मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारी गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भाई मैं सतगुर अलख लखारी नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन भारी श्रद्धा श्रद्धा अपाई मलाई मोको हर गुर गुर निस्तारी पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी तौ गुण ईस वर्ण नहीं साक।

मन धीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत।

सतसंगत गुर निस्तारी, प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारी, मेर समेर मोर बहु नाचै, जब उनवै कन कन हारी, साकत को अमृत बहु सिंचो, सब डाल फूल बिस्कारी, ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारी, संतन संत साध मिल रही है, गुण बोले है पर उपकारी, संतै संत मिले मन बिगसै, ज्यो जल मिल कमल सवारी, लोभ लहर सब सुवान हलक है, हलकियो सबह बिगारी, मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारी, राख राख राख प्रभ मेरे, मैं राखो कृपा तारी, नानक मैं तारी।

प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रभराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो

ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार।

राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म वधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाई वडभागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिय है, ज्यों लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो।

है जीव जंतर करे प्रतपाल, सदा सदा सेवो कृपाल, सदा धर्म जाके दीवान, बे मोहताज नहीं किस कान, सब किस करना अपने आप, रे मन मेरे तू तां को जाप, साध संगत को हों बलिहार, जास मिल हुए उदार।

तेरे किस अंत नाही पार रहाउ। एक खिन है थाप उथाप दा घड़ भन करने हार, जेत कीन उपार जना प्रभ दान दे दातार। हर

जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवां मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा कृपाल रहाउ आदि अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोई।

सलाही है, जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा, इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े, नानक भी संजोग मारू महला पहला, मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करतै लेख लिखाया, लिख दात जोत वड़ियाई, मिल माया सुरत गवाई, मूर्ख मन काहे कर सहमाना, उठ चलना खसमै भाणा रहाउ, तज साध सहज सुख होई, घर छड़ने रह ना कोई, किस खाजै किस धर जाइयै, जे बहुड़ दुनिया आइयै, सज काया पट हंडाई, फरमाइश बहुत चलाई, कर सेज सुखाली सोवै, हत्थी पौंदी काहे रोवै, घर घुमण वाली पाई

ना छोड़स किसन प्रीत ज्योरे पंडित संग वसह जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्योरे एक पाखंडी नाम ना राच है एक

पतत पनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

जाई, ना यह धन डूबै ना इस धन को मिलै सजाई। इस धन की देखो वडियाई, सहजे माते अन दिन जाई। एक बात अनूप सुनो नर पाई, इस धन बिन कहो किन परम गत पाई। भणत नानक अकथ की।

दर ढोई झूठा आवण जान साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांझी है बहुड़ न मैला होए जब लग साहिब मन वसै तब लग बिघन न होए नान

अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोए सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने प्रांति।

गुर कै शब्द त्याए तू सच लगी प्यार रहाओ ऐथे नाम भुलिया फिर हाथ कथाऊ ना पाए जोनी सब पवाईयन बिष्टा माहे समाए वडभागी गुर पाया पूर्ब लिखिया माए अन दिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मनाए आपे सिष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाईया जय पावै तैं दे मारू महला तीजा पिछले गुनाह बख्शाए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा विचो आप गुआए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए।

आनंदिन त्याई हर नाओ सतगुर कै बचन अराद तू आन दिन गुण गाओ रहाओ गुरमुख को जानिए जा सतगुर।

आय जामपुर बद्दे मारिय है बहुती मिले सजाय। मेरा प्रभ वे परवाह है ना तिस किल ना तमाय। नानक तिस सरनाई भज पओ आप।

जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परे दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरे।

गण गंधर बे जपयो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपयो मुख हर हर नाम जपया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसया ते गुरमुख पार पया अनंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया गुरतार कृपा हर नाम दरड़ायो जन नानक नाम लया मारू महला चौथा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम निदान लै गुरमत हर पत पाए हलत पलत नाल चलदा हर अंते लए छडाए जिथै अवकट गलियां पीड़ियां जिथै हर हर मुक्त कराए मेरे सतगुरा मैं हर हर नाम दृढ़ाए मेरा मात पिता सुत बंदपो मैं हर बिन अवर नाम आए रहाऊ।

हर कथा सुनाई प्रभ गुरमत हर हृदय समाणी जप हर हर कथा बड़ भागिया हर उत्तम पद निर्वाणी।

मैं हर हर कथा मन पाणी, हर हर कथा नित सदा कर, गुरमुख अकथ कहानी रहाउ। मैं मन तन खोज टंडोलिया, क्यों पाईए कथ कहानी, संत जना मिल पाया, सुन अकथ कथा मन पाणी। मेरे मन तन नाम आधार हर, मैं मेले पुरख सुजानी, गुरपुरख पुरख मलाए प्रभ, मिल सुरती सुरत समाणी। बड़ भागी गुर सेविया, हर पाया सुगड़ सुजानी।

सुगुण सुजानी जन नानक शरणागति कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदायु पुजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया।

लाग। हर हर भगत परे पंडहारा, गुरमुख राम करे निसतारा। जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, सो हर के गुण गावे जियो। हर हर कृपा करे बनवाली, हर हृदय सदा सदा संभाली।

अड़े जप हर हर नाम छुडावे जीव रहाउ सुख सागर अमृत हर नाउ मंगत जन जाचा हर देउ पसाउ हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जीव नवे सिदर सर्व है अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होए मेरा स्वामी हर सिमरत मन लह जावे जीव माया मोह भिकम है भारी क्यों तरिए दुत्तर संसारी सतगुर बोहित दे प्रभ साचा जप हर हर पार लगावे जीव तू सरबत्र तेरा सब कोई जो तू करह सोई प्रभ होई जन नानक गुण गावे बेचारा हर पावे हर थाई पावे जीओ मारू महला चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किलविक काटे हर तेरे हर तन राखो हर तन संचो हर चल दिया नाल सखाई जीओ जिसनो कृपा करे सो त्यावे नित हर जप जापे जप हर सुख पावे गुर प्रसादी हर रस आवे जप हर हर पा

पर हर का मन मानिया सो सेवक चौ जुग चौ कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपने चलता जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छाई दियो हम अन दिन नाम लई करतारी।

बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्प है सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरप है केते रूप उपाया छल बपरी ये कौला डरप है अत डरप है धर्म राया सगल समगरी डर है ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रु बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारो तरयो बदक तरे बेचारी एक निमक मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो पनीता।

नानक ओट हर की लीजे पुजा पसारी मारू महला पंजवा वेतन वेत भ्रमयो बहु भांति अनक।

पतत पिए खिन पीतर महमा कथन न जाय निरपौ भये सगल पै खोए गोविंद चरण उटाई।

तिस को कबहू ना गाव सरी, छोड़ जाए खिन पीतर ताको, वा को फिर ताव सरी, अपने प्रभ को क्यों ना समार सरी, बैरी संग रंग रस रचिया।

गुण भ्रम छूटा ज्यों प्रभ भये सहाय मारू महला पंजवां अंतर जामी सब बिद जाने किसते कहां दुलारियो हस्त पाम चरे खिन पीतर अग्न संग ले जा रियो मूड़े तै मन ते राम बसारियो लून खाए करह हराम खोरी पेखत नैन बिदारियो रहाओ असाध रोग उपजे तन पीतर।

तुम बावर दलाब जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह यानथ ताज सारंग हर भ्रम तू भूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेवह हौ हौ करत बेहावत हो कट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावत सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निचल जानत पर की को अपनी कर पकरी ऐसे भूल पलानत खतरी ब्रह्म।

लगह तपत थम गल लाई रे नर काए पर ग्रह जाय कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ विकार पात्र गलह बांदी निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पार न परना जाय काम क्रोध लो

ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई स्वभावत जैसी बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाई। जिस कर्म खुलिया तिस लहिया पड़दा जिन गुर पह मन्या।

मनुआ भलो समो सुआउ रहाउ खोए खेड़ा परम मन का सतगुर सरणी जाय। कर्म जिस कौ तुरहु लिखिया।

परम का मन पयो परगास काटी बेरी पगहते गुर कीनी बंद खलास आवन जान रहे हो तपत कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो रहाओ जब ते साधु संग पया तो

आओ तपसी कर कह दे ही सादी मनुआ दह दिसताना ब्रह्मचार ब्रह्मचज कीना हृदय भया गुमाना सन्यासी होए कै तीर्थ भ्रम्यो उस मह क्रोध बिगाना कुंगर बांध पए राम।

मुख राग अलापे मन नहीं हर हर गावा हर कसोग लोभ मोह रहत है निर्मल हर के संता।

सब किस जाने मेरे जी का प्रीतम बिसर गए बकबाया रहाउ दूजा मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर जन्म है गावारा मेरे सतगुर ही पत राख चीत आवह तब ही पत पूरी बिसरत रलिए खाक रहाउ रूप रंग खुशियां मन

मात गर्भ में जिन प्रित पारिया जियो पिंड दे साज सवारिया सोई बधाता खिन खिन जपिए जिस सिमरत अवगुण सब ढकिए चरण कमल उरे अंतर तारू बिखिया बन ते जियो उधारू।

सत करमानी हित लायो सठ मूड अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदले जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता त्रिशन ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत न जाए मटायो पास पंखी पू

उठ उठ फिर तावे, मन तन वासना बहुत विस्थारा, अहम में मूठो बेचारा, अनक दुख अर बहुत सजाई, तां की कीमत कहन ना जाई, प्रभ बिसरत नरक में पाया, तह मात ना बंद ना मीत ना जाया, जिस को होत कृपाल स्वामी, सो जन नानक पार ग्रामी, प्रमत प्रमत प्रभ सरनी आया, दीना नाथ जगत पित माया, प्रभ दयाल दुख दर्द बदारन, जिस पावे तिस ही निस्तारन, अंधकूप ते काड नहारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप अपना तन तारिया, महा अग्न ते आप उबारिया।

पंजवा पतत उदारन तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई भेटै संत जित हर हरे हर त्याई।

मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवां।

सगल तिहानु तजियो मन ते अभिमानु निश्चल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन त्रिपत अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निधाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीद नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू महला पंजवां चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन भज संग साधु भव सागर उतरह पार मेरे मन नाम हृदय धार कर प्रीत मन तन लाए हर सिउ अवर सगल विसार रहाउ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबहु।

होशे अमर जुग जुग जियो रहाओ, नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो, मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो, मारू महला पंजवा प्रितपाल माता।

महाभोजन माहि तुलहु जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन घन साथ करन कारण चेतना आवे दे कर राखे हाथ रहाउ साध संगत गुण उचारण।

वैदो न वाई भैनो न पाई एको सहाई राम ही कीता जसो हुए पापा मलो तो हुए सो सिमरहो प्रधान ही कट कटे वासी सर्ब निवासी अस्थिर जाका थान ही आवे न जावे संगे समावे पूरन जाका काम ही भगत जना का राखन हारा संत जीव है जप प्राण अधारा करन कारण समरथ स्वामी नानक तिस कुर्बान ही।

बढ़ाई, जेहे नर जस कृपा निध गायो, ताको भयो सहाय। कहो नानक मैं एही परोसै, गही आन सरनाई। मारू महला नौवां, अब मैं कहां करौं री माई। सगल जन्म बिथियन सिउं खोया, सिमर्यो नाही कनाई रहाओ। काल पास जब गर्भ मेली, तेहे सुध सब बिसराई। राम नाम बिन या संकट मह, को अब होत सहाय। जो संपत अपनी करमानी, सिन मह पई पराई। कहो नानक यह सोच रही मन, हर

करै पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो, एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो, मारू अष्टपदियां महला पहला कर पहला।

साहिब निर्मल मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाऊ हर पढ़िए हर बुझिए

यासमुंद मझार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग फाथा महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाउ सतगुरु है बोहिथा शब्द लंघावन हार तिथै पवन ना पावको

सो भर गुण नहीं, बिन गुण क्यों घर जाओ। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा तन नाही। जिनकै नाम ना मन वसै,

सुख नहीं गाडे ला दे शार विछड़िया मेला नहीं दुख कणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही मैं भूले तू समझाए भूले मार्ग जो दसे

सुवाया जियो पिंड सब तिसदा साहु तिनह विच पाया जां कृपा करे तां सेवीऐ सेव सच समाया लाला सो जीवत मरै मर विचो आप गवाए बंधन टूटै मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए सब मह नाम निदान है।

चलना मुखे अमृत नाव मेरे ठाकुर हाथ वडियाईया मिल है मन चाओ कीता क्या सलाही है कर देख सोई जिनकी आसु मन वसै मैं अवर ना कोई सो साचा सलाही है साची पत होई पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला पाप पुन दोए संग में खुदिया जमका।

खार समुंदर कंडो लिए एक मनिया पावे दोए दिन चार सोहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत सेवी।

कर हीरै ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना पेटै दुर्मत कुमन केरै दसंतर भवै पाठ पढ़ थाका तृष्णा हुए बधेरै काची पिंडी शब्द ना चीनै उधर भरै जैसे ढूरै बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी गुर कै शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते त्रिपतासी रहाओ कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेख पेखारी कापड़ फार बनाई खिंथा चोली माया तारी घर घर मांगे जग प्रबुद्ध मन अंधे पतहारी परम फलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी अंतर अगन ना गुर बिन बूजे बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर कीन से आपे निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे अठ सठ तीरथ परम बगूचे है क्यों मल धोपै पापै छाणी खाक बेभूत चढ़ाई

उपाय रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पवजल क्यों तरै गुरमुख नाम निरंजन पाई है।

न सोई। सतगुर मिले मरे मंदा होवै ज्ञान बिचारी दियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख कृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाईए कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिर अहंकारी

सागर जिन्यो पायो शरण प्रभु की गही गुर प्रसादी प्रभ आराधी जम कंकर किसना कही मोख मुकत द्वार जाके संतरिदा भंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसै मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े।

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह उचार सिमर स्वामी सुख सहज कुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासक मिटह खिनमह हृदय जप भगवान।

मित्र सत्धर ना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है।

शंका मान सुपाए अपाए जो निकट आवे सीत ता का जाए आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुपाई चरण सरन सनाथ इहु मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाऊ नानक पए प्रभ कृपाल मारू महला पंजवां घर चौथा अष्टपदियां।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्रापते जा कै मस्तक भागना कहो नानक तिस सब कि

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ तुदे आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत कृपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुख तजावना दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निद रिद सिद्ध पाई।

कोहे ना राखै संता संग समावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस महराती तिस बहुड़ना कबहू औखीवना मिलो तिस सर्ब निदाना प्रभु कृपा।

ग्रह चिंता जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता दुहू व्यवस्था तेजो मुक्ता सोई सोहेला पाली है ग्रह राज मह नरक उदास करोदा बहु विध वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता जिस जन की पूर्ण काली है जागत सूता परम भगूता बिन गुर मुक्त न होइए मीता साध संग टुट है हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्यापिया चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

भओ मन माही। इस ही मह जिसकी पत राख है, तिस साधु चौर टाली है। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जोनी फिरना। जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है। जित जित लाव है तित तित लगना, कर कर वेखै अपनी जचना।

जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे हस्त अधोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औद बिहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दोजक पाए सिर जनहार लेखा मंगै बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन तन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जातू करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुस खुस लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खात अंदर

साहिब सबना सिर भाए मिले भौ जाई हे भूले चूके मार्ग पावह आप भलाए तू है समझावह।

लगाई है। जिस बख्शे तिस दे वड्याई, सब सहदाता तिल ना तमाई। परपुर धार रहया ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या सलाही अगम अपार है।

जम्मण मरना, गुर के समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख है, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल बिगास हरे सरस पर,

जुग जुग बिरनी गुरमुख जाता, साचा रव रहया मन राता, तिसकी ओट गही सुख पाया, मन तन मैल ना काई, जीवर साइन साचे राती, हर प्रभ संगी पहो ना प्रांति, श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति जोत मलाई, रख रख पैर तरे पौ तरना,

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई त्रेतै धर्म कला इक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाण मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ पर अद्धि होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर्म धरे धरनी।

ठाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त ना हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीरथ नावह, ज्यों तुद भावै तिवै चलावह, हठ निग्रह अपतीज ना पीजै, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल मह एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन ना पाखी, मनमुख

तारी गुरमुख कोट असंख्य उधारी सर्ब जिया जग जीवन दाता निरपहु मैल ना काई हे सगली जाचह गुर पंडारी आप निरंजन अलख अपारी।

चले शब्द मलाई, जांत सपाणा सहज समाई, त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर, अवर न दूजा पाई है, जिसके चाकर तिसकी सेवा, शब्द पतीजै अलख अपेवा, भगतां का गुण

मन तन अर्प मिले जग जीवन हर सियों बणत बनाई प्रभ की गत मित कोई ना पावे जे को वड्डा कहाए वडाई खावे साके साहेब तोट ना दाती।

भोग व्यापे जो किछ करे सो आपे आपे भगत पाओ गुर की मत पूरी अनहद शब्द न खाई है एक नांगे भूखे पवह पवाए एक हठ कर मरह ना कीमत पाए गाते अवगत की सार ना जाने बूझे शब्द कमाई है एक तीर्थ नाव है अन न खाव है एक अग्न जलाव है देख पाव है राम नाम बिन मुक्त न होई केत बिद पार लंगाई है गुरमत छोड़ है उजड़ जाई मन मुख

जावै, बूझै हुकम सो साच समावै, नानक साच मिलै मन पावै, गुरमुख कार कमाई हे। मारू महला पहला, आपे करता पुरख बिधाता, जिन्हें आपे आप उपाय पछाता।

ज्ञान दे पाणे जिन पाया सोई बिद जाने जिन पाया तिन पूछो पाई सुख सतगुर सेवक माई गुर बिन उर्ज मरह बेकारा।

देखो कर नंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी क्यों पव जल पार लंघाई है देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखै शब्द रजाई है ओह निर्मल है नाही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सत्यारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई है गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही वैस है तखत सो शब्द विचारे तत लह

कर वास न पाई, पेयड़ सिर माराही, खाजै पैंजै रली करीजै, बिन अब भगती बाद मरीजै, सर

शब्द कर जाने किसे ही मंदा आख न चले सच खरा सचियारा ही साच बिना दर सिजे ना कोई साच शब्द पेंज है पत होई आपे बख्श लए किस पावे हम मैं गर्भ निवाराई गुर कृपा ते हुक्म पछाणे जुगा।

कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बिना ही गुर सरवर हम हंस प्यारे।

नाही। हर अगम अगाह अगाध नराला, हर अंत न पाइय गुरु गोपाला। सतगुर मत तारी तार नहारा, मेल लए रंग लीना। सतगुर बाज हो

अमृत रस पाई जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीनाई काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही श्रिष्ट उपाय रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप मह गोते खावे ज्यों जलते बाहर मीना है चौरासी नरक साकत पोगाई है जैसा की कहते सो पाई है सतगुर बाजो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे धार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेश्वर।

कर ले चलुहु दर्शन पावहु सहज महलुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे यो समदर्शी चीना ही प्रभ बेअंत गुरमत को पाव है गुर कै शब्द मन को समझावे है सतगुर की बाणी सत सत कर्म।

नाही। एक दर सेव है दर्द बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छडाई। हम मैं बंधन सतगुरु तोड़े, चित चंचल चलन ना दीनाही। सतगुरु मिलहो चीनो बेदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई। हम मैं मार करो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीनाही। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

सरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा ही। मनमुख अंदले सो जी नाही, आवह जाहे मरह मर जाही। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जमदारे अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। पिर बिन क्या तिस धन सिंगारा, पर पिर राती खस

अगन बेख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड कमावे रोग बुरा बुरिया राही मस्तक भार कलर सिर भारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

मन मुख दाजै पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद जाना नाम जपो सुख साराही सतगुरु तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाई न गडई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेहे रलै तन सीजै मन मुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोय अंगम नाले इन दुगदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो प्रीत न उपजै भगत रत्ते पतिया राही साकत माया कौ बहुतावह।

सतगुरु मिले तो मनु हां टेकै, राम नाम बेसरन परेकै, हर तन नाम अमोलक देवै, हर जस दरगाह प्यारा ही, राम नाम साधु सरनाई, सतगुर बचनी गत मित पाई, नानक हर जापो

राम जपहु अंतरगत ध्यानी, लालच छोड़ रचहु अपरंपर। यूं पावहु मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरे जम जोहन लागे। सब सुख जाहे दुखा पुन्यागे, राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

खोज लहो घर अपना बहुड़ ना गर्भ मझारा ही सच तीर्थ लावहु हर गुण गावहु तत्व विचारहु हर लिवलावहु।

गुड़ कपट महती का अहन सनिंदा करह अनेका बिन सिमरन आवह फुन जावह गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूके जम का डंड ना कबहू मूके बाकी धर्म राय की लीजह सिर अपरे हो पार अपारा ही बिन गुर साकत कहो को तरया हम मैं करता पव जल परया बिन गुर पार न पावे कोई हर जपिय पार उतारा ही गुर की दात न मेटे कोई जिस बख्शे तिस तारे सोई जन्म मरण दुख नेड़ न आवे मन सो प्रभ अपर अपारा ही गुर ते भूले आवो जावो जन्म मरहो फुन पाप कमावो साकत मूड अचेत ना चेत है दुख लागे ता राम पकारा ही सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाते दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहु अपना किया करारा ही हम मैं ममता कर दाया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकारा ही हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मन समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काटन हारा ही हर गुरु पूरे की ओट पराती गुरमुख हर लेब गुरमुख जाती।

बैरागी मन मनसा मार समाता ही सतगुर सेवह से परदाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता ही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर

को अंत ना जानी जा को अलख लखाई आपी अकथ कथा बुद्धता हाई जन्मे को वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाई जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर सहाई संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

लेवै वस्त संभाले बजर कपाट जड़े जड़ जाने गुर शब्दी खोला एंदा पीतर कोट गुफा कर जाई नौ कर थापे हुक्म रजाई।

जाने जो किछ करे सो आपन भाणे लख चौरासी जी अपाई भाणे सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निहचो होवे मनमुख आप गणाई रोवै।

अटल अडोल अतोल मरारी खिन मैं ताहे फेर उसारी रूप ना रेखिया मित नहीं कीमत शब्द भेद।

कोई, गुर बिन सो जी किना ना होई, साच मिले सो साचे पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरों विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे

तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा जप तप संयम ना व्रत पूजा।

गुर शब्द सुनाया, कर कर देखै हुक्म सबाया, खंड ब्रह्मांड पाताल अरंबे, गुप्त हो प्रगटी आएंदा, ताका अंत न जाने कोई, पूरे गुर ते सूझी हुई, नानक साच रते।

किसै बुझाईंदा नदर करे पूरा गुर पीटै जम जंदार न मारे फेटै ज्यों जल अंतर कमल बिगासी आपे बिगस त्याईंदा आपे वरखै अमृत धारा रतन जवेहर लाल अपारा सतगुर मिलै ता पूरा पाईऐ।

आया हुक्म समाया हुक्मे दीसै जगते उपाया हुक्मे सुर्ग मच पहे आला हुक्मे कला रहाएंदा हुक्मे धरती तौल सिर पारन हुक्मे पौन पानी गहनारन हुक्मे शिव शक्ति घर वासा हुक्मे खेल खलाएंदा हुक्मे आडाने आगासी हुक्मे जल थल त्रे पवन वासी हुक्मे साहस ग्रास सदा फुन

दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथा मुक्त कराईंदा सुनो उपजे दस अवतारा श्रेष्ठ उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजी सब लिखिया कर्म कमाईंदा गुरमुख समझै रोग ना होई ए गुर की पौड़ी जाड़ जन कोई जुगा जगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाईंदा पंच तत् सुनो परगासा देह संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा भला दोए मस्त कलीखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रत्ते हर रस मतवाले रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए पूरे भाग मलाएंदा इस मन माया को नेहो कनेरा

शब्द अति शीतल सहज पाए लिवलाया त्रै वरताए चौथे घर वासा काल बिकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारी हर रस माते पार उतारी नानक रेण संत जन संगत

लख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो घर अपना हरि आत्म राम नाम पाया सर्ब निरंजन पुरख सुजाना अदल करे गुर ज्ञान समाना काम क्रोध लै गर्दन।

मैल निवास निरंतर आवण जान चुकाया ना मन चले ना पौन उड़ावे जोगी शब्द अनाह दबावे पंच शब्द चुनकार मरालम प्रभ आपे वाहे

निरंजन राया, दुख भय भंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे काटी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पौ भंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काल कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाण, आपे जाने आप पछाण, सब तिसका चोज सबाया, आपे साहु आपे वणजारा, आपे परखे परखण हारा, आपे कस कस वट्टी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रभतारी, घट

निरंजन गाया हूं मैं अमित शब्द सुख होई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो भवजल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हूं मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुक्ते दसवै आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिने आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिया अकल गाए जमते क्या डरिए जत जत देखो तत तत तुम ही अवर ना दुतिया गाया सच हर नाम सच है सरना सच गुर शब्द जिते लग तरना कथ कथ देख अपरंपर हुन गर्भ ना जोनी जाया सच बिन सत संतोख ना पावे बिन गुर मुक्त न आवे जावे मूल मंत्र हर नाम रसायन अहो नानक पूरा पाया सच बिन भवजल जाए ना तरिया यो समुंद अथाह महा बिख भरिया।

चलह अभमानी उपजह बिन सुख पाया उपजह बिन सह बंधन बंदे हम मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर मुक्त पये सुख पाया गुरमत कृष्ण गवर धन तारी गुरमत शायर पाहन तारी गुरमत ले हो परम पद पाई है नानक गुर परम चुकाया गुरमत ले हो तरो सच तारी आत्म चीनो हृदय मरारी जम के पाहे काट है हर जप अकुल निरंजन पाया गुरमत पंच सखे गुर पाई गुरमत यज्ञ निवार

गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की कीजै जिन्हो आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंग।

अवतारे सस कर सूर दीपक गहनारे देख अदिष्ट रहो लिव लागी सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा भव जाए अनुभव पद पावे आप गुआए ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजै हर जपिया अंत ना पाया अंतर नाम परापत हीरा हर जपते मन मन ते धीरा दुकट कट पौ पंजन पाइए बहुड़ जन्म ना जाया भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मलाए हर तारे जगत सबाया जिन जप जपयो सतगुर मतवाके जम कंकर काल सेवक पगताके उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पौजल भारत राया एहो पौजल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुबदा अंतर जरिया पांच बाण ले जम को मारे गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाइए शब्द सुरत बिन आइए जाइए नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पहाग मलाया निरपो सतगुर है रखवाला भगत परापत गुर गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजे गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया। अंतर की गत सत गुर जाने, सो निरभउ गुर शब्द पछाने। अंतर देख निरंतर बूझे, अनत ना मन डोलाया। निरपौ सो आबे अंतर वसिया, अहनस नाम निरंजन रसिया। नानक हर जस संगत पाई है,

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहया पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिस को मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले है परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाए चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेव हो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाई, साची दरगाह गत पत पाई, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवहु सतगुर समुंद अथाहा, पावहु नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर नाभु, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेवहु संक ना कीजै,

साचे भावै तिस वडियाए, कौन सो दूजा तिस समझाए। हर गुरु मूरत एका वरतै, नानक हर गुर पाया। वाचह पुस्तक वेद पुराना, एक बह सुनह सुनावह काना। अजगर कपट कहो क्यों खुलै, बिन सतगुर तत ना पाया। करह विभूत लगावह पसमै, अंतर क्रोध चंडाल सो हौमै। पाखंड कीने जोग ना पाईऐ, बिन सतगुर अलख ना पाया। तीर्थ वर्त नेम करह उदयाना, जत सत संजम कतह ज्ञाना। राम नाम बिन क्यों सुख पाईऐ, बिन सतगुर परम ना जाया। न्योली कर्म पुयंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सौ, गुर शब्द महारस पाया। कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया। नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया। मारू सोलहे महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हुक्मी सहजे सृष्टि उपाई।

नाम रतन पाया, मनसा मार मन माहि समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बने आई हे। तृष्णा अग्न जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वडभागी साचै नाम सदा लिभ लागी। अंतर नाम रव्या नेह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किने पछाणी। सच्चा शब्द रते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हम मैं विचों जाई हे। गुरते बूझै तां दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै।

ना किशु ना सूजै गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द बजाई है जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया कोई ना मेटै तुर फुरमाया सत संगत मह तिन्ही वासा जिनको तुर लिख पाई।

सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई एको रव रहया सब अंतर तिस बिन अवर ना कोई है। लख चौरासी जी उपाय ज्ञानी ध्यानी आख सुनाए सबना रिजक समाहे आपे कीमत होर ना होई है। माया मोह अंध अंधारा हम मैं मेरा पसरिया पासारा अन दिन जलत रह दिन राती गुरबिन शांत ना होई है।

सो लागै गुर प्रसादी जम का पौ भागै अंतर शब्द सदा सुख दाता गुरमुख बूझै कोई आपे मेले मेल मलाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए आन दिन भगत करे।

मार तृष्णा अग्न निवारी शब्द चीन सुख होई है। काया कुटंब मोह ना बूझै गुरमुख होवै ता आखी सूझै। अन दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है। मनमुख तात दूजै है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे। शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवे पाए सुपाई हे। पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाए। बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए पढ़ था के शांत ना आई हे। एक भस्म लगाए फिर भेख तारी बिन शब्द होमै किन मारी। अन दिन जलत रह दिन राती परम भेख परमाई हे। एक ग्रह कटम मह सदा उदासी शब्द मोए हर नाम निवासी। अन दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे। मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावे कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, रब ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते नंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। इशनान दान करह नहीं बूझ, एक मनुआ मार मन स्यो लूझ, साचे शब्द रते एक रंगी, साचे शब्द मलाई है। आपे सिरजे दे वडे आई, आपे पाणे दे मलाई।

जन साची मनमुख सेव न जान न काची आपे करता कर कर वेख ज्यो पावे त्यो लाई हे जुग जुग साचा एको दाता पूरे भाग गुर शब्द पछाता शब्द मिले से विछड़े नाही नदरी सहज मलाई हे हूं मैं माया मैल कमाया मर मर जमह दूजा पाया बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई मन देखो निवलाई हे जोत सुभावे सोई करसी आपो हो आना किस होसी।

जासी, दूजै भाए बहादा जम फासी, सतगुर राखे से जन उबरे, साचे साच समाई हे, आपे करता कर कर वेखै, जिसनो नदर करे सोई जन लेखै, गुरमुख ज्ञान तिस सब किस सूजै, अज्ञान

सुख पाया सहजी साच समाई ही तंदै तावत मन पया मनूरा फिर हुए कंचन पेटै गुरपूरा आपे बख्श लए सुख पाए पूरे शब्द मलाई हे दुर्मत झूठी बुरी बुरियार औगण यारी औगण यार कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम ना पाई हे औगण यारी कंत ना पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साहु ना जाने मूरख बिन गुर बूझ ना पाई हे दुर्मत खोटी खोट कमावे सिंगार करे फिर खसम ना पावे।

न पाई, बिन सतगुर सुख ना पाई। किसनो कहिए जा आप कराई, जित पावे तित राहि चलाई। आपे मेहरवान सुखदाता, जो

बिनसै तहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूजै जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सच आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है हों तिन बलिहारी जो साचै लागे हर गुण गावह अन दिन जागे साचा सूख सदा तिन अंतर रसना।

सब सच दिखाया सच्चै नाम निवासी हे ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर आया आप भूला जा खसम पुलाया हर जियो मिलै ता गुरमुख बूजै चीनै शब्द अबनासी हे काम क्रोध भरे हमें अपराधी क्या मुँह लै बोल है ना हम गुण ना सेवा सादी डुबदे पाथर।

आई। मन मुखे अंधे किछु ना सूझै, गुरमत नाम परगासी। मन मुख हों मैं माया सूते, अपना घर ना संभालै अंत बगूते। पर निंदा करह बहु चिंता जालै, दुखे दुख नवासी। आपे करते कार कराई, आपे गुरमुख दे बुझाई। नानक नाम रते मन निर्मल।

जय। इंद्र इंद्रासन बैठे जम का बहु पाव है, जम ना छोड़ै बहु कर्म कमाव है। सतगुर भेटै ता मुक्त पाई, हर हर रसना पी जै। मन मुख अंतर भगत ना होई, गुरमुख भगत।

वेद बाद सब आख वखाण है, ना अंतर भीजै ना शब्द पछाण है। पुन पाप सब वेद दिरड़ाया, गुरमुख अमृत पीजै ही। आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। नानक नाम रते मन साचा, सचो सच रवीजै ही। मारू महला तीजा, सच्चै सच्चा तख्त रचाया। निज कर वस्या तिथै मोह न माया, सद ही साच वस्या घट अंतर।

सच्चा तन खटिया कदे टोट ना आवै बूझै को विचारी सच्चै लाए से जन लागे अंतर शब्द मस्तक वड भागे।

सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्द सच सुहावे एथे साचे से दर साचे नदरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी है। साचा शब्द जिन्ना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सचो सेव है सच त्याव है सच रते विचारी है। गुर की सेवा मीठी लागी हन दिन सुख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होआ।

लह तोल ज्यो भावै त्यो राखह रहना गुरमुख को जाता ही जातुद पाणा ता सच्ची कारे लाई अवगण छोड़ गुण माहि समाई गुण मह एको निर्मल साचा गुर कै शब्द पछाता ही जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत शब्द खोई एक समह प्रभ एक समाना अपने रंग सद राता ही काया कमल है कुमलाना मनमुख शब्द न बुझे एयाना गुर प्रसादी काया खोजे पाए जग जीवन दाता ही कोट गही के पाप निवारे सदा हर जियो राखे उर तारी।

कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सलाही, जुग जुगे को जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा, सद सेवे सुख दाता ही। जह देखा तू सबनी थाई, पूरै गुर सब सोजी पाई। नामो नाम त्याई है सदा सद।

रतने अमोलो आपे नदनी तोले तोलो जी जंत सब सरण तुम्हारी कर कृपा आप पछाता ही जिसनो नदर होवे तुर तेरी मरे न जम्मे चूकै फेरी साचे गुण गावे दिन राती जुग जुग को जाता ही माया मोहे सब जगते पाया ब्रह्मा विष्ण देव सबाया ज्योत दुपाणे से नाम लागे ज्ञान मती पछाता ही पाप पुन वरत संसारा हरख सोग सब दुख है पारा गुरमुख होवे सो सुख पाई।

पूर्व लिखिया सो फल पाया जिन आप मार पछाताई माया मोहे हर स्यों चित न लागे दूजे पाए कणा दुख आगे मन मुख परम भुले भेख धारी अंतकाल पछताताई हर कै भाण हर गुण गाई सब किलविक काटे दुख सबाई हर निर्मल निर्मल है बाणी हर सेती मन राता ही जिसनो नजर करे सो गुण निद पाई हम मैं मेरा ठाक रहाई गुण अवगुण का एको दाता गुरमुख विरली जाता ही मेरा प्रभ निर्मल आते अपारा आपे मेले गुर शब्द विचारा आपे बख्शे सच दृढ़ाई मन तन सच राता ही।

रत्न अमोल के अग में अपारा, कीमत कमन करे विचारा, गुर के शब्दे तोल तलाई, अंतर शब्द पछाताई, सिमरत शास्त्र बहुत विस्थारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझ, गुरमुख विरले जाता ही, आपे करता करे कराई, सच्ची वाणी सच दृढ़ाई, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता ही, मारू महला तीजा, सो सच सेवे हो सिरजनहारा, शब्दे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम यथाहाई, आपे सच्चा सच वरताई, एक

विरले कहो गुर शब्द बुझाए, सतगुर सेव है से जन साची, काते जम का पाहाए, पन्ने कड़े सवारे साजी, माया मोहे दूजे जंत पाजी, मन मुख फिर है सदा अंध कमाव है, जम का जेवड़ा गल पाहाए, आपे बख्शे गुर सेवा लाई।

सच्चा सच्ची नाई गुरमुख देवै मन वसाई जिन मन वसया से जन सो है तिन सिर चूका काहाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई गुर प्रसादी मन वसाई सदा शब्द सलाही।

अपारा मनमुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई हुक्मे वे परवाहाई गुर प्रसादी हुक्म पछाणे तावत राखै इकत कर आणे नामे राता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग में वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगमे अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भावै है त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई।

आई सतगुरु पूरा शब्द सुनाई अन दिन भगत करहो निवलाई हर गुण गावे है सद ही निर्मल निर्मल गुण पातशाही गुण का दाता सच्चा सोई गुरमुख विरला बूझै कोई नानक जन नाम सलाहे बिगसै सो नाम बेपरवाहाय मारू महला तीजा हर जियो सेवे हो अगम अपारा तिसदा अंत न पाईऐ पारा वारा गुर प्रसाद रविया घट अंतर तित घट।

पूरै सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगत पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

काचन काचे अगमय गोचर वे परवाह भगत वच्छल आथाहाए सतगुर पूरा साच दृढ़ाए सच्चै शब्द सदा गुण गाए गुण दाता वरतै सब अंतर सिर सिर लिखदा सहाय सदा हदूर गुरमुख जापै शब्दे सेवै सो जन त्रापै अनदिन सेवै सच्ची बाणी शब्द सच्चै ओ माहाहि अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए मन हठ कर्म फिर जोनी पाए बिखिया कारण लभ लोभ कमावै दुर्मत का दुराहि पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए गुर कै शब्द हर नाम चित लाए मन तन हर रविया काट अंतर मन पीनै भगत सलाहाए मेरा प्रभ साचा असुर संघारण गुर कै शब्द भगत निस्तारण मेरा प्रभ साचा सद ही साचा सिर शाह पातशाहाए से भगत सच्चे तेरे मन पाए दर कीर्तन करह गुर शब्द सुहाए।

मरा पद हुए गुर कै शब्द रस ताहाए आप पछाणै सो सब गुण जाणै गुर कै शब्द हर नाम बखाणै आनंदिन नाम रत्ता।

हर पाया, हर जप जाप समाही, मारू महला तीजा। गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख ज्ञान ध्यान अपार, गुरमुख कार करे प्रभ भावै, गुरमुख पूरा पाएंदा। गुरमुख मनुआ उल्ट परावै, गुरमुख बाणी नाद बजावै, गुरमुख सच रते बैरागी, निज कर वासा पाएंदा। गुर की साखी अमृत भाखी, सच्चा शब्दे सच सुपाखी, सदा सच रंग राता मन मेरा, सच्चे सच सुमाएंदा। गुरमुख मन निर्मल सत सरनावे, मैल न लागे सच सुमावे, सचो सच कमावे सद ही, सच्ची भगत दिरड़ाएंदा। गुरमुख सच बैणी, गुरमुख सच नैणी, गुरमुख सच कमावे करनी, सद ही सच कह दिन राती, अवरा सच कहाएंदा। गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी, गुरमुख सचो सच बखाणी, गुरमुख सद सेव है सचो सच्चा, गुरमुख शब्द सुनाएंदा। गुरमुख होवै सो सोजी पाई, हो मैं माया परम गवाई, गुर की पौड़ी उत्तम उची, दर सच्चै हर गुण गाएंदा। गुरमुख सच संजम करनी सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, पाए भगत सदा रंग राता, आप गवाए समाएंदा। गुरमुख होवै मन खोज सुनाई, सच्चै नाम सदा निभलाई, जो तिस भावै सोई करसी, जो सच्चे मन पाएंदा। जां तिस भावै सतगुरु मलाई, जां तिस भावै तां मन वसाई, अपने भाणे सदा रंग राता, भाणे मन वसाएंदा। मन हथ कर्म करे सो सीजै, बहुते भेख करे नहीं पीजै, भिखिया राते दुख कमावै, दुखे दुख समाएंदा। गुरमुख होवै सो सुख कमाए, मरण जीवन की सोजी पाए, मरण जीवन

पासारा बिन शब्द पसमै की ढेरी खेहू खेर लाएंदा काया कंचन कोटे पारा जिस विच रविया

खबर न पाई अंत गया पछताएंदा जिन अपाए सो बिद जाने गुरमुख देवे शब्द पछाणे नानक दास कह बेनंती सच नाम चित लाएंदा मारू महला तीजा आद जगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता तुदनो सेव है से तुझ समाव है तू आपे मेल मलाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पाए।

पाई, सब खेल तमाशा तेरी वडियाई, आपे वेक करे सब साचा, आपे पन कढ़ाएंदा, बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई, सदा अलिपत रह गुर शब्दी, साचे स्यों चित लाएंदा, बाजह बाजे तुन अकारा, आप बजाए बजावन हारा, कट कट पौन वह इक रंगी, मिल पवन सब बजाएंदा, करता करे सो निश्चो होवे, गुर कै शब्दे हो मैं खोवे, गुर प्रसादी किसे दे वडियाई, नामो नाम त्याएंदा।

सेवह क्यों सुख पाइय बिन लावह दुख पाईंदा आप करे तै आप कराई गुर प्रसादी किसै बुझाई गुरु

गणत चकाए सच्चे सच समाएंदा जे सच दे ता पाए कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाएंदा जप तप संयम नाम प्यारा

गुर कै भाणै चलै दिन राती नाम चेत सुख पाएंदा आप सिरंदा सच्चा सोई आप अपाए खपाए सोई गुरमुख होवै सो सदा सलाही मिल साचे सुख पाएंदा नेक जतन करे इंद्री वस न हुई काम क्रोध जलै सब कोई।

सतगुर सेवय सहज आनंदा फिर दयाए बुट्ठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया आन दिन मारिए दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है सेवद भागी सहज पाए सच्ची लिवलागी सचो

ज्यो तिल कहानी पीड़ा एंदा पूरा भाग गुर सेवा होई नदर करे ता सेवे कोई जम काल तिस नेड़ न आवे महल सच्चा सुख पाएंदा किन सुख पाया जो तुद

सदा घट चानन अज्ञान अंधेर गवाएंदा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डुब मुए अभागे चल दिया कर दर नजर न आवे जम दर बांदा दुख पाएंदा बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई ज्ञानी ध्यानी पूछो कोई सतगुर सेवे तिस मिले वडियाई दर सच्चै सोभा पाएंदा सतगुर नो सेवे तिसे आप मलाई ममता काट सच लिवलाई सदा सच बन जह वापारी ना मुहला पाएंदा आपे करे कराए करता शब्द मरे सोई जन मुक्ता नानक नाम वसै मन अंतर नामो नाम त्याईंदा मारू महला तीजा जो तुद करना सो कर पाया पाने विच को विरला आया पाणा मन्ने सो सुख पाई पाने विच सुख पाएंदा गुरमुख तेरा पाणा पावे सहजे ही सुख सच कमावे।

पाई सच्चे सच मलाईंदा नाम वसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नावे मन तन है कुश्ती नरके वासा पाईंदा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाहे सदा सुख पाया निज करवासा पाईंदा सब

पारा निःचलवा सा पाईला अंतर कारबंग के थान सुहाया गुरमुख विरलै किन थान पाया इत साथ निभ है सलाही सच्ची हर सच्चा मान।

हर दिन हर सेवियो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बले हार है जाऊं गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊं तिन की धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचे नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी।

बिन शब्द है सब अंध अंधेरा, गुरमुख किसह बुझाईंदा। एक केत आए जन्म गवाई, मनमुख लागे दूजे पाई। एह वेला फिर हाथ न आवे, पग खिसिया पछताईंदा। गुर कै शब्द पवित्र शरीरा, किस विच वसै सच गुणी गहीरा। सचो सच वेखै सब थाई, सच सुन मन वसाईंदा। हउ मैं गणत गुर शब्द निवारी, हर जियो हिरदै रखो उरतारी।

है शरीर गुर शब्दी चेता गुणी गहीर हर दिन गुण गावे रंग राता गुण कह गुणी समाएंदा एहो शरीर सब मूल है माया दूजे पाए परम पलाया हर ना चेते सदा दुख पाए बिन हर चेते दुख पाएंदा जे सतगुर सेवे सो परवान काया हंस निर्मल दर सच्चे जान हर सेवे हर मन वसाई सो है हर गुण गाईंदा बिन भागा गुर सेविया न जाए मन मुख भूले मोए बिल लाए जिन को नदर होवै गुर केरी हर जियो आप मलाईंदा काया कोट पक्के हट नाले गुरमुख लेवै वस्त संभाले हर का नाम त्याए दिन राती उत्तम पदवी पाएंदा आपे सच्चा है सुखदाता पूरे गुर कै शब्द पछाता नानक नाम सलाहे साचा पूरे भाग को पाएंदा मारू महला तीजा निरंकार आकार उपाया माया मोह हुक्म बनाया आपे खेल करे सब करता सुन साचा मन वसाएंदा माया माई त्रै गुण परसूत जमाया चारे वेद ब्रह्मे नू फरमाया वरे महावार ति कर इस जग मह सोजी पाएंदा गुर सेवा ते करनी सार राम नाम राखो उरतार गुरबाणी वरती जागे अंतर इस बाणी ते हर नाम पाएंदा वेद पढ़े अनदिन वाद समाले नाम ना चेते बद्दा जम काले दूजे पाए सदा दुख पाए त्रै गुण परम पलाएंदा गुरमुख एकस स्यों लिवलाए त्रिविध मनसा मन है।

पाई, हितरंग साचे माहे समाए, पूरे भाग को एहो रंग पाए, गुरमति रंग चढ़ाईंदा, मनमुख बहुत करे अपमान।

सब मैं रहे आसमाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मलाए आपे, शब्दे सहज समाइंदा, आपे सच्चा शब्द मलाई, शब्दे विच्चो परम चुकाई।

कह तिसनो गुर शब्दी मेलाया, तुदनो सेव है जो तुद भाव है, गुर कै शब्दे सच समाव है, आन दिन गुण रवह दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मर है से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्दे आप गुआई, अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला।

सारा मनमुख अग्या नींद अंधारा धंदे धावत जन्म गवाया बिन नाव है दुख पाया कर्म होवै ता सतगुर पाए हम मैं महल शब्द जलाई मन निर्मल ज्ञान रतन चानन अज्ञान अंधेर गवाया तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई।

पाया, जिसनो बजाए सोई बूझे, हर गुण गावे अंदर सूझे, हम मैं मेरा ठाक रहाई, सहजे ही सच पाया, बिन कर्मा होर फिरे कनेरी, मर मर जम्मे चुके ना फेरी, बिख का राता बिख कमावे, सुख ना कबू पाया, बहुते भेख करे भेख तारी, बिन शब्द हूं मैं किने ना मारी, जीवत मरे ता मुक्त पाई, सच्चै ना इस माया, अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई, किस दी बूझे जे गुर शब्द कमाई।

मन पाई, मन तन सच्चे भगती राता, सच्चे सिहो चित लाया। हम मैं विच सद जलै शरीरा, कर्म होवै भेटे गुरपूरा, अंतर अज्ञान शब्द बुझाए, सतगुर ते सुख पाया। मन मुख अंधा अंध कमाई, बहु संकट जोनी परमाई, जम का जेवड़ा कदे ना काटे, अंते बहु दुख पाया। आवन जाना शब्द निवारे, सच नाम रखे उरतारी।

मुक्त होवे। पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारू वारा। सतगुर भेटे सच दृढ़ाई, सच नाम मन पाया।

सच्चे माही समाया घरै अंदर को घर पाई गुर कै शब्दे सहज सुपाई उथै सोग वियोग ना व्यापै सहजे सहज समाया दूजे पाए दुष्टा का वासा पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा कुसंगत बह सदा दुख पावे दुखो दुख कमाया सतगुर बाजो संगत ना हुई बिन शब्दे पार ना पाए कोई सहजे गुण रवह दिन राती ज्योति ज्योत मलाया काया बिरख पंखी विच वासा अमृत चुगह गुर शब्द निवासा उड़ह ना मूले ना आवह ना जाई निज कर वासा।

नाम रतन धन पाया सतगुर की सेवा पाई बिन सतगुर जो दूजे लागे आवह जाहे भ्रम मरह अभागी नानक तिनकी फिर गत हुए जे

आई अमृत रस सतगुरु चवाया दसवें द्वार प्रगट होए आया तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी सहज सहज समाई है जिनको करतै तुर लिख पाई अन दिन गुर गुर करत विहाई बिन सतगुर को सीजै नाही गुर चरनी चित लाई है जिस भावै किसी

ज्ञान रतन मन परगट भया नाम पदार्थ सहजे लया एह वडे आई गुरते पाई सतगुर कहो सद बल जाई हे प्रगटया सूर निस मिटया अंधियारा अज्ञान मिटया गुर रतन अपारा सतगुर ज्ञान रतन अत भारी

सोवे गुरमुख नाम समाए समावे नानक नाम त्याई भगता मुख अमृत है बाणी गुरमुख हर नाम आख बखाणी हर हर करत सदा मन बिगसै हर चरणी मन लाई हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किश नाही सतगुर ते समझ पड़ी मन माही हो दयाल कृपा कर हर जीव सतगुर की सेवा लाई है जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता सर्वे राव रहया सुख दाता आत्म चीन परम पद पाया सेवा सुरत समाई है जिनको आद मिली वड्याई सतगुर मन वसया लिवलाई आप मिलिया जग जीवन दाता नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा हर अगम अगोचर सदा अबनासी सर्वे रव रहया तटवासी तिस बिन अवर न कोई दाता हर तिस ऐसरे वह प्राणी है जा को राख हर राखन हारा ताको कोई ना साख।

भूर समाही सूके ते फुल हरिया कीतन हर त्यावो हो चोज वडाणी हे जो जिया की वेदन जाने तिस साहिब कै हो कुर्बान किस आगे जन कर बेनंती जो सर्व सुखा का दानी हे जो जिया की सार न जाने किस सिंह किस न कहिए अजाने मूर्ख सिंह नह लूज पराणी हर जपिए पद निर्वाणी हे ना कर चिंत चिंता है करते हर देवै जल थल जनता सब तै अचिंत दान दे प्रभ मेरा विच पाथर कीट पखाणी हे ना कर आस मीत सुत पाई ना कर आस किसे सा व्यवहार की पराई बेहर नावे को बेली नाही हर जपिए सारंग पाणी हे अन दिन नाम जप हो बनवारी सब आसा मनसा पूरै थारी जन नानक नाम जप हो भव खंडन सुख सहजे रैन विहाणी हे जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया।

पर साध परम पद पाया, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, बिन सेवा पछोताणीए। तू सब मह वरत है हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दास दसाणी हे। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय तरी जिन धरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अगन उपाय ईंधन मैं बांदी, सो प्रभ राखै पाई हे। जी जंत को रिजक संबाहि, करण कारण समरथ अपाहि, थिन मह थाप यथापन हारा, सोई तेरा सहाई हे। मात गर्भ में जिन प्रित पालिया, सास ग्रास होए संग संभालिया, सदा सदा जपिया सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्याई हे। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब नवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्ब सुधारण, किस कीमत कही ना जाई हे। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वस्या हर भगवंता, मात पिता सुत बंद पाई, जिन एह सृष्ट उपाई हे। प्रभ आए सरना पौ नहीं करना, साध संगत निश्चो है तरना, मन बच कर्म अरादी करता, तिस नाही कदे सजाई हे। गुण निदान मन तन मह रविया, जन्म मरण की जोन ना पविया, दुख बनास किया सुख डेरा, ज्ञान तृप्त रहे आगाई हे।

आगण तमताई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धनताहा। ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आव हो वस हो घर अपने। लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उधार नहारा, ऊच अथाह अगम अपारा। जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जन तिसह त्याई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले। अनहद रुण चुन कार सहज धुन, साकी कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी। अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में है सोभ सुहाई है। जय जयकार जपो जगदीसै, बल बल जाई प्रभ अपने ईसै। किस बिन दूजा अवर न दिसै, एका जगत सबाई है। सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता। सिमर सिमर जीवह जन तेरे, एक अंकार समाई है। भगत जना का प्रीतम प्यारा, सबे उदाहरण खसम हमारा। सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संगी जोगी नार नपटाणी, उर्ज रही रंग रसमाणी। किरत संजोगी पय इकतरा, करते भोग बलासा है। जो पिर करै सो तन तत मानै, पिर तनह शिंगार रखै संगानै। मिल एकत्र वसह दिन राती, प्रयो दे तनह दलासा ही। धन मांगै प्रयो बहु बिद तावै, जो पावै सो आनंद खावै। एक वस्त को पहुँच न साकै, धन रहती पू

ऐसा वणिज करहो ग्रह पीतर जित उतरे भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगे तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् कारच नरचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई तन कह तू वस मैं नाले प्रिय सुखवासी बाल गोपाले तुझे बिना हौ कित ही ना लिख है वचन देह छोड़ ना जासाई फिर कहे आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राख है पिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु ना समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जाने कर हासा ही आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पूछी ना मता पकाया ऊठ सदायो शूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवे मनमुख जावे मनमुख फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया तिस कौन मिटावे जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हों बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विचरना कत ही जासा ही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हों रेण तेरे जो दासा ही मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिर नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा ही हरकवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर वेख बिगसै आपे ही आप पूजा ही आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खिलावे दिन राती आपे सुन सुन पीजा ही साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच तारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाही सच तप

सहज घर तेरे हमयो तेरी दृष्टि जाहे तेरी दात तुझे ते होए दे दान सबसे जंत लोए टूट न आवे पूर भंडारे तृप्त रहे आगी जाहे जाच है सिद्ध साधक बनवासी जाच है जति सती सुखवासी एक दातार सगल है जाचिक देह दान सृष्टि जाहि करह भगत अर रंग अपारा खिन मैं थापयो थापन हारा भारू तोल बेअंत स्वामी हुक्म मन भगति जाहि जिस देह दर्श सोई तुद जाने ओह गुर कै शब्द सदा रंग माणे।

जिस चीते आवह तिस पहु केहा, अवर कहा किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुर पूरे ले टूटा गंडा। सुरत शब्द हृदय अंतर जागी, हमयो चोल चोल पी जाहे। मरे नाही सद सद ही जीवे, अमर भया बनासी थीवे। ना को आवे ना को जावे, गुर दूर।

सो आया नित नित रंगा, कटे नाही तोली जाहि। बारह कंचन शुद्ध कराया, नदर सराफ बन्नी सचड़ाया, परख खजाना।

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन भीजा है। मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार।

सिमरत खट कर्मा गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फस है। गुर सिमरत मन निर्मल होवे, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दानाई। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए। कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगाह देवे मानाई। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन ना भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञान नाही। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्याना। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले नह जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरे, नाम अमृत पी पाना। गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी तै आप बखाणी। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया निह चल थाना। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किछ करे सो आपन पाणे। साधु तूर जाचह जन तेरे, नानक सद कुरबाना। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वरतै आप नरारा। वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृत उपाएंदा। लख चौरासी जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड़ियाई। इस पौड़ी ते

जम्मै सबलाहा मूल गवाएं दा। कल युग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना आप तरह सगले कुल तारी हर दरगाह पत स्यों जाएंदा खंड पताल दीप सब लोआ सब काले वासे आप प्रभ किया निश्चल एक आप अबनासी सो निश्चल जो तिसह त्याएंदा हर का सेवक सो हर जेहा भेद न जानहु मानस देहा ज्यों जल तरंग उठह बहु भांति फिर सलह सलल समाएंदा एक जाचक मंगै दान द्वारै जा प्रभु पावै ता कृपा तारै देहो दर्स जित मन तृप्तासै हर कीर्तन मन ठहराएंदा रूड़ो ठाकुर कितै वस न आवै हर सो किश करे जे हर क्या संता पावै कीता लोड़न सोई कराएन दर फेर न कोई पाएंदा जितै औ कट आए बनत है प्राणी कितै हर त्याई सारिंग पानी जितै पुत्र कलत्र ना बेली कोई जितै हर आ पुछडाएंदा वड्डा साहिब अगम यथाहा क्यों मिली है प्रभ वी परवाह काट सिलक जिस मार्ग पाई सो विच संगत वासा पाएंदा हुक्म बूझै सो सेवक कहिए बुरा भला दुए समसर सही है हम मैं जाए ता एको बूझै सो गुरमुख सहज समाएंदा हर के भगत सदा सुखवासी बाल सुपाए अतीत उदासी अनक रंग करह बहु भांति ज्यो पिता पूत लडाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ता मिली है जा लय मलाई गुरमुख प्रगट भया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखाएंदा तू आपे करता कारण करना सृष्ट उपाय धरी सब तरना जन नानक शरण पया हर द्वारे हर पावे लाज।

सब एको है पालना। डर चूके बिन से अंधियारे प्रगट पए प्रभ पुरख नरारे। आप छोड़ पए सरनाई जिसका साथ इस कालना। ऐसा को वड़ भागी आया आठ पहर जिन खसमत आया। तिस जन कै संग तरे सब कोई सो परवार सधारना। एह बख्शीस खसम के पावा आठ पैर कर जोड़ त्यावा। नाम जपी नाम सहज समावा नाम नानक मिले उचारना। मारू महला पंजवा सूरत देख ना भूल गवारा मिथन महाराज।

मंत्र दरड़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसह बहु देवा सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुर पूरे ते पायना। होर द्वारा कोई ना सूजे त्रे पवन तावे ता किशु ना बूजे। सतगुर साह भंडार नाम जिस एह रतन तिसै ते पायना। जाकी तूर करे पुनीता सुर नर देव ना पावे मीता। सत पुरख सत गुर परमेश्वर जिस भेटत पार परायना। पार जात लोड़ह मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे। तृप्त संतोख सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायना। गुर कै शब्द मरह पंच धातु भै पार ब्रह्म होवह निर्मला तू। पारस जब भेटै गुरपूरा ता पारस परस दिखायना। कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे। एक अंकार सतगुर ते पाई है हौ बल बल गुर दरसायना। गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई। जिसनो लाए लए सो सेवक जिस वड भाग मथायना। गुर की महिमा वेद न जान है तो शमात सुन सुन वाखाण है। पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना। जाकी सोए सुनी मन जीवे हृदय वसै ता ठंडा थीवे। गुरमुखो अलाए ता सोभा पाए किस जम कै पंथ ना पायना। संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण धन आगे धरिया। सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायना। निर्गुण को संग लेहो रलाए कर कृपा मोहे टहले लाए। पक्का फिरो पीसो संत आगे चरण धोए सुख पायना। बहुत द्वारी भ्रम भ्रम आया तुमरी कृपा ते तुम सरनाया। सदा सदा संत है संग राखो एहो नाम दान दिवायना। भये कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे। सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना। मारू सोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमरह धरती अर आकाशा सिमरह चंद सूरज गुणतासा। पौन पानी बैसंतर सिमरह सिमरह सगले अपार जना। सिमरह खंड दीप सब लोवा सिमरह पाताल पुरिया सच सोवा। सिमरह खानी सिमरह बाणी सिमरह सगले हर जना। सिमरह ब्रह्मे विष्णु महेशा सिमरह देवते कोड़ ते तीसा। सिमरह जाख दैत सब सिमरह अगंत न जाई जस गना। सिमरह पास पंखी सब कूता सिमरह बन पर्वत अवतूता। लता बली साख सब सिमरह रव रहे आस्वामी सब मना। सिमरह थूल सूखम सब जनता सिमरह सिद्ध साधक हर मनता। गुप्त प्रगट सिमरह प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना। सिमरह नर नारी आश्रमा सिमरह जात जोत सब वरना। सिमरह गुणी चतुर सब बेते सिमरह रैणी अर दिना। सिमरह घड़ी मूरत पल निमखा सिमरह काल अकाल सोच सोचा। सिमरह सौन शास्त्र संजोगा अलख न लखिए एक खिना। कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटां के अंतर जामी। कर कृपा जिस भगती लाव हो जन्म पदार्थ सो जिना। जान कै मन बूठा प्रभ अपना पूरे कर्म गुर का जप जपना। सर्व निरंतर सो प्रभ जाता बहुड़ना जोनी भरमुरना। गुर का शब्द वसै मन जाके
दुख दर्द प्रमता का भाग है, सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना, सोतनवंता जिन प्रभ त्याया, सोपतवंता जिन साध संग पाया, पार ब्रह्म जाकै मन बूठा, सो पूर कर्मा नाशिना, जल फल महियल स्वामी सोई, अवर्मा कही है दूजा कोई, गुर ज्ञान अंजन काटे ओ भ्रम सगला, अवर्णा दिसै एक बिना, ऊचे ते ऊचा दरबारा, कहन न जाई अंत न पारा, गहर गंभीर अथाह स्वामी, अतुल न जाई क्या मिना, तू करता तेरा सब किया, तुझ बिन अवरना कोई बिया, आद मद अंत प्रभ तू है, सगल पसारा तुम तना, जम दूत तिस निकट न आवे, साध संग हर कीर्तन गावे, सगल मनोरथ ताके पूरन, जो सर्वणी प्रभ का जस सुना, तू सबना का सब को तेरा, साचे साहिब गहर गंभीरा, कहो नानक से ही जने उत्तम, जो भाव है स्वामी तुम मना। मारू महला पंजवा, प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेहरवाना, हर दाता जी जंत के खारी, जन बांचै जा चंगना, मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो, दीर्घ रोग मिटहै हर औखद, हर निर्मल रापै मंगना, सर्वणी सुनो बिमल जस स्वामी, एका ओट तजो बिख कामी, निव निव पाए लगो दास तेरे, कर सो कृत नाही संगना, रसना गुण गावै हर तेरे, मिट है कमाते अव गुण मेरे, सिमर सिमर स्वामी मन जीवै, पांच दूत तज तंगना, चरण कमल जप बोहित चरियै, संत संग मिल सागर तरियै, अर्चा बंदन हर समत निवासी, बहुड़ जोन ना नंगना, दास दासन को कर ले हो गोपाला, कृपा निदान दीन दयाला, सखा सहाय पूर्ण परमेश्वर, मिल कदे न होवी भंगना, मन तन अर्प धरी हर आगै, जन्म जन्म का सोया जागै, जिसका सा सोई प्रतपालक, हत त्यागी हौ मैं हंतना, जल फल पूर्ण अंतर जामी, कट कट रव्या अशल स्वामी, परम पीत खोई गुरपूरै, एक रव्या सरबंगना, जत कत पेखो प्रभ सुख सागर, हर टोट भंडार नाही रतनागर, अगह अगाह किस मित नहीं पाईऐ, सो बूझै जिस किरपंगना, छाती शीतल मन तन ठंडा, जन्म मरण की मिटवी दंजा, कर गह काड लिए प्रभ अपने, हमें उतार दृश टंगना, एको एक रव्या सब ठाई, तिस बिन दूजा कोई नाई, आद माद अंत प्रभ रव्या, त्रिशन बुझी परमंगना, गुर परमेश्वर गुर गोबिंद, गुर करता गुर सद बख्शंद, गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना, जो पेखा सो सब किस स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी, जो कीनो सो तुम्हें करायो, शरण सहाई संत है तना, जाचक जाचै तुम्हें अरादै, पतत पावन पूर्ण प्रभ सादै, एको दान सर्व सुख गुण निद, आन मंगन निह किंचना, काया पात्र प्रभ करने हारा, लगी लाग संत संगारा, निर्मल सोए बणी हर बाणी, मन नाम मजीठै रंगना, सोलह कला संपूर्ण फलिया, अनत कला हुए ठाकुर चढ़िया, आनंद बनोद हर नाम सुख नानक, अमृत रस हर पुंचना।

तीहां हर जस तेरा पणी है, आपे लेख अलेख है आपे, तुम सियो नाही किस झाड़ा, तू पिता सब बारक थारे, ज्यों खलावे है त्यों खेलन हारे, उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चले नाही कोवे पाड़ा, एक बसाए रखे ग्रह अंतर, एक पठाए देश दसंतर, एक ही को कास एक ही को राजा, इन मैं कही है क्या कूड़ा, कमन सो मुक्ति कमन सो नरका, कमन संसारी कमन सो भगता, कमन सो दाना कमन सो होछा, कमन सो सुरता कमन जड़ा, हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका, हुक्म संसारी हुक्मे भगता, हुक्मे होछा हुक्मे दाना, दूजा नाही अवर तड़ा, सागर कीना आत तुम पारा, एक खड़ेर सातल कर मनमुख गावारा, एक ना पार लंगा वह आपे, सतगुर जिनका सच बेड़ा, कौतक काल एहो हुक्म पठाया, जी जंत उपाय समाया, विखै विगसै सब रंग माणी, रचन कीना एक अखाड़ा, वड्डा साहिब वड्डी नाई, वड्डा तार वड्डी जिस जाई, अगमे अगोचर बे अंत अतोला, है नाही किस आहाड़ा, कीमत कोई ना जाने दूजा, आपे आप निरंजन पूजा, आप सो ज्ञानी आप त्यानी, आप सतवंता अत गाड़ा, केतड़िया दिन गुप्त कहाया, केतड़िया दिन सुन समाया, केतड़िया दिन धुंधू कारा, आपे करता प्रगटड़ा, आपे शक्ति सबल कहाया, आपे सूरा अमर चलाया, आपे शिव वरताई नियंतर, आपे सीतल ठार गड़ा, जिसह नवाजे गुरमुख साजे, नाम वसै तिस अनहद वाजे, तिस ही सुख तिस ही ठकराई, तिसह न आवै जम नेड़ा, कीमत कागद कही ना जाई, कहो नानक बे अंत गुसाई, आद मद अंत प्रभ सोई, हाथ तिसह कह निबेड़ा, तिसह शरीक नाही रे कोई, किस ही बुतै जवाब ना होई, नानक का प्रभ आपे आपे, कर कर वेखै चोज खड़ा, मारू महला पंजवां, अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी, मद सूदर दामोदर स्वामी, रिखि केस गोवर्धन तारी, मुरली मनोहर हर रंगा, मोहन माधव कृष्ण मरारे, जगदीश्वर हर जियो असुर संघारे, जग जीवन अबनासी ठाकुर, घट घट वासी है संगा, धरनी तर ईस नरसिंह नारायण, दाड़ा अगरे प्रथम तरायण, बावन रूप किया तुद करते, सब ही सेती है चंगा, श्री राम चंद जिस रूप नारिखिया, बनवाली चक्र पान दर्श अनूपिया, सहस नेतर मूर्त है सहसा, एक दाता सब है मंगा, भगत वचल अनाथ है नाथे, गोपी नाथ सगल है साथे, वासुदेव नरंजन दाते, वर्ण ना साको गुण अंगा, मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण, द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण, कमला कंत करह कंतूहल, आनंद बनोदी निसंगा, मोग दर्शन आजूनी संभव, अकाल मूरत जिस कदे नाही खो, अवनासी अवगत अगोचर, सब किस तुझ ही है लगा, श्री रंग बैकुंठ के वासी, माश काश कूरम आग्या अवतरासी, केशव चलत करह निराले, कीता लोड़ है सो होएगा, निराहारी निरवैर समाया, तार खेल चतर पुज कहाया, सावल सुंदर रूप बनावे, देन सुनत सब मोहेगा, बनमाला बेभूखन कमल नैन, सुंदर कुंडल मुकट बैन, शंख चक्र गदा है तारी, महासारथी सत संगा,
पीत पितंबर त्रिपवन तनी जगन्नाथ गोपाल मुख पणी सारंग धर भगवान बीठला मैं गणत न आवे सरबंगा निह कंटक निह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पै आल समीपत अस्तर थान जिस है अपगा पतत पावन दुख पै पंजन हंकार निवारण है पव खंडन भगती तोखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा निरंकार अशल अडोलो ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो सो मिले जिसे आप मलाही आपो हो कोहे ना पावेगा आपे गोपी आपे काना आपे गऊ चरावे बाना आप उपावे है आप खपावे है तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा एक जी ही गुण कमन बखाने सैस फनी सेख अंत न जाने नवतन नाम जपे दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा ऊट गही जगत पित सरनाया पै भयानक जमदूत दुतर है माया हो कृपाल इच्छा कर रख हो साध संतन कह संग संग।

परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्बला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्स मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भाव है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा बार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई पाक खरा सरासरयत लेख मावहु तरीकत तर्क खोज टलावहु मारफत मन मारहु अबदाला मिलहु हकीकत जित फिर न मरा करान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखहु बदराही पंच मर्द सिदकले बंदहु खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा पूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लह आला हुजरा सच कमावे सोई काजी जो दिल सोदे सोई हाजी सो मुल्ला मलऊन निवारे सो दरवेश जिस सिफत तरा सबे वक्त सबे कर वेला खालक याद दिले मह मौला तस्बी याद करहु दस मर्दन सुन्नत सील बंधान बरा दिल मह जानहु सब फिलहाला खिलखाना बिरादर हमू जंजाला मीर मलक उमरे फानाया एक मुकाम खुदाए दरा अवल सिफत दूजी साबूरी तीजै हलेमी चौथै खैरी पंजवै पंजे इकत मकामै एह पंज वक्त तेरे अपर परा सगली जान करो मौदीफा बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा खुदाए एक बुज देव हो बांगा बुरगु बर खुरदार खरा हक हलाल बखोरो खाना गिल दरियाओ तो वह मैलाना पीर पछाणे पिस्ती सोई अजराइल ना दोज ठरा काया किरदार औरत यकीना रंग तमाशे मान हकीना नपाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते धोवे दुनिया रंग ना आवे नेड़े ज्यो कुसम पाट घ्यो पाक हरा जा को मेहर मेहर मेहरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सेख मसाए कहाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर करन करीमा सिफत मोहब्बत अथाह रहीमा हक हुकम सच खुदाया बुझ नानक बंद खलास तरा मारू महला पंजवा पार ब्रह्म सब ऊच बराजी आपे थापे थापे साजी प्रभ की शरण गहत सुख पाई है किस भौ न व्यापै बालका गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओहो सगल कटां का मालका चरण कमल सरण आई आया साध संग है हर जस गाया जन्म मरण सब दुख नवारी जप हर हर भव नहीं काल का समरथ अकथ अगोचर देवा जी जंत सब तां की सेवा अंडज जेरज सेतज उत्पुज बहु परकारी पालका किसह प्राप्त हो।

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई, ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, गालत ना कोई काल का, उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला, बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का, संता की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली, सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का, जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी, सिमर

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिनकै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक

सतगुर प्रसाद चरण कमल हृदय नित तहारी गुर पूरा खिन खिन नमस्कारी तन मन अर्प धरी सब आगे जग मह नाम सुहावना सो ठाकर क्यों मनहु वसारी जियो पिंड दे साज सवारी सास ग्रास संभाले करता कीता अपना पावना जाते बिरथा को नाही आठ पैर हर रख मन माही साध संग भाजे चुत स्वामी दरगाह शोभा पावना चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नाम निधान सहज सुख नौ निद

पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुन नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जूनी पावना, जिसनो बिसर पुरख बधाता, जलता फिर रह नित ताता, किरत कण को रखे ना कोई, नरक कोर मह पावना, जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया।

कह नेरे, हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाई ही तिसे जनावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, तिस ही पुरख ना व्यापे माया, नानक दा सदा सरनाई, दूसर लवे ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरले ही कीने, ता की कीमत कहन ना जाई, जात कत ओही समावना, सोई भगत सोई वडदाता, सोई पूर्ण पुरख बधाता, बाल सहाय सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बध कट है ना कटाए, सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मनावना, अंध कूप ते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद ते

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए भाई शब्दे करे प्यार सत संगत सियो मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विचों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डे वडार नानक मिलिया सो

ना चोही अड़े सच चो नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्शियोन हर नाम समाने आपे भगती लायोन गुर शब्द निशाने सनमुख सदा सोहने सच्चे दर जाने ऐथे उथे मुक्त है जिन राम पछाणे तन तन से जन जिन हर सेविया तिन्हौ कुरबाणी सलोक महला पहला महल कुचजी मड़बड़ी काली मनहुक सुध जे गुण होवन ता पिर रवै नानक अवगुण मुंद महला पहला साच सील सच संजमी।

सहज बनस्पत फुल फल भंवर वसै भय खंड नानक तरवर एक है एको फुल पे रंग पौड़ी जो जन लूजह मने सिउ से सूरे परदाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पुछाना ज्ञानिया का एहो महत है मन माहे समाना हर जियो का महल पाया सच लाए ध्याना जिन गुर प्रसादी मन जीतया जगत न जिताना सलोक महला तीजा जोगी होवा जग पवा कर कर भीख्या लेओ दरगाह लेखा मंगी है किस किस उत्तर देओ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल भेखी हाथ ना लदिया सब बद्दी जमकाल नानक गल्लां झूठियां सच्चा नाम समाल महला तीजा जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवे हो ना कोई ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिस जे वड़े अवर ना कोई किस सरनाई छूटी है लेखा मंगे ना कोई सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे हिरदय जिस दै सच है तन मन भी सच्चा होए नानक सच्चा हुक्म मन्ने है सच्ची वड़ियाई दे सच्चे माहे समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी सूरे एह ना आखी है अहंकार मर है दुख पाव है अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे है हत क्रोध स्यों लूज दे

आवे सेव गति गए मर जन्म है फिर आवह सलोक महला तीजा कागो होए न उजला लोहे नाव ना पार पिरम पदार्थ मन लै धन सवार नहार हुक्म पछाण उजला सिर काष्ट लोहा पार कृष्णा छोड़ भै वसै नानक करनी सार महला तीजा मारू मारन जो गए मार ना सकह गवार नानक जे उह मारी है गुर शब्दी विचार इहो मन मारिया ना मरे जे लोचै सब कोय नानक मन ही कहो मन मारसी जे सतगुर भेटै सोए पौड़ी दोए तरफा उपायन विच सख्त शिव वासा शक्ति किने ना पायो फिर जन्म बनासा गुर सेवै शांत पाई है जप सास ग्रासा सिमरत सास्त सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। सलोक महला तीजा हुआ पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुख चार नव खन मदे पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर भुल जाए चौकै पिटै ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए महला तीजा आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे देवड़िया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजै अफर्यो जग मह वर्तदा पापी स्यों लूजै गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजै सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजै मन विचार हर जप करे हर दरगाह सीजै सलोक महला पहला हुक्म रजाई साखती दरगाह सच कबूल साहिब लेखा मंगसी दुनिया देख ना भूल दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास इश्क महबत नानका लेखा करते पास महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाई हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुपाए पौड़ी मनमुख काल वे आपदा मोहे माया लागे खिन मह मार पछाड़ सी पाए दूजे ठागे फिर वेला हाथ न आवई जम का डंड लागे तिन जम डंड न लगई जो हर लिव जागे सब तेरी तुद छामणी सब तुद लागे सलोक महला पहला सर्बे जोए अगछमी दुख कनेरो आथ कालर लादस सर लांगनो लाभ ना पूंजी सात महला पहला पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार नानक वखर निर्मलो धन साहा वापार महला पहला पूरब प्रीत प्राण ले मोटो ठाकुर मान माथे उभे जम मारसी नानक मेलन नाम पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नव निद नाम एक आपे परम पलायन तिन निफल काम इकनी गुरमुख बुझिया हरे आत्म राम इकनी सुनकै मन्या हरे उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम सलोक महला पहला पोल तन पै मन वसै एकै पद रहीड अत डाहपन दुख कणु तीने थाम परीड महला पहला मांडल भेद से बाजणु कणु तड़िया जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर ना कोई महला पहला सागर गुणी अथाह किन हथाला देखिए वड्डा वे परवाह सतगुर मिले ता पार पवा
ਮਜ ਭਰ ਦੁਖ ਬਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਸੈ ਨ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ ਪੌੜੀ ਜਿਨੀ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੈ ਜੋ ਇੱਛਣ ਸੋ ਪਾਏ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਨਕਾ ਮਿਤ ਹੈ ਜਮ ਮਗ ਨਾ ਪਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣੀਐ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਈ ਮਿਟਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੂਆ ਕੌਣ ਮਾਰਸੀ ਕੌਣ ਆਵੈ ਕੌਣ ਜਾਏ ਕੌਣ ਰਹਿਸੀ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਮੂਆ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਪੌਣ ਵਹਿ ਦਰਿਆਓ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਥਕੀ ਨਾਨਕਾ ਜਾਂ ਮਨ ਰੱਤਾ ਨਾਏ।

अंदर मुश्क चुकोलिया कीमत कही ना जाय। पौड़ी इस जुग में नाम निदान है नामो नाल चल है एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चे पल्ल हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल से साहा सच्चे बन जा रहा जिन हर धन पल्ल हर कृपा ते हर पाई है जा आप हर कल। सलोक महला तीजा मनमुख व्यापार है सार ना जाननी बिख विहाज है बिख संग्रह बिख स्यों तरह प्यार बाहर हो पंडित सदाई दे मनहो मूर्ख गावार हर स्यों चेतना लाइनी वादी धर्म प्यार वादा किया करन कहानियां कूड़ बोल करह आहार जग मह राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरह गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुख है दा आपे दे सजाए। नानक एवै जानिए सब किश तिसै रजाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामै तृप्त नाही दूजे परम पलाया हौ मैं दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाईए जे बहुत लुचाही आवै जाए जम्मै मरै गुर शब्द छुटाही आप करै किसे आखिए दूजा को नाही। सलोक महला तीजा इस जग मह संती धन खटिया जिन्ना सतगुर मिलया प्रभयाई सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाय। इत धन पाया भुख लथी सुख वस्या मन आई जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आय। मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाय अन दिन फिरदा सदा रह भूख ना कदे जाय शांत ना कदे आवई नह सुख वसै मन आय। सदा चिंत चित वधा रह सहसा कदे ना जाय नानक बिन सतगुर मत पवी सतगुर नो मिलै ता शब्द कमाय। सदा सदा सुख मह रह सच्चे माहे समाय। महला तीजा जिन उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरहु पाई रहो तिस बिन अवर ना कोय। खाना शब्द चंगियाईया जित खादै सदा तृप्त होए पैनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओह ऊजला मैला कदे ना होए। सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याई है हौ मैं अज्ञान गुआपै। अंदर अमृत भरपूर है चाखियां साध जापै जिन चाखिया से निरपो भए से हर रस त्रापै हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। सलोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना व्या जै कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाइन जिसनो नदर करे। महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने है सुख पाईए गुर शब्दी विचार। पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याय गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराव खरे परख खजाने पाइन खोटिया नाही थाव सब सचो सच वर्तदा सदा सच न्याय। अमृत का रस आया
मन वसया नाहु सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू हो है हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत् न पाईए अलख वसै सब माहे सतगुर मिलै ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहु गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाईए उत्तम मत तराहे नानक सोहं हंसा जप जापहु त्रे भवन तिसै समाहे महला तीजा मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विरले जानिए है कल युग विच संसार आपै नो आप मिल रहिया हौ मैं दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजन बिकम संसार पौड़ी मन मुखे अंदर ना पालनी मुठे अहमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत सास्त ना सोधनी मन मुख वे गुत्ते बिन गुर किनै ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास किसे अग्गे नानका खले की कै अरदास महला पहला जिन किया तिन देखिया आपे जाने सोई किसनो कहिए नानका जा घर वरतै सब कोए पौड़ी सबे थोक वसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापां दहै हर आवन जाना चुकै जन्म ना जाहे मर सच नाम आधार सोग ना मोहे जर नानक नाम निदान मन मह सांझ धर सलोक महला पंजवां माया मनो ना विसरै मांगै दम्मा दम सो प्रभ चेतना आवै नानक नहीं करम महला पंजवां माया साथ ना चलै क्या लपटावह अंध गुर के चरण त्याए तू टूटह माया बंद पौड़ी भाणे हुक्म मनायुन भाणे सुख पाया भाणे सतगुर मेलियुन भाणे सच त्याया भाणे जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूर्व लिखिया इन सच कमाया नानक किस शरणागती जिन जगते उपाया सलोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पै की नाही बिंद नानक मुया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूं सुख सार सो ब्राह्मण भला आखिए जे बूझे ब्रह्म विचार हर सलाहे हर पढ़े गुर कै शब्द विचार आया ओ परवान है जे कुल का करे उधार अग्गे जात ना पुछिए करनी शब्द है सार होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार अंदर सुख ना होवे मन मुख जन्म खुवार नानक नाम रते से उबरे गुर कै हित अपार पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म ना बूझै खसम का सोई नर कच्चा जित पावै तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जच्चा ज्यो नानक आप नचाएंदा ते वही को नचा शुद्ध मारू वार महला पंजवां दखणे महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू चौ सज्जन मैंडिया देई से उतार नैण महिंजे तरस दे कद पसी दीदार महला पंजवां
नीहो मिहिंजा तौ नाल ब्या नेह कुड़ावे देख कप्पड़ भोग डरावणे जिचर प्री ना देख महला पंजवा उठी चालू कंतड़े हो पसी तौ दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हव रस चार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब तारिया गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया हर आग्या हुए बेद पाप पुन विचारिया ब्रह्मा बिछन महेश त्रै गुण विस्थारिया नावखंड पृथ्वी साज हर रंग सुवारिया वेकी जंत उपाई अंतर कल तारिया हेरा अंत न जाने कोई सच सिरजन हारिया तू जाने है सब बेदयाप गुरमुख निस्तारिया दखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा एक पूरी ना वे छोड़ जियो मिहिंजा तौ मोहिया कद पसी जानी तोहे महला पंजवा दुर्जन तू जल पहाड़ी विछोड़े मर जाहे कंता तू सौ सिजड़ी मैंडा हबो दुख अलाहे महला पंजवा दुर्जन दूजा पाओ है विछोड़ा हूं मैं रोग सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन तुद सिरजिया सब संसार तू ना एक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल रौन तुदे अपन कोई ना सकै तू अबनासी जग उधरन तुद थापे चारे जुग तू करता सगल धरन तुदे आवन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रिण जिस होवे है आप दयाल तिस लावे है सतगुर चरण तू होरत अपाए ना लभही अवनासी सृष्ट करन दखणे महला पंजवा जे तू बतह अंगणे हब तरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंडी वात ना पुछे कोई महला पंजवा हबे टोल सहावणे सहो बैठा अंगण मल पही ना वंजै बिरथड़ा जो घर आवै चल महला पंजवा सेज वछाई कंतकू किया हब शिंगार इत्ती मंज ना समावई जे गल पहरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही तू हुक्मी साजह सृष्ट साज समावही तेरा रूप ना जाई लखिया क्यों तुझह त्यावही तू सब मह वरत है आप कुदरत देखावही तेरी भगत परे भंडार तोट ना आवही एहे रतन जवेहर लाल कीम ना पावही जिस होवे है आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही तिस कदे ना आवे तोट जो हर गुण गावही दखणे महला पंजवा जामु पसी हठ मैं प्री महिंजै नाल हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल महला पंजवा नानक बैठा पखे वाऊ लम्मे सेवै दर खड़ा प्रिये तू जान महिंजा साऊ जो ई साई मुह खड़ा महला पंजवा क्या गलायो भूष पर।

सुदमार निवाड़ा, गुर भौ जल पार लंघाया, जिता पावाड़ा, गुरमती सब रस भोगदा, वड्डा आखाड़ा, सब इंद्रियां वस कर दित्तियो, सतवंता साड़ा, जित लायन तितै लग दिया, नह खिंचो ताड़ा, जो इच्छी सो फल पाएंदा, गुरे अंदर वाड़ा, गुर नानक तुठा पाए रहो, हर वसदा नेड़ा, दखणे महला पंजवां, जा मूं आवह चित तू, तां हब्बे सुख लहाओ, नानक मन ही मन रंगावला, पिरी तिहिं जा नाओ महला पंजवां, कप्पड़ भोग वकार ए हब्बे ही शार, खा कुलणेंदा तन के जो रत्ते दीदार, महला पंजवां, क्या तक है व्यापास, कर ही अड़े एक आधार, थियो संतन की रेण, जित लब्बी सुख दातार, पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाईए, बिन सतगुर मनुआ ना लगे, धर्म तीरा कल अंदरे, एहो पापी मूल ना तगे, एह कर करे सो एह कर पाए, एक घड़ी मोहत ना लगे, चारे युग मैं सोदिया, बिन संगत अहंकार ना भगे, हौ मैं मूल ना छुटई, बिन साधु सत संगे, तिचर था ना पावई, जिचर साहिब स्यो मन भंगे, जिन जन गुरमुख सेविया, तिस कर दीवान अपगे, हर किरपा ते सुख पाया, गुर सतगुर चरणी लगे, दखणे महला पंजवां, लोड़ींदो हब जाए, सो मीरा मेरा नसिर, हठ मंजाहू सो तनी, चौंदो मुख अलाए, महला पंजवां, माणकू मोहे माओ, दिन्ना तनी अपाए, ह्याओ मिंजा ठंडड़ा, मुखों सच अलाए, महला पंजवां।

पौड़ी मन लोचै हर मिलन कौ क्यों दर्शन पाइया मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया मैं दस्यो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाइया मन अर्प्यो हौ मैं तजो इत पंत जलाइया नित सेवे हो साहेब अपना सतसंग मलाइया सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाइया तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया दखणे महला पंजवा मूथिया तख प्री महिंजे पातशाह पाव मलावे कोल कमल जिवै बिग साम दो महला पंजवा प्रिया संदड़ी भुख मूलावण थी वितरा जान मठाई इक बे पीड़े ना हुटे महला पंजवा ठगा नीहो मतरोड़ जान गंधर्वा नगरी सुख कटाऊ डूए इस पंधाणु घर कणी पौड़ी अकल कला नह पाई है प्रभ अलख अलेखं खट दर्शन भ्रमते फिरह नह मिलिए भेखं वर्त करह चंद्रायणा से कितै ना लेखं वेद पढ़ह संपूर्णा तत सार ना पेखं तिलक कढ़ह इशनान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु ना लभई बिन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस तुर मस्तक लेखं इन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं दखणे महला पंजवा सो निवाहू गड जो चलाऊ ना थी कार कूड़ा भी छड संभल सच धनी महला पंजवा हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाव नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी बाहर भेख ना पाई है प्रभ अंतर जामी इक सहार जियो बाहरी सब फिरै निकामी मन रता कटंब सियो नित गर्भ फिरामी फिरह गमानी जग मह क्या गर्भ दामी चलदिया नाल ना चलई खिन जाए बिलामी विचरदे फिरह संसार मह हर जी हो कामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जन हर का सेव को हर तिस की कामी दखणे महला पंजवा मुखों अलाए हब मरण पछाण दो कोई नानक किन्ना खाक जिन्ना यकीना हिक सियो महला पंजवा जान वसंदो मांझ पछाणु को हिकड़ो तैं तन पड़दा नाही नानक जय गुर भेटिया महला पंजवा मतड़ी कांडक आह पाव तवंदो पीवसा मूह तन प्रेम अथाह पसन कु सच्चा धनी पौड़ी निरपो नाम वसारिया नाल माया रचा आवै जाए पवाईऐ बहु जोनी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदरों थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खचा वैर करे निरवैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चै पातशाह देख तुर कर मचा जम दूती है हेरिया दुख ही मह पचा हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा दखणे महला पंजवा परभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ते आए जन्म मरण मले उतरै सच्चे के गुण गाए महला पंजवा देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूनिया नानक सफल जनम जय कट बुट्ठा सच तनी महला पंजवा लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखणिया बयान जिन्नी दसंदो माफिरी पौड़ी जिन जन गुरमुख सेवया
तिन सब सुख पाई ओह आप तरिया कथंब सियो सब जगत तराई ओन हर नामा धन संचया सब तिखा बुझाई ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिव लाई ओस सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई ओन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुपहाई होआ ओही अल जग मह गुर ज्ञान जपाई पूर्व लिखिया पाया हर सिउं बन आई दखणे महला पंजवां सच सुहावा कांडी है कूड़े कूड़ी सोए नानक विरले जानी है जिन सच पल्ले होए महला पंजवां सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहाल सां सुतड़ी सो सहो डिठ तैं सुपने हौ खन्नीए महला पंजवां सज्जन सच परख मुख अलावण थोथरा मन मजाहू लख तुदहो दूर ना सो पिरी पावड़ी तरत आकाश पताल है चंद सूर बिनासी बादशाह सहा उमराव खान ताहे डेरे जासी रंग तुंग गरीब मस्त सब लोक सदासी काजी सेक मसाए का सबे उठ जासी पीर पै कांबर औलिए को थिर न रहासी रोजा बांग नवाज कतेब बिन बुझे सब जासी लख चौरासी मेदनी सब आवै जासी निश्चल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अवनासी दखणे महला पंजवां डिठी हब टंडोल हिक सबाज ना कोई आओ सज्जन तू मुख लग मेरा तन मन ठंडा होए महला पंजवां आशक आसा बारा मूह मन वड्डी आस आस निराशा हिक तू हौ बल बल बल गई आस महला पंजवां विछोड़ा सुने दुख बिन जिथे मरे ओद बाज प्यारे अपने बिरही ना तिरोध पौड़ी तट तीरथ देव देवालिया केदार मथुरा कांसी कोट ते तीसा देवते सन इंद्रै जासी सिमरत शास्त्र वेद चार खट दर्श समासी पोथी पंडित गीत कवित कवते पी जासी जति सती सन्यासिया सब काल वासी मुन जोगी दिगंबरा जमै सन जासी जो दीसै सो बिनसना सब बिनस बनासी थिर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक थिर होसी सलोक दखणे महला पंजवां सह नंगे नह नंग भुखे लख ना भुखिया दुखे कोड़ ना दुख नानक प्री पिखंदो शुभ दिष्ट महला पंजवां सुख समूहा भोग भूम सबाई को तनी नानक हब्बो रोग मृतक नाम विहूणिया महला पंजवां हिक सकून तू आहे पाशाणु पी हिक कर नानक आसड़ी निबाहे मनुख परथाई लजीवंदो पौड़ी निश्चल एक नारायण हर अगम अगाधा निश्चल नाम निधान है जिस सिमरत हर लादा निश्चल कीर्तन गुण गोबिंद गुरमुख गावादा सच धर्म तप निश्चलो दिन रहन अरादा दया धर्म तप निश्चलो जिस कर्म लखादा निश्चल मस्तक लेख लिखिया सो टलै ना टलादा निश्चल संगत साध जन बचन निश्चल गुरसादा जिनको पूर्व लिखिया तिन सदा सदा आराधा सलोक दखणे महला पंजवां जोड़ बंदे आप सो तराए किनखे तारेंदड़ो पी तार नानक फिर स्यों रत्या महला पंजवां जिथै कोई कथन नाउ सुनंदो मां फिरे मूह जलाऊ तत् नानक प्री पसंदो

पंजवा मुआ जीवन दा पेख जीवन दे मर जान जिन्ना मोहब्बत एक सिंहो ते मानस प्रधान महला पंजवा जिस मन वसै पार ब्रह्म निकट न आवे पीर भुख तिख तिस न व्यापई जम नहीं आवे नीर पौड़ी कीमत कहण न जाइए सच साह अडोले सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोले पन्नण करन समरत है ओपत सब परले करन कारण समरत है घट घट सब बोले रिजक समाहे सब से क्या मानस डोले गहर गंभीर अथाह तू गुण ज्ञान अमोले सोई कम कमावना किया तुर मोले तुदहो बार किस नहीं नानक गुण बोले राग मारू बाणी कबीर जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडिया कवन कमत तुम लागे बूढ़ हो गए परवार सकल सिंह राम ना जपो अपागे रहाओ वेद पुराण पढ़े का क्या गुण खर चंदन जस पारा राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा जी बद हो सो धर्म कर थापो अधर्म कहो कत पाई आपस को मुनवर कर थापो का को कहो कसाई मन के अंधे आप ना बूझो काहे बुझावो पाई माया कारण विद्या बेचो जन्म अभिथा जाई नारद बचन व्यास कहत है सुख को पूछो जाई कह कबीर रामै राम छूटो नाहे ता बूढ़े पहाई बनह बसे क्यों पाई है जौलो मनहु ना तजह बेकार जेह घर बन समसर किया ते पूरे संसार सार सुख पाईए रामा रंग रवो आत्मै राम रहाओ जटा भस्म लेपन किया कहां गुफा महबास मन जीते जग जीतिया जाते बिखिया ते होए उदास अंजन दे सबै कोई टुक चाहन माए बिडान ज्ञान अंजन जेह पाया ते लोइन परवान कह कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए अंतरगत हर पेटिया अब मेरा मन कतहू ना जाए रिद सिद्ध जा को खुरी।

भिक्षा मांगे काय के तू नाव रहाओ। धर्मराय जब लेखा मांगे बाकी निकसी भारी पंच किरसानवा भाग गए लह बांधो जी हो दरबारी। कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो निबेरा अब की बार बख्श बंदे को।

प्रसाद अनभव किने ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अनभव होए बना हंबै सहो हदूर देखे ता भव पवै बैरागी अड़े हुक्मै बूझे ता निरपो होए बना हंबै हर पाखंड ना कीजई बैरागी अड़े पाखंड रत्ता सब लोक बना हंबै तृष्णा पास ना छोड़ी बैरागी अड़े ममता जालिया पिन बना हंबै चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े जे मन मृतक होए बना हंबै सतगुर बिन बैराग ना होवी बैरागी अड़े।

मूर्ख मुग्ध ग्वार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया, नाद सत पूरिया, सूर सत खोड़ सादत किया, अबाल बाल तोड़िया।

तन जोगन का गर्भ ना कीजै, कागज ज्यों गल जाएगा। जो जम आए केस गह पटकै, ता दिन किस ना बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे,

राग मारू बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा, माता शतर तरै रहाओ। जाकी शोत जगत को लागे, तां पर तुही तरै, नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन,

सुख सागर सुर तर चिंता मन काम धीन बस जा कीरी चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नव निध कर तल तांकै हर हर हर ना जपस रसना अवर सब छाड बचन रचना रहाव नाना ख्यान प्राण वेद विद चौतीस अक्षर माही व्यास विचार कहियो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाध अपाद रहत होए बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन्म मरन पै भागी तुखारी संत महला पहला बारह माहा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सुन किरत करमा पुरब कमाया सिर सिर सुख सहमा देह सो तू भला हर रचना तेरी क्या गत मेरी हर बिन घड़ी ना।

नानक मूर्ख कबह ना चेतै, क्या सूझै रैन अंधेरिया, दूजा पहर भया, जाग अचेती राम, वखर राख मुइये, खाजै खेती राम, राखो खेती हर गुर हेती, जागत चोर ना लागै, जम मग ना जावहु ना दुख पावहु, जम का डर पहु भागै, राव सस दीपक गुरमत द्वारै, मन साचा मुख त्यावे, नानक मूर

नैन अंधले तन भस्म से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए आपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए ढड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया।

राम, अन दिन पोर भया, साच समानी राम, साच समानी गुरमुख मन पानी, गुरमुख साबत जागे, साच नाम अमृत गुर दिया, हर चरणी लिव लागे, प्रगति जोत जोत मह जाता, मनमुख परम पलानी, नानक पोर भया मन मानिया।

मन मानिया जिन जल थल त्रे भवन घट घट थापिया सो प्रभ गुरमुख जानिया करन कारण समराथ अपारा त्रे विद मेट समाई नानक अवगुण।

यह साची सच मत तेरी साजन देश वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाईए फिर पारी सतगुर शब्दी मिलै विछुन्नी तन मन आगे राखे नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखे महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे अन दिन रतड़िए सहज मलीजे सुख सहज मलीजे रोस ना कीजे गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फोड़ न

रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया अवर ना दूजा पाले गुर अलख लखाया जा तिस पाया जा प्रभ कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर कह तू तार है तरिये सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहिया गुर रूप मरारे त्रे भवन धारे ताका अंत ना पाया रंगी जिनसी जंत अपाए नित देवै चढ़ सुआया अपरंपर आपे थाप उथापे जिस भावै सो होवै नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवै गुण गुण है समाने मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूका आवन जानु सच साच पछाता सच राता

निराला राम हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अग्न भांदे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो सखा सहन प्यार प्रीतम नाम।

गुण गाए राम रसाए रसिय है गुरु ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारे।

सुरत लंगावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

राम जब लग दर्शना होए क्यों अमृत पीवी है राम क्यों अमृत पीवी है हर बिर जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विट हों।

अन दिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुरु बिटहु कुमाए, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजल तारिय राम, गुरदेव हो शब्द सुपाए, मैं मूढ़ निस्तारिय राम, हम मूढ़ मुगद किस्मित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मिल है, हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर परमे, हुण तौ शरणागत आई, दया करो रख ले वो हर जियो, हम लाग हैं सतगुर पाए, गुर पारस हम लोह, मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मलाई, काया गढ़ सोहया राम, काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया, क्यों सास ग्रास वसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हौ सतगुर कै बलिहारी है, सतगुर आगे सीस भेट देउ, जे सतगुर साचे पावे आपे दया करहु प्रभ दाती, नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा, जो तुम प्यावे जगदीश ते जान पाओ बिखम तरा, बिखम पाओ तिन तरिया सुहिला, जिन हर हर नाम त्याया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी, हर कृपा कर तरनी तरा, हर हर अगम अगाद अपरंपर अपर परा, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, तू अलख अपेओ अगम, गुर सतगुर बचन लहया, तन तन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जां बह गुरमुख हर नाम बोल है, जां खड़े गुरमुख हर हर कहया, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दुख सब बिनसे, जिन मन चित एक अरादया, तिनका जन्म सफलियो सब किया करते, जिन गुरबचनी सच पाखिया, ते तन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हरियाप, ज्यों तू चलावह प्यारे हों तिवें चलना हमरे।

सुन प्रभु मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई ज्यों

चिता प्राण सुख दाता गुरमुख जाता सगल रंग बने आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फरमाए जां को कृपा करी जगदीश्वर किन साध संग मन जिता कहो नानक जीअड़ा बलिहारी जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा ढाक नहारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अवनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख बिधाते उस्तत कहन न जाए तुम्हारी कौन कहे तू कद का।

गऊ सुख माने त्यों नानक हर गल लावी रे। केदारा महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन हर हर गुण कहो रे सतगुरु के चरण धोए धोए पूजो। इन बिद मेरा हर प्रभ लहो रे रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस। इन संगत ते तू रहो रे मिल सत संगत की जय हर गोष्ट साधु स्यो गोष्ट। हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन हर राम नाम राम रम हो रे। अंतर का अभिमान जोर तू किस किस किस जानता ए दूर करहो आपन गहोरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी हर संतन की टूर कर हरे। केदारा महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी। देखत मोदर रहस मन उपजेओ नानक प्रिय अमर।

दोखी एक मन अनाथ नाथ राख हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं उपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल शरण बंधन करना पति भाव हरन हर हर हर हर।

मद मोहक काम क्रोध कै खात कर गह लेहो दास नानक कहो प्रभ जियो होए सहात। केदारा महला पंजवा हर बिन कोए ना चाल साथ दीना नाथ करुणा पत स्वामी अनाथा के नाथ रहाउ। सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह लिबहत जम कै पाथ नाम निधान गाओ गुण गोबिंद उधर सागर के खात। सरल समरथ अकाथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ नानक दीन धूर जन बाछत मिले।

मन ते हरी अब ए प्रीत महा प्रबल भई आन बिखै जरी रहाउ बूंद कहां त्याग चात्र मीन रहत ना करी गुण गोपाल उचार रसना टेव एहे परी महानाद करंक मोहयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी।

और रहाउ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारु तूर संत संग हर चरण बोहित उदर तेल मोर गर्भ कुंट मह जिनह तारियो नहीं बिखै बन मह होर हर सकत सरन समरत नानक।

रहाऊ। त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान, मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर पर मान। सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान, नाम निधान लाभ नानक बस्त एह परवान। केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार, कल कलेश ना कश व्यापै संत संग व्यवहार। रहाउ कर अनुग्रह आप राखियो नह उपज तो बेकार, जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नह संसार। सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार, नानक।

जीवन रूप बसार जीव है, तेहे कत जीवन होत रहाओ, खात पीत अनेक बिंजन, जैसे भार बाहक खोत, आठ पहर महाश्रम पाया, जैसे बिरख जंती जोत, ताज गोपाल जे आन लागे से।

पूर रहया सर्वत्र मैं सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नजर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निद गाई सहज सुपाई प्रेम महारस माता नानक दास तेरी सरनाई तू पूरन पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदिया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यों देहुरी कत सोभा पावे दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदिया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतहु ना जाए न खेदिया हर स्यों जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावे ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा तारे निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारे नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने।

खान, भाऊ भगत सिंह काज न कछु है, मेरो काम दीवान, राम बसारियो है अभमान, कनक कामनी महासुंदरी, पेख पेख सच मान रहाओ, लालच झूठ बिकार महामद, एह बिद औद बिहान, कह कबीर अंत की बेर, आई लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मतिया, संग ना कछ लह जाए रहाओ, गहरी बैठी मेहरी रोवे, द्वारे लो संग माए, मरहट लग सब लोग कटंब मिल, हंस अकेला जाए, वै सुत वै बित वै पुर पाटन, बहुर न देखे आए, कहत कबीर राम की ना सिमर हो, जन्म अकारथ जाए, राग के दारा बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खट कर्म कुल संयुगत है, हर भगत हृदय नाही, चरनार बिंद ना कथा भावे, सुपच तुल

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो प्राणी, हर जप जन्म गयो साच, शब्द बिन कभो ना छूटस, बिरथा जन्म भयो रहाओ, तन मह काम क्रोध हों ममता, कठन पीर अत भारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी, बहरे करन अकल पई होशी, शब्द से

जेहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके, संत जना की निंदा व्यापस, पशु भये कदे होहे ना नीके, अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए, जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए, अन को दर कर कबहू ना जानस,

साच रते सच अमृत जिहवा मिथ्या मैल न राई निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरम

ए जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निफल मर भ्रम ना रहाउ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी। राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सो पार परे। जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया। राम नाम बिन त्रिपत ना आवे किरत कै बांधे भीख भया। जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया। राग भैरो महला तीजा चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जात का गर्भ ना करियो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा। रहाउ चारी वर्ण आखे सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा बहु विद भांडे घड़े कुमारा। पंच तत् मिन देही का अकारा घट वध को करे बीचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई। भैरो महला तीजा जोगी गृही पंडित भेख धारी ए सूते अपने अहंकारी। माया मद माता रहया सोई जागत रह ना मूसे कोई। रहाउ सो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओह वसगत करे। सो जागे जो तत बीचारे आप मरे अवरा नह मारे। सो जागे जो एको जाने परकिरत छोड़े तत पछाणे। चहो वरना विच जागे कोई जमे काले ते छूटे सोई। कहत नानक जन जागे सोए ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए। भैरो महला तीजा जाको राखे अपनी सरनाई। साची लागे साचा फल पाई रे जन कैस्यो करो पुकारा। हुक्मे हुआ हुक्मे वर्तारा। रहाउ एहो आकार तेरा है तारा खिन मैं बिनसे करत न लागे बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया गुर कृपा ते परम पद पाया।

तिस भावै तां करी भूग तन मन साची साहिब जोग रहाउ उस्तत निंदा करे क्या कोई जाय आपे वरतै इको सोई गुर प्रसादी पिरम कसाई मिलोगी दयाल पंच शब्द वजाई भणत नानक करे क्या कोई जिसनो आप मलावै सोए भैरो महला तीजा सो मुन जे मन की दुबदा मारे दुबदा मार ब्रह्म बिचारे इस मन को कोई खोजो हो पाई मन खोजत नाम नौ निध पाई रहाओ मूल मोह कर करतै जगत अपाया ममता लाए भरम भुलाया इस मन ते सब पिंड पराणा मन कै विचार हुक्म बुझ समाणा कर्म होवै गुर कृपा करै एहो मन जागै इस मन की दुबदा मरै मन का सुभाओ सदा बैरागी सब मह वसै अतीत अनरागी कहत नानक जो जानै पियो आद पुरख निरंजन देओ भैरो महला तीजा राम नाम जगत निस्तारा भवजल पार उतारन हारा गुर प्रसादी हर नाम संभाल

हर का नाम निधानो पाया सुख वसिया मन आई। चौथी पदवी गुरमुख वरत है तिन निज घर वास्ता पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचो आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा एको ना ओह मरे ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझै है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवै। जिन हर राखिया उर तारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे ना कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरों महला तीजा दुख विच जम्मे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकले बिस्टा माही समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाउ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे तां फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई। जिन सतगुरु पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरो महला तीजा। शब्द बीचारे सो जन साचा जिनकै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती तां तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाईए। पूरे भाग मिले प्राप्त।

समाए गुरमुख ज्ञान तत बीचारा ज्योति ज्योत मलाए सो प्रभ साचा सद ही साचा साचा सब आकारा नानक सतगुर सोजी पाई सच नाम निस्तारा भैरव महला तीजा कल मह प्रेत जिनी राम ना पछाता सतयुग परमहंस बीच।

सगले कुल तारी जिन्नी राम नाम लिवलाई। मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाई। जिन मन वसिया से जन सोहे हृदय नाम वसाई। घर दर महल सतगुरु दिखाया रंग सोरलिया माण। जो किस कह सो भला कर मान। नानक नाम बखाण। भैरों महला तीजा मनसा मन है समाये ले। गुर शब्दी विचार गुर पूरे ते सोजी पवे। फिर मरे ना वारो वार मन मेरे राम नाम आधार। गुर प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पजामन हार रहाउ। सब मह इको रव रहिया गुर बिन बूझ ना पाई। गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अन दिन हर गुण गाई। सुख दाता हर एक है होर थे सुख ना पाए। सतगुर जिनी ना सेविया दाता से अंत गए पछताए। सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए। नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति ज्योत समाई। भैरू महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना। भूला चोटा खाई मर मर जमे सदा दुख पाई। डर की खबर ना पाई मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना। हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे भवजल तरना रहा। पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार। अंतर तिसा भूख अत बहुती भौकत फिरे दरबार। गुर कै शब्द मरह फिर जीव है तिनको मुक्त द्वार। अंतर शांत सदा सुख होवे हर राखिया पुरतार। ज्यों तिस पावे तिवें चलावे करना किछु ना जाई। नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वडियाई। भैरू महला तीजा हम मैं माया मोहे खोआया। दुख खटे दुख खाए अंतर लोभ हलक दुख भारी। बिन विवेक परमहाय मन मुख त्रिक जीवन संसार। राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर स्यों कदे न लागे प्यार। रहाउ पशुआ कर्म करे नहीं बूझै

मन जाप, हौं तुद सलाही तू मेरा हर प्रभ बाप। रहाउ जह जह देखा तह हर प्रभ सोई, सब तेरे वस दूजा अवर ना कोई। जिस कौ तुम हर राखिया पावे, तिस कै नेड़ कोई ना जावे। तू जल थल महियल सब तै भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर। भैरू महला चौथा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का संत हर की हर मूरत, जिस हिरदय हर नाम मरार। मस्तक भाग होए जिस लिखिया, सो गुरमत हिरदय हर नाम सुमार। मद सूदन जपिय उरतार, देही नगर तस्कर पंच धातु। गुर शब्दी हर काढ़े मार रहाउ, जिनका हर सेती मन मानिया। तिन कारज हर आप सवार, तिन चूकी मोहताजी लोकन की। हर अंगीकार किया करतार, मता मसूरत तां किश कीजै। जे किश होवे हर बाहर, जो किश करे सोई भल होसी। हर त्यावो हो अन दिन नाम मरार, हर जो किश करे सो आपे आपे। ओह पूछ ना किसै करे बीचार, नानक सो प्रभ सदा त्याई। जिन मेलिया सतगुर कृपा धार, भैरू महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी। जिन जपिया गत होए हमारी, तिनका दर्श देख मन बिगसै। खिन खिन तिनको हों बलिहारी, हर हिरदय जप नाम मरारी। कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनेहारी। रहाउ तिन माते उत्तम तिन पाते उत्तम, जिन हिरदय वसे आपन वारी। तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते हर दरगाह काढे मारी। ते नर निंदक सोभ ना पावे, तिन नक काटे सिरजनहारी। हर आप बुलावे आपे बोले, हर आप निरंजन निरंकार निराहारी। हर जिस तू मिल है सो तुद मिलसी, जन नानक क्या एह जंत विचारी। भैरू महला चौथा, सत संगत साई हर तेरी। जित हर कीरत हर सुनने, जिन हर नाम सुनिया मन पीना। तिन हम श्रेव है नित चरने, जग जीवन हर त्याए तरने। अनेक असंख नाम हर तेरे, ना जाई जेवायत गणने। रहाउ गुरसिख हर बोलो हर गावहु, ले गुरमत हर जपने। जो उपदेश सुने गुर केरा, सो जन पावे हर सुख घने। धन सो वंश धन सो पिता, धन सो माता जिन जन जने। जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर, से साची दरगाह हर जन बने। हर हर अगम नाम हर तेरे, विच भगता हर धरनी। नानक जन पाया मत गुरमत, जप हर हर पार पवनी।

अष्टम थीत गोविंद जन्मासी परम भूले नर करत कचरायन जन्म मरण ते रहत नारायण रहाव कर पंजीर खवायो चोर ओह जन्म ना मरे रे साकत ढोर सगल पराध देहे लोरोनी सो मुख जलो।

मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाउ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मलाए नानक प्रभ शरणागत आए पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाक गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवै।

शोभा पावे प्रभु के द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, धूर बांछ है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, भैरों महला पंजवां, अपने दास कहो कंठ लगावे, निंदक कहो अगन मह पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी की गत कत हूं नाही, पापी पचिया आप कमाए रहाउ, दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग भैरो मोहल्ला पंजवां, चौपदी कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री तर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा, कमन बिख्या रस माता, रे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है तित बिगरस काज रहाउ, ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह, मनमुख अंध अज्ञान, हर की भगत करह तिन

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप पई सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरों महला पंजवा बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

रस मंगल गुण गाय रहाउ जोग भेख सन्यासै पेखियो जत जंगम कापड़ाई तपी तपी सर मुन मह पेखियो नट नाटक निरताई चहो मह पेखियो खट मह पेखियो दस अस्ति सिमरताई सब मिल एको एक वखान है तौ किस्ते कहो दुराई अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई जन नानक तिन कह बल बल जाई जेह घट प्रगति आई भैरू महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिक संचै नित डरता फिरै है निकते अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया।

परग्रह जाय दरबे रह मिथ्या कर खाई पैठ गौरी हर संग ना जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट ना जाने बोले कूड़ माया मोहि मूठा है मूड अंतर वस्तद संतर जाए बाज गुरु है परम पुलाई जिस मस्तक कर्म लिखिया लिलाट।

जिन सेविया निरपहो सुख दाता, तिन पहो दूर किया एक प्राता, जो तू करह सोई फुन होए, मारे न राखे दूजा कोए। क्या तू सोचे है मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जान है सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोए। पहरों महला पंजवा, तव कड़िया जे हुए बाहर, तव कड़िया जे विसरे नरहर, तव कड़िया जे दूजा भाय, क्या कड़िया जा रहया समाय, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ। तव कड़िया जे दूजा करता, तव कड़िया जे अन्याय को मरता, तव कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तव कड़िया जे किस हुए तिंगाने, तव कड़िया जे फूल रिजाने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सबको तेरा, ज्यो भावे त्यो करह निबेरा, दुतिया नास्त इक रहया समाए, राखो पैज नानक सरनाई। पहरू महला पंजवा, बिन बाजे कैसो निर्तकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी, जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरते सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ, बिन जिहवा कहां को बकता।

कहा कोई पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हौ त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच कहा मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।

रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी।

रोगे फिर फिर जोनी परम रोग बंद रहन रती ना पावे बिन सतगुरु रोग कतह ना जावे पार ब्रह्म जिस कीनी दया बाहां पकड़ रोगों काज लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मटाया पैरू महला पंजवा चीत आवे ता महा आनंद चीत आवे ता सब दुख भंज चीत आवे ता श्रद्धा पूरी चीत आवे ता कबह ना झूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरे दियो रंग लाए रहाउ चीत आवे ता सर्ब को राजा।

अंते अपूछे। राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल। शोभा मेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर। कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई। पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरू महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते। हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना टोई। शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए। सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश। मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदरी आया। खसम तू है सबना केराया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया। तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए। चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा। मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर भये दयाला। नानक दास देख भये निहाला, भैरू महला पंजवा। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाउ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है। सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुर कह हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै, जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै। नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। भैरू महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट भया। नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया। नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम। गुर उपदेसिया तत् ज्ञान रहाउ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना। नाम लैत

लैत दरगाह सुख पावे। नाम लैत प्रभ कह साबास, नाम हमारी साची रास। गुर अपदेश कहो इहो सार, हर कीरत मन नाम आधार। नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लोकह पतियार। भैरू महला पंजवां, नमस्कार ता को लख बार। इहो मन दीजै ता को वार, सिमरन ता कै मिटह संताप। होए आनंद न व्यापह ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम, रहाउ जाकी दृष्ट दुख डेरा तह। अमृत नाम शीतल मन गह, अनक भगत जाके चरण पुजारी। सगल मनोरथ पूरन हारी, खिन मै ऊणे सुपर भरिया। खिन मह सूके कीने हरिया, खिन मह न थावे को दीनो थान। खिन मह न माणे को दीनो मान, सब मह एक रहिया पर पूरा। सो जा पै जिस सत गुर पूरा। हर

मोहे दुहागने आप शिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी, मिट्यो दुख हर सगल संताप, गुर होए मेरे माई बाप, सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ, तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर भये परगासा, अनहद शब्द अचरज बिस्माद।

बहुत निदान जां को सतगुर दियो नाम जां को भेट्यो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना कहो नानक जो जा।

आवे, बेसवा भजत किस नह शरमावे, सारो दिन समजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर पर, माया लग भूलो संसार, आप भलाया भलावन हार, राज रहिया बिरथा व्यवहार, रहाउ देखत माया रंग बिहाई, गड़बड़ करे कौडी रंग लाई, अंध व्यवहार बंद मन तावे, करने हार न जी मह आवे, करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत न कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़प मुआ ज्यो जल बिन मीना, जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, भैरो महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, सात शब्द हिरदे मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जपो नित पाई।

रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरा की नो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाओ नाम हमारे निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारे पूरा साह, नाम हमारे बेपरवाह, नाम हमारे भोजन पाओ।

सुख होए कर कृपा जा को मिले सोए रहाओ जाके कर्तव लखे ना जाहे जाका प्रवासा सब घट माए प्रगट भया साधु कै संग भगत अराध अन दिन रंग देंदे तोट नहीं पंडार चिन मह था पयो।

पूरी आस्था, दुख सुख हमरा तिसही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होई, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाउ, त्रिविद माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ पागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन री जावे, स्वांग उतारे है फिर पछतावे, मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार, एक वस्त जे पावे कोई, पूर्ण काज ताही का होई।

देखकर मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देवै नाओ भैरों महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहे निर्मल मना।

प्रभ सोग नथावे कहो तुम थान बैठावो दास अपने कहो भगती लावो नमाने को प्रभ दे तो मान मूड मुग्ध होए चतर सुगयान सगल पयान का पौ नसै जाने अपने कह हर मन बसै।

नानक साधु संग समाई पैरों महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसै संत मंडल में दुर्त सब नसै संत

संत मंडल मह जन्म मरण रह, संत मंडल मह जम किशु ना कह, संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल मह नाम वखाणी, संत मंडल का नेह चले आसन, संत मंडल मह पाप बनासन, संत मंडल मह निर्मल कथा, संत संग हूं मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल मह हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखै आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करै, तिस ऊपर ते काल पर हरै, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवै तिस सदा सुख होवै, निकट न आवै ता कै जाम रहाव, जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवालै, अपने भगत को सदा प्रतपालै, सब किस जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाउ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, एहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

उतर गई सब मन की चिंदा, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभु देख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए रहाउ। अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

पई पैरू महला पंजवा सुख नाही बहुत धन खाते सुख नाही पेखे निरत नाते सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संग पाइए वड भागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाऊ बंधन मात पिता सुत बनता बंधन कर्म धर्म हो करता बंधन काटन हार मन वसै तौ सुख पावे निज कर बसै सब जाचक प्रभ देवन हार गुण निदान बेअंत अपार जिसनो कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी सरनाई ज्यो पावे त्यों रखो गुसाई पैरो महला पंजवा गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ गुरमुख जपियो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ रोग दुख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन पीतर सारे गुर पेटत मन पया आनंद सर्व निदान नाम भगवंत जन्म मरण की मिटी जम त्रास साध संगत ऊंद कमल बिगास गुण गावत निश्चल विश्राम पूर्ण होए सगले काम दलाभ दे आई परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभ कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी।

सोवै हर सिमरन शाद परम गत चाहै मूल बिना साखा कत आहै गुरु गोविंद मेरे मन त्याहे

बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल, बिन खाए दूजे नहीं भूख, रोग जाए ता उतर है दुख, काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया, तन तन साध तन हर नाओ, आठ पहर कीर्तन गुण गाओ, तन हर भगत तन करने हार, शरण नानक प्रभ पुरख अपार, भैरो महला पंजवां, गुर सो प्रसन्न होए पौ गए, नाम निरंजन मन मह लई, दीन दयाल सदा किरपाल, बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद कने, साध संग मिटे पै परमा, अमृत हर हर रसन भने रहाओ, चरण कमल स्यों लागो हेत, खिन मह बिन स्यो महापरेत, आठ पहर हर हर जप जाप, राखन हार गोविंद गुरे आप, अपने सेवक को सदा प्रित पारे, भगत जना के सास निहारे, मानस की कहो केतक बात, जम ते राख दे कर हाथ,

करन कारण समरथ गुर मेरा, जी प्राण सुख दाता नेरा, पै भंजन अबनासी राय, दर्शन देखे है सब दुख जाए, जत तत देखो तेरी सरना, बल बल जाई।

सब किस तेरा तू करने हार, पार ब्रह्म गुरे अगमे अपार, निर्मल सुभा आचर्य बाणी, पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी, जल थल महियल रवे आसोए, नानक सब किस प्रभ ते होए, पैरो महला पंजवा, मन तन राता राम रंग चरने, सर्ब मनोरथ पूरन करने, आठ पहर गावत भगवंत।

सूजन आया प्रभ की सरना, आप पवित्र पावन सब कीने, राम रसायन रसना कीने। भैरो महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन ना लागै, नाम सुनत जम दूर हो भागै, नाम लैत सब दुख नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत भज हर हर नाउ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ।

पे भोगी जत कत पेखो तत तत सोए तिस बिन दूजा नाही कोई सागर तरिया नाम कै रंग।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राखे हाथ, निमख न छोड़े सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर न कोई, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आदि जुगाद भगत गुण गायन।

त्रेहो गुण की दास के होए पूर्ण काम रहाव। हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण ताम। जन का दर्स बांछे दिन राती होए पनीत धर्म राय जाम। काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अवमान। ऐसे संत पीतह वड भागी नानक तिनकै सद कुर्बान। पैरु महला पंजवां पंच मजमी जो पंचन राखै मिथ्या रसना नित उठ पाखै। चक्कर बनाए करै पाखंड चुर चुर पचै जैसे तैरंड। हर के नाम बिना सब झूठ बिन गुर पूरे मुक्त ना पाईए। साची दरगह साकत मूठ रहाओ सोई कुचील कुदरत नहीं जाने। लीपे थाए ना सोच हर मानै।

पिंड तन तिसकी रास सोई मेरा स्वामी करनै हार कोट बार जाई बलिहार साधु तूर पनीत करी मन के विकार मिटह प्रभ सिमरत जन्म जन्म की मैल हरी रहाओ जाकै ग्रह मह सगल निदान जाकी सेवा पाई है मान सगल मनोरथ पूरन हार जी प्राण भगतन आधार कट कट अंतर सगल परगास जप जप जीव है।

नाम निदान निर्मल एह थोक कर कृपा लीजे लड़ लाए चरण कमल नानक नित त्याय पैरों महला पंजवां सतगुरे अपने सुनी अरदास कार जे आया सगला रास मन तने अंतर प्रभु ते आया गुर पूरे डर सगल चुकाया सब ते वड समरथ गुरुदेव सब सुख पाई इसकी सेव रहाओ जाका किया सब किछ होए तिसका।

सब नगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई। संडै मरकै की पुकार, सभे दैत रहे चख मार। भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई। किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिन आप भुलाया। पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़ै आया। प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला, निरपो बालक।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हम मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना कहो जम जोहे ना साके, रत्ती

वड़ियाई। जन्म जन्म के किल विख दुख काट है, दुबदा रती ना राई। हम मूड मुगद किस बूझ नाही, तू आपे देह बुझाई। जो तुद पावै सोई करसी, अवर न करना जाई। जगत अपाए तुद

सूझै दुर्मत अज्ञान अंधारा भवजल पार न पावह कभी डूब मुए बिन गुर सिर पारा साचे शब्द रते जन साचे हर कब आप मलाई गुर की वाणी शब्द पछाती।

नानक तिनकै सद बलिहार राम नाम उर धारे भैरो महला पंजवां अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिस नाम हृदय सोई वड राजा जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए नाम बिना जन्म बिरथा जाए इस सलाही जिस हर तन रास सो वड भागी जिस गुर मस्तक हाथ रहाव जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ नाम बिना त्रिग जीवन मुआ जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता जिस नाम हृदय इन नौ निध पाई नाम बिना भ्रम आवै जाई जिस नाम हृदय सो वे परवाहा जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा जिस नाम हृदय तिस वड परवारा नाम बिना मनमुख गवारा जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन जिस नाम हृदय सो साचा साह नाम हीन नाही पत वे साह जिस नाम हृदय सो सब मह जाता जिस नाम हृदय सो पुरख बधाता जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा नाम बिना भ्रम जोनी मूचा जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा जिस नाम हृदय सो पुरख परवान नाम बिना फिर आवन जान तिन नाम पाया जिस भयो किरपाल साध संगत मह लखे गोपाल आवन जान रहे सुख पाया कहो नानक तत्तै तत मलाया भैरु महला पंजवां कोट बिशन कीने अवतार कोट ब्रह्मांड जाके धर्मसाल कोट महेश उपाय समाए कोट ब्रह्मे जग साजन लाए ऐसो धनी गोविंद हमारे।

सिह जाए, कोट अपार जना तेरा अंग, कोट भगत बस्त हर संग, कोट छत्रपत करत नमस्कार, कोट इंद्र

नाम चार कोट पुजारी करते पूजा कोट विस्थारन अवरना दूजा कोट महमा जाकी निर्मल हंस कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस कोट परलो ओपत निमख माहे कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे कोट ज्ञानी कथ है ज्ञान कोट त्यानी तरत त्यान कोट तपीसर तप ही करते कोट मनीसर मोन मह रहते अवगत नाथ अगोचर स्वामी पूर रहया काटे अंतर जामी।

बहर पिस संग मन राती रहाओ अचिंत हमारे भोजन पाओ अचिंत हमारे लीचे नाओ अचिंत हमारे शब्द उदार अचिंत हमारे परे पंडार अचिंत हमारे कार्य पूरे अचिंत हमारे लथे वसूरे अचिंत हमारे बैरी मीता अचिंतो ही इहो मन वस कीता अचिंत प्रभु हम किया दलासा अचिंत हमारी पूर्ण आसा अचिंत हमा को सगल सिद्धांत अचिंत हम को गुर दीनो मंत अचिंत हमारे बिन से बैर अचिंत हमारे मिटे अंधेर अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा अचिंत मिट्यो है सगलो परमा अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा अचिंत हमारे अनहत वाजै अचिंत हमारे गोविंद गाजै अचिंत हमारे मन पतियाना निश्चल तनी अचिंत पछाना अचिंतो उपजियो सगल बिबेका अचिंत चरी हाथ हर हर टेका अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख अचिंत मिलियो प्रभ ठाकुर एक चिंत अचिंता सगली गई प्रभ नानक नानक नानक मई भैरों बाणी भगतां की कबीर जियो घर पहला।

राम राजा नौ निध मेरा संपहित कलत धन तेरा रहाओ आवत संग न जात संगाती कहां पयो दर बांधे हाथी।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अन कतह ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो, संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामै हुए निबरियो।

जो निरतन सर तन कह जाए, आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर तन दो

सो देही पज हर की सेव पजो गोविंद भूल मत जाहो मानस जन्म का एही लाहो रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल भई नहीं बानी भज लेहे रे मन सारिंग पानी अब ना भजस भजस कब भाई।

तरे आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई।

फंद ना पात्र बोले ना किस दे फूकट कर्म निफल है सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या काट जाई कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार दूजे भाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे काम माया कुंचर को व्यापे भुयंगम प्रियंग माया मह खापे।

राति साकर माखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खेला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपे रखी सर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा।

मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सुवार है आई। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमर हो दुख भंजना रहाऊ। जब लग सिंह रह बन माही तब

बंका पाई दोवर कोट अर तेवर खाई रहाऊ पांच पचीस मोह मद मत्सर आडी पर बल माया जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहां करो रघुराया काम कवारी दुख सुख दरवानी पाप पुन दरवाजा क्रोध प्रधान महाबड दुंदर तह मन मावासी राजा स्वाद सनाहा टोप ममता को कबुद्ध कमान चढ़ाई तिसना तीर रहे काट पीतर यों गाड़ लियो ना जाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एक है चोट सजाया सत संतोख ले लरने लागा तोरे दुए दरवाजा साध संगत अर गुर की कृपा ते पकरे ओ गढ़ को राजा भगवत पीर।

ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड पिंड सो जान मान सरोवर कर इशनान सोहं सो जाको है जाप जाको लिप्त ना हो।

रमावल कोट अथारह पार, कोट कमेर परह पंडार, कोटक लक्ष्मी करै श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहो हिरै, इंदर कोट जाके सेवा करै, छप्पन कोट जाके प्रतिहार, नगरी नगरी खेत अपार, लट छूटी वरतै बिकराल, कोट कला खेलै गोपाल, कोट जग जाके दरबार, गंधर्व कोट करह जयकार, विद्या कोट।

पर हरि ताके निकट बसे नर हरि जो ना पजंते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाउ जिनके भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है बत्तीस लखना दूध कटोरे गड़वे पानी कपल गाए नामे दोहे आनी दूध पियो गोबिंदे राय दूध पियो मेरो मन पति आए नाही ता घर को बाप रसाए रहाओ सोइन कटोरी अमृत भरी लै नामे हर आगै धरी एक भगत मेरे हृदय बसै नामे देख नारायण हसै दूध पियाए भगत घर गया नामे हर का दर्शन भया मैं बौरी मेरा राम पतार रच रच ताको करो शिंगार भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग तन मन राम प्यारे जोग रहाओ।

हम ही पाचहारी। राम कह करताल बुझावे चटिया सब बिगारी। राम नामा जप भो करे हृदय हर जी को सिमरन धरे रहाव। बसदा बस कीनी सब राजी बिनती करे पटराणी। भूत प्रहलाद कहया नहीं माने तिन तो औरे ठानी। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह औध कनेरी। गिर तर जल ज्वाला पै राखियु राजा राम माया फेरी। काड खड़ग काल पै कूपियो मोहि बताओ जो तुहे राख। पीत पितांबर त्रे पवन धनी थंब माहे हर पाख। हर नाखश जिन नख बिदारे हो सुर नर किए सनाथा। कह नाम देहु हम नर हर त्याव। राम अपै पद

आए ना तर गर्दन मारो ठाए बादशाह ऐसे क्यों हुए बिस्मिल किया न जीवे कोई मेरा किया कछु न होए कर है राम हुए है सोए बादशाह चढ़ो अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार रुदन करे नामे की माए छोड़ राम की ना भजै खुदाए ना हूं तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गा।

दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाए औकट की घट लागी आए काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय नामा कह सुनो बादशाह एहो किश पतिया।

ता पौ जल तरे जौ गुरदेव ता जन्म ना मरे जौ गुरदेव अठ दस व्यवहार जौ गुरदेव अठारह पार बिन गुरदेव अवर नहीं जाई नाम देव गुर की शरणाई भैरो बाणी रविदास जियो की कर दूजा

जो कोई पारस परसै दुबदा ना हुई रहाओ सो मन मन की दुबदा खाए बिन द्वारे त्रै लोक समाए मन का स्वभाव सब कोई करे करता हुए सो अन पै रह फल कारण फूली बन राय फल लागा तब फूल बुलाए ज्ञान कारण कर्म अभ्यास ज्ञान भया तह कर्म है नास कृत

हृदय राम की ना जपस अपाग नाम देव आओ कलंदर केसवा कर अबदाली पेसवा रहाऊ जिन आकाश कुलह सिर कीनी कौसै सपत पयाला चमर पोस का मंदर तेरा एह बिद बने गोपाला छप्पन कोट

काजी मुल्ला हुवै सेख, जोगी जंगम भगवे पेख, को गिरही कर्मा की संद, बिन बूजे सब खड़ी अस बंद, जेते जी लिखी सिरकार, करनी ऊपर हो वग सार, हुक्म करह मूर्ख गावार, नानक साचे के सिफत पंडार, बसंत महला तीजा, बस्तर उतार दिगंबर होग, जटाता

पार उत्तर जाहे एक खिना रहाऊ सिमरत शास्त्र करह वख्यान नादी बेदी पढ़ पुराण पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे तिन कैर मैया नेड़ नाई जे को ऐसा संजमी होए क्रिया वसेख पूजा करे।

होई, तीर्थ पवैद संतर लोई, नानक मिलिया सतगुर संग, तौ पवजल के तू तस बंद, बसंत महल।

बिन साधना पाईए हर का संग, बिन गुर महल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होए, गुर शब्द सलाहे साच सोए। जाको तू राख है रखन हार, सतगुरु मलावह करह सार, बिकहु मैं ममता पर हराई, सब दुख

अमृत नामा महला पहला बसंत हंडोल घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद साल ग्राम बिप पूज मनावो सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो दया करहु दयाला काहे कलरा सिंच हो जन्म गवावो काची कहग दवाल काहे गच लावो रहाओ कर हरहत माल टिंड परोवो तिस भीतर मन जोवो।

गोड हो धरती पाई, ज्यों गोड हो त्यों तुम सुख पावहु। कीर्तना मेत्या जाई, बगले ते पुन हंसला हुए, जे तू करह दयाला। प्रणवत नानक दासन दासा, दया करहु दयाला। बसंत महला पहला हिंडोल, सहुरड़ी वस सब किस सांझी। पेव कड़ै धन वखे, आप कचजी दोष ना देऊ, जाना नाही रखे। मेरे साहिबा हौं आपे परम भलाणी, अखर लिखे से ही गावां, अवर ना जाना बाणी। रहाउ कड कसीदा पहरह चोली, ता तुम जाड़ हो नारी। जे कर राख है बुरा ना चाख है, हो वह कंत प्यारी। जे तू पढ़या पंडित बीना, दोए अखर दोए नावा। प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। बसंत हिंडोल महला पहला, राजा बालक नगरी काची। दुष्टा नाल प्यारू, दोए माई दोए बापा पड़िए, पंडित करहो बीचारू। स्वामी पंडता तुम देहो मती, किन बिद पावो प्राणपति। रहाओ पीतर अगन बनास्पत मौली, सागर पंडै पाया। चंद सूरज दोए कर ही पीतर,

खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर किरपा हर भगत दृढ़ाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलह रे मन चेत हरी बिन गुरमुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईऐ नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईऐ कर्म मिलै हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करह सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिलै वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थीए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरिया सब जी जंत क्या हो आखा किरम जंत तेरा किनै न पाया आदि अंत तै साहिब की करह सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ कर्म होवै ता सेवा करै गुर प्रसादी जीवत मरै अन दिन साच नाम उचरै इन विद प्राणी दुत्तर तरै देख अमृत करतार पाए संसार बिरख को दोए फल लाए आपे करता करे कराए जो तिस पावै तिसै खुआए नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मनह करे अपना पाणा आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई ज्यों पा

भी लोभ लुभाना राम विसार बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेव रांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह दे शरीरा हौ मैं रोग कठन तन पीरा गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया कर कृपा गुर रोग गवाया चार नदियां अग्नि तन चारी तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वड भागी तारे जन नानक उर हर अमृत धारी।

हर मन माहि मर मर जम्मह पी मर जाहि से जन जीवे जिन हर मन माहि साच सुमल है साच सुमाहि रहाउ हर ना सेवह ते हर ते दूर दसंतर भवह सिर पावह धूर हर आपे जन लिए लाए तिस सदा सुख है तिल ना तमाए नदर करे चूकै अभमान साची दरगाह पावै मान हर जियो वेखै सद हजूर गुर कै शब्द रहया परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सद संभाल दर साचै पत स्यों घर जाए नानक नाम वडाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मन ते होए एको वेखै और ना कोई दूजै लोकी बहुत दुख पाया।

तौ जग जीवन वसै मन आए, भगत करे सद वेखै हजूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर, इस भगति का कोई जाने पियो, सब मेरा प्रभ आत्म देव, आपे सतगुर मेल मलाई, जग जीवन स्यो आप चित लाई, मन तन हरिया सहज सुपाई, नानक नाम रहे लिव लाई, बसंत महला तीजा, भगत वचल हर वसै मन आई, गुर कृपा ते सहज सुपाई, भगत करे विचो आप खोए, तद ही साच मलावा होए, भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार, गुर कै हित साचे प्रेम प्यार रहाउ, भगत करे सो जन निर्मल होए, गुर शब्दी विच

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा हुए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए, होर

तीजा बनस्पत मौली चढ़िया बसंत इहु मन मौलिया सतगुरु संग तुम साच त्यावो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाऊ इत मन मौलिया भया आनंद अमृत फल पा।

वारे आप आई, गुर शब्द बिटहो बल जाई, गुर सलाही सदा अपना पाई, गुर चरणी चित लाई, मेरे मन राम नाम चित लाई, मन तन तेरा हरिया हुए, एक हर नामा फल पाए रहाओ, गुर राखे से उबरे पाई, हर रस अमृत पियाई, विचों हो मैं दुख उठ गया पाई, सुख बुठा मन आई, तुरे आपे जिन्ना नु बख्शियो नु पाई, शब्दे लयन मलाई, तूड़ तिन्ना की अकुलिया पाई, सत संगत मेल मलाई, आप कराए करे आप पाई, जिन हरिया किया सब कोए, नानक मन तन सुख सद वसै पाई, शब्द मलावा होए, राग बसंत महला चौथा कर पहला एक तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ज्यों पसरी सूरज किरण ज्योत, त्यों घट घट रमैया ओत पोत, एको हर रविया सरब थाए, गुर शब्दी मिलिया मेरी माए रहाओ, घट घट अंतर एको हर सोए, गुर मिलिया एक प्रगट होए, एको एक रहिया भरपूर, सागत नर लोभी जान है दूर, एको एक वरतै हर लोए, नानक हर एको करे सो होए, बसंत महला चौथा, रैन दिनस दोए सदे पए, मन हर सिमरहु अंत सदा रख लए, हर हर चेत सदा मन मेरे, सब आलस दुख पांच प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ केरे रहाओ, मनमुख फिर हों मैं मुए, काल दैत संघारे जमपुर गए, गुरमुख हर हर हर लिव लागे, जन्म मरण दो दुख भागे, भगत जना को हर कृपा तारी, गुरु नानक तुठा मिलिया बनवारी, बसंत हंडोल महला चौथा घर दूजा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, राम नाम रतन कोठड़ी, गढ़ मंदर एक लुकानी, सतगुर मिले तां खोजिए, मिल ज्योति ज्योत समानी, माधो साधु जन देहो मलाई, देखत दर्स पाप सब नासह, पवित्र परम पद पाए रहाऊ, पांच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे, तन साबत रास उबरिया, पाखंड भरम उपाव कर थाके, हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख पुरख पत पाया।

नानक शांत होवै मन अंतर, नित हिरदय हर गुण गावे। बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई। हम कीरे किरम तुम मनशे, हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा। गुर सत गुर चरण हम बनशे, गोविंद जीओ सत संगत मेल कर कृपशे। जन्म जन्म के किल विक मन भरिया, मिल संगत कर प्रभ हमशे रहाओ। तुमरा जन जात अव जाता, हर जप्यो पतत पवीसे। हर कियो सगल भवन ते ऊपर, हर सोभा हर प्रभ दिन से। जात अजात कोई प्रभ ते आवे, सब पूरे मानस तिन से। धन वड्डे वड पूरे हर जन, जिन हर धारियो हर उरसे। हम ढींदे ढीम बहुत अथ पारी, हर धार कृपा प्रभ मिलसे। जन नानक गुर पाया हर तूठे, हम किए पतत पवीसे। बसंत हंडोल महला चौथा, मेरा एक खिन मनुआ रह ना सके। नित हर हर नाम रस गीदे, ज्यो बारक रसक परयो थन माता। थन काढे बिलल बलीदे, गोविंद जीओ मेरे मन तन नाम हर बीदे। वड्डा भाग गुर सत गुर पाया, विच काया नगर हर सीधे रहाउ। जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीदे। ज्यो जल कमल प्रीत अत भारी, बिन जल देखे सुख लीदे। जन जपयो नाम निरंजन नर हर, अपदेश गुरु हर पीदे। जन्म जन्म की होमै मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्मना बिचरहो ठाकुर, तुम पैज रखो हो अपनीदे। हर भावै सुन बिनो बेनती, जन नानक सरण पवीदे। बसंत हंडोल महला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवै। तिल घर नहीं वासा पाईऐ, गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो। घर मंदर आन वसाईऐ, गोविंद जीओ सत संगत मेल हर त्याईऐ। हो मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाज लगाईऐ रहाउ। घर रतन लाल बहुमानक लादी, मन भ्रमया लह ना सकाईऐ। ज्यो ओडा कूप गोहज खिन काढ़ै, त्यों सतगुर वस्त लहाईऐ। जिने ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाईऐ। जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदलै जाईऐ। मद सूदन हर धार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाईऐ। जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाईऐ। बसंत हंडोल महला चौथा, आवन जान भया दुख बिखिया।

दयाल नाम जपत होवत निहाल मेरे प्रीतम कारण करण योग हौ पावू तुम ते सगल थोक रहाउ नाम जपत होवत उधार नाम जपत सुख सहज सार नाम जपत पत सोबा होई नाम जपत बिघन नाही कोई जा कारण ए दलभ दे

कर दया मलावो किसै मोहे। मेरे प्रीतम प्राण आधार मन, जियो प्राण सब तेरो धन रहाओ। जा को खोजह सुर नर देव, मुन जन सेख ना लह भेव। जा की गतमित कही ना जाए, घट घट घट घट रहया समाए। जा के भगत आनंद मै, जा के भगत को नाही खै। जा के

मीन अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम थोरे तुम बहुत मूचा जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर होहे फिर डान ना लागे तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे एवड भाग होहे जिस प्राणी।

जिसके तारे तरन आकाश कट कट जिसका है परगास जिस सिमरत पतत पनीत होए अंत काल फिर ना रोए सगल धर्म मह उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिसको चाह है सुर नर देव संत सभा की लगो सेव आद पुरख जिस की आदान तिसको मिलिया हर निधान तिसकी गत मिट कही ना जाए नानक जन हर हर त्याय बसंत महला पंजवा मन तन भीतर लागी प्यास गुरदयाल पूरी मेरी आस किल विख काटे साध संग नाम जपयो हर नाम रंग गुर प्रसाद बसंत बना चरण कमल हृदय उरतारी सदा सदा हर जस सुना।

जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद कट कट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करन हार, ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लगो।

प्रभु आप रखी, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देश दसंतर रहे ताई, किरत ओना का मिटस नाही, वे अपना बीजिया आप खाए, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुँच ना सकस कोए, प्रभ दास रखे कर जतने आप,

पंजवां गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर चेते आवे बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुर मिल नानक खसम ते आया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल मही अल रव रह।

सदब संत गुरपुरे की सरनी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाउ, सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ, नानक भगतां।

फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागी चरण कमल पागी तुम मिलो हो प्रभ सुभागी हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले एक रहे सूख कठूले बसंत रुत आई पर फूल ता रहे अब कलू आयो रे एक नाम बोवहो अन रूत नाही नाही मत परम भूलो गुर मिले हर पाई जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला पंजवा घर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए इकत्तर मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करहो लिवलाई हर नामे के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विछाई इन बिद

कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो, सत करहो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल हर प्यारी, उठ इशनान करहो प्रभाते, सोए हर अरादे, बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर, सुख सहज सेती घर जाते, हर आपे खेलै आपे देखै, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेलै, सो जिन बाजी घर आया।

बसंत हंडोल महला पंजवां। मूल ना बूझै आप ना सूझै, भरम व्यापी अहं मनी। पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी, मोहे निस्तार हो निर्गुणी। रहाउ ओपत परलो प्रभ ते होवै, एह बिचारी हर जनी। नाम प्रभु के जो रंग राते, कलम है सुखिये से जनी। अवर अपाओ न कोई सूझै, नानक तरियै गुर बचनी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग बसंत हंडोल महला नौवा। साधो ए तन मिथ्या जानो, जा भीतर जो राम बसत है। साचो ताहे पछानो रहाओ, एहो जग है संपत सुपने की। देख कहां ऐडानो, संग तिहारै कछु ना चालै। ताहे कहां लपटानो, उस्तत निंदा दो पर हर। हर कीरत उरियानो, जन नानक सब ही मैं पूरन। एक पुरख भगवानो, बसंत महला नौवा। पापी ही है मैं काम बसाए, मन चंचल याते गहयो ना जाए। रहाउ जोगी जंगम अर सन्यास, सब ही पर डारी एह फास। जेह जेह हर को नाम समार, ते भव सागर उतरे पार। जन नानक हर की सरनाए, दीजै नाम रह गुण गाए। बसंत महला नौवा, माई मैं धन

भागी उपजियो निर्मल ज्ञान लोभ मोह एह परसना साकै गही भगत भगवान जन्म जन्म का संसार चूका रतन नाम जब पाया तृष्णा सकल बनासी मनते निज सुख माहि समाया जान को होत दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावे कहो नानक एह बिद की संपै को गुरमुख पावे बसंत महला नौवा मन कहां बसारियो राम नाम तन बिनसै जम स्यो परै काम रहाउ इहो जग तुएं का पहार तै साचा मानिया केहे बिचार तन दारा संपत गृहे कश संग ना चालै समझ ले एक भगत नारायण होए संग कहो।

पुत्री राज कुवार, नाम भणहु सच दूत सवार, प्रियो सेवहो प्रभ प्रेम आधार, गुर शब्दी बिख त्यास निवार, मोहन मोहे लिया मन मोहे, गुर कै शब्द पछाना तोहे, नानक ठाडे चाह प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा धार, बसंत महला पहला, मन भूलो भरम से आए जाए, अत लुब्ध लुभानो बिखम माए, नह अस्थर दिसै एक पाए, ज्यों मीन कुंडलिया कंठ पाए, मन भूलो समझस साच नाए, गुर शब्द बिचारे सहज पाए, रहाओ मन भूलो परमस पवर तार, बिल बिरथे चाहे बहु बेकार, मैगल ज्यों फासस काम हार, कड़ बंद

लीन सब दुख सखाई गुण है बीन मन चले न जाई ठाक राख बिन हर रस राते पत ना साख तू आपे सुरता आप राख तर धारण देखे जाने आप आप भलाए।

कदे नाही, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे, तू मोटो ठाकर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे। बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर हुए, एकत राचे पर हर दुए, दूर दर्द मत अमृत खाए, गुरमुख बूझे एक समाए, तेरे दर्शन को केती बिल लाए।

तारा, दुख घणो मरिए करतारा, बिन प्रीतम को करे ना सारा, सब उत्तम किसे आखो ही ना, हर भगती सच नाम पतीना, रहाउ औखद कर थाकी बहु तेरे, क्यों दुख चूकै बिन गुर मेरे, बिन हर भगती दुख कनेरे, दुख सुख दाते।

बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अंदुली कार मन मुख पर मैं मज गुबार माने अंदुला अंदुली मत लागे गुर करनी बिन भरम ना पागे रहाउ मन मुख अंदुले गुरमत ना पाई पशु भय अभमान ना जाई लख 84 जनते अपाए मेरे ठाकुर पाणे सिर जसमाए सगली भूलै नहीं शब्द अचार सो समझै जिस गुर करतार गुर

हर पवै नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नदर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखायाई वारी देवल देवतियां कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी कर कर मिया सब ना जिया बोली अवर तुम्हारी जे तू मीर महीपत साहेब कुदरत कौन हमारी चारे कुंट सलाम करहेंगी कर कर सिफत तुम्हारी तीरत सिमरत पुन दान किशलाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वड्याई मेका घड़ी संभाली बसंत हंडोल कर दूजा महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वसिया हिन पल फिर ना रहाई अनक अपाव जतन कर थाकी बारंबार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत कार्याण सतगुर मिले ता पूरा पाईए पज राम नाम निशान रहाउ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हुआ रसिया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया एक गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमति कर पाया दीना दीन दयाल भये हैं ज्यों कृष्ण बिदर घर आया मिले उस दामा पावनी तार सब किसे आगे दालद पंज सम

नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाऊ गण का उदय हर कह तोत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दाल पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदारे उदास्त पाय रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल भई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास जय।

भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना विचार्यो कोए, एह बिद देख मन लगा सेव, कबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जियो बसह संग, रविदास त्याए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवां, अनक जन्म भ्रमे जो न माहे, हर सिमरन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड, गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत, साच शब्द कर सदा प्रीत, रहाउ संतोख न आवत कहूं काज, धूम बादर सब माया साज, पाप करम तव नह संगाई, बिख का माता आवै जाई, हौ हौ करत बदे बेकार, मोह लोभ डूबो संसार, राम क्रोध मन वस किया, सुपन नाम ना हर लिया, कब ही राजा कब मंगन हार, दुख सुख बांधो संसार, मन उधरन

अपार कर कृपा लड़ले हो लाई नानक दास प्रभ की सरनाई बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याई कै हो हरिया पहाई कर्म लखन तै पाई है एह रुत सुहाई वण त्रिण त्रे पवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुखी उपजै।

चरण जपायन विच दयो खुड़वा रोग सोग सब मिट गए नित नवा नरोआ दिन रहन नाम त्याईंदा फिर पाए ना मोआ जिसते उपजिया नानका सोही फिर हुआ कितों उपजै कह रहे कह माही समावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन त्याईन सुन नित से भगत सहावे अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे बसंत बाणी भगता की कबीर जी घर पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया आत्म परगास राजा राम मौलिया अंत पाए जह देखो तह रहया समाए रहाओ दुतिया मौले चार बेद सिमरत मौली स्यो कतेब शंकर मौल्यो जोग त्यान कबीर को स्वामी सब समान पंडित जन माते पढ़ पुराण जोगी माते जोग त्यान सन्यासी माते अहमेव तपसी माते तप कै पेव सब मद माते को न जाग संग ही चोर कर मुसन लाग रहाओ जागै सुख देओ अर अकूर हनुमंत जागै तर लंकूर शंकर जागै चरण सेव कल जागे नामा जय देव जागत सोवत बहु प्रकार गुरमुख जागै सोई सार इस देही के अधिक काम कह कबीर पज राम नाम जोए खसम है जाया पूत बाप खेलाया बिन श्रवणा खीर पिलाया देखो लोगा कल को पाओ सुतमक लाई अपनी माओ रहाओ पगा बिन हुरिया मारता बदने बिन खिर खिर हासता निंद्रा बिन नर पैसो है बिन बासन खीर बलोए बिन अस्थन गऊ लवेरी पेंडे बिन बाट कनेरी बिन सतगुर बाट न पाई कहो कबीर समझाई प्रहलाद पठाए पढ़न साल संग सखा बहु लिए बाल मोको कहां पढ़ाव से आल जाल मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम रहाओ संडे मरके कहो जाए प्रहलाद बलाए बेगताए तू राम कहन की छोड़ बान तुझ तुरत छाऊ मेरो कहो मान मोको कहां सताव हो बार बार प्रभ जल थल गिर किए पहार एक राम ना छोड़ो गुरहगार मोको काल जार पावे मार डार काड खड़ग को प्यो रिसाई तुझ राखनहारो मोहे बताए प्रभ थंब ते निकसे कै विस्थार हरनाक्ष छेदे हो नख बेदार उए परम पुरख देवाद देव भगत हेत नरसिंह पेव कह कबीर को लखै ना पार प्रहलाद उधारे अनक बार इस तन मन मधे मदन चोर जिन ज्ञान रत

दारण दुख सहयो न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहां बसाए रहाओ। सनक सनंदन शिव सुकाद, नाभ कमल जाने ब्रह्माद, कब जन जोगी जटा तार, सब आपन अवसर चले सार। तू अथाह मोहे था नाही, प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे, मोरो जन्म मरण दुख आस तीर, सुख सागर गुण रौ कबीर। नायक एक बनजारे पांच, बरद पचीसक संग काच, नौ बहिया दस गुण आहे, कसन बहतर लागी ताहे। मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं काज, जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज। रहाउ सात सूत मिल बनज कीन, कर्म पावनी संग लीन, तीन जगाती करत रार, चलो बनजारा हाथ चार। पूंजी हैरानी बनज टूट, दह दिस टांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता भरम पाज। बसंत हिंडोल कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माता जूठी पिता भी जूठा, जूठे ही फल लागे, आवह जूठे जाहे भी जूठे, जूठे मरह अभागे।

बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे साची परे बेचारा। रामानंद जी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कत जाइए रे घर लागो रंग मेरा चेतना चले मन भयो पंग रहाउ। एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चोआ बहु सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए।

कह कैसे संत जना राम नाम ना छाडे गंगा गया गोदावरी संसार के काम नारायण सो प्रसन्न होए।

हौ तार भी ना जानो मोको बाहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लै कर हाकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाकती सर धोवन चाली लाड।

अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुझे सुजनता कछु नाही, पहरावा देखे ऊब जाए। गर्भ

साध न फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संता पै रहाऊ। जब लग दर्शन परसे प्रीतम तब लग भूख प्यासी। दर्शन देखत ही मन मानिया जल रस कमल बिगासी। ऊनम कनहर गरजै बरसै कोकिल मोर बैरागै। तरवर बिरख बिहंग पोयंगम घर पेर तन सोहागै। कुचिल करूप कुनार कुलखनी फिरका सहज ना जानिया। हर रस रंग रसन नहीं तृप्ती दुर्मत दुख समानिया। आए ना जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे। नानक प्रभ ते सहज सुहेली प्रभ देखत ही मन धीरे। सारंग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा। सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण अधारा। रहाऊ इन गिद हर मिलिया वर कामन तन सुहाग प्यारी। जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन माने अभमान ना ताको हिंसा लोभ बसारे। सहज रवै वर कामन पिरकी गुरमुख रंग सुवारे। जारो ऐसी प्रीत कटंब सलबंदी माया मूप सारी। जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुबदा कर्म बेकारी। अंतर रत्न पदार्थ हित को दुरै न लाल प्यारी। नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी। सारंग महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संत जना की हम धूर मिल सत संगत परम पद पाया। आत्म राम रहया भरपूर रहाऊ। सतगुर संत मिले शांत पाईए किल विख दुख काटे सब दूर। आत्म ज्योत पई परफूलत पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड्डे भाग सतसंगत पाई हर हर नाम रहया भरपूर। अठ सत तीरथ मज्जन किया सत संगत पग लाए धूर। दुर्मत बिकार मलीन मत होशी हिरदा कसुद्ध लागा मोह पूर। बिन कर्मा क्यों संगत पाईए हों मैं व्याप रहया मन चूर। हो दयाल कृपा कर हर जी मांगो सत संगत पग धूर। नानक संत मिले हर पाईए जन हर पेटिया राम हजूर। सारंग महला चौथा गोविंद चरणन कौ बलिहारी। भवजल जगत न जाई तरना जप हर हर पार उतारी। रहाऊ हिरदय प्रतीत बनी प्रभ केरी सेवा सुरत बिचारी। हर दिन राम नाम जप हिरदय सर्ब कला गुणकारी। प्रभ अगम अगोचर रव्या सर्ब थाई मन तन अलख अपारी। गुर कृपाल भये तप पाया हिरदय अलख लखारी। अंतर हर नाम सर्ब धरनी तर साकत को दूर भया अहंकारी। तृष्णा जलत न कबहु बूझ जुए बाजी हारी। उठत बैठत हर गुण गावह गुर किंचित कृपा तहारी। नानक जिनको नदर

गुरमुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाउ। जो जन दीन भये गुर आगै तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुर आगै गुर कै शब्द सुवारी। हिरदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बिचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया ओए पावह मूख दुवारी। सतगुर पुरख अचल अचलह मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। तिस आगै जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मनमुख ब्रह्म दूजै भाए लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवै ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रविया स्वामी सर्व कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सार महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिवलाई। रहाउ गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाय। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति जोत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्त शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाए। मत प्रगास भई हर त्याया ज्ञान तत् लिवलाई। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाद लगाए। हिरदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाए। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाए। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाए। नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाए। सार महला चौथा मेरा मन राम नाम मन मानी। मेरा ही रह सतगुर प्रीत लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो जन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी। हर कह

हर हर पानी पंच जना गुरवस गत्याणी तौ उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा तहारी हर राम नाम समानी। सारंग महला चौथा जप मन राम नाम पढ़ सार राम नाम बिन थिर नहीं कोई

हुक्म अपनी कर जानो साथ साथ जाहो सिर पार तिल तिल पल पल औद फुन काटे बूझ ना सके गवार सो किश करे जे साथ ना चाले यो साकत का आचार संत जना कै

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। तिस जन के हो मल मल धुआं पाऊं, हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राउ। जन नानक को कृपा भई, हर की कृपा भई, जगदीश्वर कृपा भई। मैं अनदिनो सद सद सदा, हर जपिया हर नाउ। सारंग महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभव। मेरे मन अनदिनो त्याए, निरंकार निराहारी रहाउ। हर दर्शन को कोट कोट तेतीस, सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी। किन जन की सेवा थाए पई, जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले, ते उत्तम भगत भले।

तेरी मित नहीं पाईए, सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत, हर साधन स्यों लिवलाऊ। जन नानक पाया है गुरमत, हर देहो दर्श मन चाओ। सारंग महला पंजवां, हर जियो अंतर जामी जान। करत बुराई मनुख ते छपाई, साखी भूत पवान रहाओ। वैसनो नाम करत खट करमा, अंतर लोभ जुठान। संत सभा की निंदा करते, डूबे सब अज्ञान। करह सोम पाक हिरह पर।

प्रभु पलाए पूजड पाए निफल सब करमान सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की

सतगुर बचन लहू रहाउ। कुआर कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते शुद्ध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लो बजियो, मूर्त करी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब यो हो भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जले मह डारियो, अम्बे अम्ब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

ठाकर छोड़ह दास भजह आई मस्त जड़वत की न्याई ज्यो तस्कर दरसा नेहा आन अपाओ न को सूजै हर दासा सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटिया जो सगले अवगुण मेट तरहा सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रिय बहुत बरागेव अनक पात अनूप रंग रे तिन स्यो रुचै न लाग्यो रहाओ निसबासर प्रिय प्रिय मुख टेरो नींद पलक नहीं जाग्यो हार कजर बस्तर अनक श्रृंगार रे

सब मन तने अर्पण शीस चरण पर राखियो चरण बंदना मोल दासरु देव साध संगत अरदागियो करहु कृपा मोहे प्रभु मलावहु निमुख दर्स पे खागियो दृष्ट भई तब पीतर आयो मेरा मन अन दिन सीत लागियो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सारंग महला पंजवां माई सत सत सत हर सत सत सत साधा बचन गुरु जो पूरै कहियो मैं शीक गांठरी बांधा रहा निसबासर नखियतर बनासी राव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगु एक साध बचन अटलादा हंड बनासी जेर बनासी उत्पुज सेत बनाधा चार बनासी खटह बनासी एक साध बचन निहचलादा राज बनासी ताम बनासी सातक पी बेनादा दृष्ट मान है सगल बनासी एक साध बचन आघादा आपे आप आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई कहीं पांतरे प्रभ नानक गुर मिल लादा सार महला पंजवा मेरा मन बास गो गुर गोबिंद जहां सिमरन भयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाउ जहां बीसरे ठाकुर प्यारू तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महाप्यान उदयांद जहां कीर्तन साध संगत रास तह सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीवै सगली औद बिरथानंद एक निमख गोविंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद सरन सरन सरन प्रभु पावो दीजै साध संगत किरपानंद नानक पूर रहयो है सर्व मैं सगल गुणा बिद जानंद सार महला पंजवा अब मोहे राम भरोसो पाए जो जो सरन परयो करना निद ते ते भवै तराई रहाओ सुख सोयो अर सहज समायो सहसा गुरह गवाए जो चाहत सोई हर कियो मन बाचत फल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए करनी चलो मार्ग ठाकुर कह रसना हर गुण गाए देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल अमोल नाम हर छोड़।

आय सारंग महल्ला पंजवा ओए सुख का सियो बरन समावत आनंद बनोद पेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाउ बिसम पई पेख बिस्मादी पूर रहे कृपावत पियो अमृत नाम अमोलक ज्यो चाक गूंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राखियो बूझ न आवत जावत जा को हृदय प्रगास भयो हर वाकी कही न जाए कहावत आन उपाव जेते किश कही है तेते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगट्यो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंकार अबनासी अतुल्यो तुल्यो न जावत कहो नानक अजार जिन जरिया किसी को बन आवत सारंग महला पंजवा बिखई दिन रैन इव ही गुदारे गोविंद ना भजै अहम बुद्ध माता जन्म जुवै ज्यो हारै रहाउ नाम अमोला प्रीत ना तिस सियो पर निंदा हितकारै छापर बांध सवारै तृण को।

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ डाल पर ठांडो खाए खाए मुश्कार है गिरयो जाए रसातल परयो सिति सिति सिर भार है निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके ग्वार है कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवां अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हिरदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाऊ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अन्न अंधारा जैसी धरती साधे बहु बिद बिन बीजे नहीं जामे राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभमान नीर बलोवे अत चरम पावे नैनू कैसे रिसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो पराप।

तिन हर हर अजर जरन हर रसह अगाने सहज समानी मुख ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उधरन सारंग महला पंजवां गायोरी मैं गुण निद मंगल गायो भले संयोग भले दिन अवसर जो गोपाल रिझायो रहाओ संतह चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत धरे हाथा साध है मंत्र मोर लो मनुआ तांत

यह अघावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की ठाहरने की ध्यान को वाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन मान को खोज लहियो नान।

मंगल गोविंद गाय, रोग सोग तेरे मिट है सगल अग, निमख ही है हर नाम त्याए रहाओ, छोड़ सियानप बहो चतराई, साधु सरनी जाए पाए, जो होए कृपाल दीन दुख भंजन, जमते होए धर्म राय, एक सबिन नाही को दूजा, आन ना बियो लवे लाए, मात पिता पाई नानक को, सुख दाता हर प्राण साए, सार महला पंजवा, हर जन सगल उधारी संग के, पये पनीत पवित्र मन, जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ, मार्ग चले तिन्नी सुख पाया, जिन स्यों गोष्ट से तरे, बूढ़त कोर अंध कूप में है, ते साधु संग पार परे, जिनके भाग बड़े हैं पाई, तिन साधु संग मुख जोरे, तिनकी तूर बांचे नित नानक, प्रभ मेरा कृपा करे, सार महला पंजवा, हर जन राम राम राम त्याए, एक पलक सुख साध समागम।

पतत के पातक उत्तर है, हर नामा उर धार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, ताका जन्म मरण दुख नासा, कहो नानक पाई है वड भागी।

मान करो अब मान बोलो भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ निकट सुनो हर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुरलाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसर स्वामी जानो कोट दिन सलाख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सार महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहिया दे नाओ बलिहारी रहाओ चौहो बिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राख्यो कर अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किस मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सार महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते कर्म कारण समरथ स्वामी हर एकस ते मेरी गाते रहाओ देखे नाना रूप बहुरंगा अन नाही तुम भांते देहे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते भ्रमतो भ्रमतो हार जो परयो तौ गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बिहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लभ दियो है हर टेका गुर दयाल पये सुखदाई अंधलै मानक देखा रहाउ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध बिगास विवेका ज्यों जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकुर पये एका जहते उठ्यो तह ही आयो सब ही एकै एका नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई प्राणपति हर समका सारंग महला पंजवा मेरा मन एकै ही प्रिय मांगै पेखायो सर्ब थान देश प्रिय रोम ना समसर लागै रहाउ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन तिन स्यों दृष्ट ना करै रुचांगै हर रस चाहै प्रिय प्रिय मुख तेरै जो अल कमला लो भांगै गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सर्बांगै गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो मिलहु सखा गल लागै।

तुम ही सुग्र सुजाना सगल जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम है शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा बिसरे ओ तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसाओ हर पाया सतसंगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुरबस कर दीना भोगो भोग नसंगा निरपौ भए नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन कौ कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवन हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी रहाओ छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुड़ सुजानी जे घर मह बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बास आयो भगत बचन जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन मा

दर्शन देख पय मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाउ बिखम थान बहुत बहुत धरिया अनक राख सो रूपता बिखम गार कर।

फूल बेख खाई रहाओ। प्रभ सुंदर चतुर अनूप बधाते, तिस स्यों रुच नहीं राई। मोहन स्यों बावर मन मोहयो, झूठ ठगौरी पाई। भयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन स्यों बन आई। सगल निदान करै मह पाए, कहो नानक जोत समाई। सारंग महला पंजवा, वंग प्रिय प्रीत चीत पहलरिया। जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर, तौ मैं साज सिंगरिया रहाऊ। हम भूले हैं तुम सदा अभूला, हम पतत तुम पतत उधरिया। हम नीच बिरख तुम मैलागर, लाज संग संग बसरिया। तुम गंभीर तीर उपकारी, हम क्या बपरे जंतरिया।

कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराध खिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले थिर नानक राजया सार महला पंजवा प्रभ मेरो इते उत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण।

की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमक नहीं रह सकी, बिसरना कब हूं जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते, मगन पए लिवलाई। सारंग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाइए, आसना अवर काहू की कीजै, सुखदाता प्रभ त्याई रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसह कर, तिस ही सरनी पाइए, किसह त्याग मनुख जे सेव हो, तो लाज लोन होए जाइए। एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मेल मत बुद्ध पाइए, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया, सगल चुकी मोहताइए। सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे, दृष्ट न लियावो अवर काहू को, मान महत प्रभ तेरे रहाओ। अंगीकार कियो प्रभ अपने, काड लिया बिख केरे, अमृत नाम औखद मुख दीनो, जाए पया गुर पैरे। कवन उपमा कहो एक मुख, निर्गुण के दा तेरे, काट सिल्क जाओ अपना कीनो, नानक सुख कनेरे। सारी महला पंजवा, प्रभ सिमरत दू

किन्हीं बाप महतारी सर्ब थोक नानक गुर पाए पूरन आस हमारी सारंग महला पंजवा झूठो माया को मदमान त्रोहो मोह दूर कर बपरे संग गोपाल लह जान रहाव मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध चतुराई मिथ्या भोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संत है की सारान मांगन मांगो हुए अचिंता मिल नानक के हर प्राण सारी महला पंजवा अपनी इतनी कशु न सारी अनक काज अनकता भरता उर्जो आन जंजारी रहाव देव सचार के दिसह संगी ऊहा नाही जह पारी तिन स्यो राच माच हित लायो जो काम नहीं गावारी हौ नाही नाही किश मेरा ना हमरो बस चारी कर्ण करावन नानक के प्रभ संतन संग उधारी सार महला पंजवा मोहनी मोहत रह ना होरी साधक सिद्ध सगल की प्यारी टुटे ना काहू तोरी रहाव खट शास्त्र उचरत रसनागर तीर्थ गमन ना थोरी पूजा चक्र बर्त नेम तपिया ऊहा गैल ना शोरी अंध कूप मह पतत होत जग संत हो करहो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पूरी सारी महला पंज।

एक की आपकी ओ बंधान आदि जगाद सेवक की राखै नानक को प्रभ जान। सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सखा हर प्राण मन तन जियो पिंड सब तुमरा।

अंतर जामी जान, जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान। जन का संग पाइए वडभागी, नानक संतन कै कुरबान। सारंग महला पंजवा, करहो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ कारण करना, टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिखई तुम तारे, समत संग तुम्हारे पाई। अनक जोन भ्रमते प्रभ बिसरत, सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै, ते ते पतत पनीता। कहो नानक जाके वड भागा, तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजवा, ठाकुर बिनती करन जाने आयो। सर्ब सुख आनंद सहज रस, सुनत तुहारो नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर, जस सब मैं जा को छायो।

रहाओ। समझ अचेत चेत मन मेरे, कथी संतन अकथ कहानी। लाभ लै हो हर हृदय अराध हो, छुटकै आवन जानी। उदम सकत सियाणप तुमरे, देहे ता नाम बखानी। से भगत भगत से लागे, नानक जो प्रभु पानी। सारंग महला पंजवां, तनवंत नाम के बनजारी। सांझी करहो नाम तन खाट हो, गुर का शब्द विचारे रहाओ। छोड़ हो कपट होए निर्वैरा, सो प्रभ संग निहारी। सच तन बन जो हो, सच तन संचो हो, कबहू ना आव हो हारी। खात खर्चत किसन खुटत नाही, अगंत भरे भंडारी। कहो नानक सोबा संग जाव हो, पार ब्रह्म कै द्वारी। सारंग महला पंजवां।

सर्व प्रतपालक सर्व कटा आधारा, कोई न जाने तुमरी गत मित आपे है एक पसारा। साध नाव बठावो नानक भव सागर पार उतारा। सारंग महला पंजवा, आवे राम सरन बड़ भागी, एक सबिन किश होर न जाने। अवर अपाव त्यागी रहाउ, मन बच क्रम अराधे हर हर, साध संग सुख पाया। अणद बनोद कथ कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकि उत्तम बाणी। साध संग नानक निस्तरी है, जो राते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवा, जाते साधु सरण गही, शांत सहज मन भयो परगासा। बिरथा कछ न रही रहाउ, हो कृपाल नाम देहो अपना। बिनती एह कही, आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत, पायो लाभ सही। जहते उपजेओ तही समानो, साई बस्त आही। कहो नानक परम गुरु खोयो, ज्योति ज्योत समही। सारन महला पंजवा, रसना राम को जस गाओ, पान स्वाद विसार सगले, भलो नाम सो।

निर्मल बहुल जोन ना आओ, जियो प्राण आधार तेरा, तू न थावे थाओ, सास सास संभाल हर हर, नानक सद बल जाओ। सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित ध्याओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत,

दू पख पूरन पाइय सुख विश्राम। सोदत सोदत तत बिचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सगल बिद उरी। सारी महला पंजवा साचे।

राम को बल होए सगल मनोरथ पूर्ण ताहू के दुख ना व्यापै कोई रहाउ। जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा तिस सोए उद्म करो दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए दान दे नानक अपने को चरण जीवा संतत होए। सारु महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करहु कृपा गोपाल बीठले बिसरना कब ही जाए रहाओ। मन तन धन सब तुम।

तेरी सरनाई जो पावै तिवै चलाए। सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार आन काम विकार माया सगल दिसह शार रहाओ। ग्रह अंध कूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार। पतत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार। सारंग महला पंजवा विराजित राम को प्रताप आद बियाद उपाद सब नास्ती।

काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल तै काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवा आतुर नाम बिन संसार त्रिपत न होवत कुकरी आसा इत लागो बिखिया चार रहाओ पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है की रावार नानक दास दर्श प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवा मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई पव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवा रमण को राम के गुण बाद साध संग त्याय परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद धुन बाणी बहुर न पये बिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महाबज्जर बिख ब्यादे सिर उठाई पोट उगर गइया खिनह पीतर जमह ग्रासे झूट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कछ ना लागै फेट सारंग महला पंजवा अंधे खावह बिसु के गताक नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पुख है माया गैया हाट किल बिख करत करत पछताव है कबू ना साक है शांत निंदक जमदूती आए संघारेओ देव है मूड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाट सारंग महला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच जानकार राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाव उसका कहया कोई ना सुनी कहीं ना बैसन पावे इहां दुख आगे नरक पुंचे बहु जोनी परमावे प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी कीता अपना पाया नानक शरण निरपहु करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवा तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात है अंत प्रतिहार रहाओ सांत सूख न सहज उपजे यह इस व्यवहार आप पर का कश

रहाओ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चल नीमत राई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निद पाही। सारी महला पंजवा, निभे नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निद तन, बिखे माहे अलेप रहाव। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रत्न जन्म अपार जीत्यो।

मन मोहिउ अचर्जता के स्वाद रहाउ। मात पिता बंद पहै सोई मन हर को अहलाद। साध संग गाए गुन गोबिंद बिन सेउ सब परमाद। डोरी लपट रही चरन संग ब्रह्म पै सगले खाद। एक आधार नानक जन किया

जानो दुतिया भाव सब लूह रहाओ त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खूह दर्स प्यास मेरा मन मोहयो काडी नरक ते तुहू संत प्रसाद मिलो सुखदाता बिनसी हूं मैं हूं राम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जूहू सारंग महला पंजवा बिनसे काच के व्यवहार राम भज मिल साध संगत एह जग मह सार रहाव ईत ऊत ना डोल कतहू नाम हिरदय धार गुर चरण बोहत मिलियो भागी उतरियो संसार जल थल मही अलपूर रहो सर्वनाथ अपार हर नाम अमृत पियो नानक आन रस सब खार सारी महला पंजवा ताते करन पलाह करे महा विकार मोह मद मातो सिमरत नाही हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे सफल दे तन ओए जन्मे प्रभ कै संग रले चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध सब ऊपर साध भले नानक दास धूर जन बांचै उदरह लाग पले सारंग महला पंजवा हर के नाम के जन कांखी मन तन बचन एही सुख चाहत प्रभ दर्श देखह कब आखी रहाओ तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी गत तेरी जाए न लाखी चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्बस अंतर राखी वेद प्राण सिमरत साधु जन ए बाणी रसना भाखी जप राम नाम नानक निस्तरी है।

महा बिख्या मद जाकी रहा कितह स्थान तू टिकन ना पावह एह बिद देखी आखी संता बिन तै कोई ना छाडिया संत परे गोविंद की पाखी जी जंत सगले तै मोहे बिन संता किने ना लाखी नानक दास हर कीर्तन राता शब्द सुरत सच साखी सारंग महला पंजवां मायरी काटी जम की फास हर हर जपत सर्ब सुख पाए बीचे ग्रस्त उदास रहाओ कर कृपा लीने कर अपने उपजी दर्श प्यास संत संग मिल हर गुण गाए बिनसी दुतिया आस महाध्यान अतवी ते काडे मार्ग संत कहियो देखत दर्श पाप सब नास्ते हर नानक रतन लहियो सारंग महला पंजवा मायरी अरे ओ प्रेम की खोर दर्शन रुचत प्यास मन सुंदर सकत ना कोई तोर रहा प्राण मान पत पित सुत बंधप हर सर्बस धन मोर त्रिग शरीर अस्त बिष्टा क्रिम बिन हर जानत होर भयो कृपाल दीन दुख भंजन परा पूर्बला जोर नानक सरन कृपा निध सागर बिन से आन निहोर सारंग महला पंजवा नीकी राम की धुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कडत होए जन्म मरण विकार अंकुर हर का पिछा देखोए परा पूर्व जिसह लिखिया बिरला पाए कोए रमण गुण गोपाल करते नानका सच जोए सारंग महला पंजवा हर के नाम की मत सार हर बसार जो आन राच है मिथन सब विस्थार रहाओ साध संगम भज स्वामी पाप होवत खार चरनार बिंद बसाए हृदय बहुर जन्म ना मार कर अनग्रह राख लीने एक नाम आधार दिन रहन सिमरत सदा नानक मुख उज्जल दरबार सारंग महला पंजवा मानी तू राम कै दर मानी साध संग मिल हर गुण गाए बिनसी सब अवमानी रहाओ तारे अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्ब सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी निकट वर्तन सा सदा सुहागन दह दिस साई जानी प्रिय रंग रंग रती नारायण नानक तिस कुर्बानी सारंग महला पंजवा त्वा चरण आसरो ईस तुम्हें पछानू साख तुम्हें संग

बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जा को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाव खात पीवत हस्त सोवत औद बिती आसार नरक उदर परमंत जल तो जमह कीनी सार पर द्रोह करत बेकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिकठ गौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारो मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारण महला पंजवा कर छेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी बिचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती।

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचिय हर संग संग खचिय जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारन महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार भेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सर्वन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे बरत संध सोच चार क्रिया कुंत निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्स नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुर गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुण गाई सारंग महला पंजवां हर हरे हर मुख बोल हर हरे मन तारे रहाओ श्रवण सुनन भगत करन अनक पातक पुनः चरण।

कलमल दुख जारी कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते राम राम सार भूत नानक तत बिचारे सारंग महला पंजवां नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी रहाव प्रीत लाए हर त्याए गुण गोविंद सदा गाए हर जन की रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कछ नाहीं त्रास सिमर अंतर जामी।

नौ परी चुनातकार सुंदर अनग पाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंध रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवां हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को पाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना।

जगत सब मिथ्या ज्यों सुपना रह नाई सारंग महला नौवा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग मह को रहन ना पावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवा मन कर कबहू न हर गुण गायो बिख्या सख्त रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहो मैं अपनी करनी जिह विद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन क्यों जीवा मेरी माई जय जगदीश तेरा जस जाचो मैं हर बिन रहन ना जाई रहाओ हर की प्यास प्यासी कामन देखो रहन सुबाई श्री तारनाथ मेरा मन लीना प्रभ जाने पीर पराई गणत शरीर पीर है हर बिन गुर शब्दी हर पाई हो दयाल कृपा कर हर जियो हर सियो रहा समाई ऐसी रबत रवो मन मेरे हर चरणी चित लाई विषम भये गुण गाए मनोहर निरपौ सहज समाई हृदय नाम सदा तुन निश्चल घटै न कीमत पाई बिन नावै सब कोई निरतन सतगुर बूझ बुझाई प्रीतम प्राण भये सुन सजनी दूत मोए बिख खाई जब की उपजी तब की तैसी रंगुल भई मन पहाई सहज समाध सदा निवहर सियो जीवा हर गुण गाई गुर कह शब्द रत्ता बैरागी निज कर ताड़ी लाई सुध रस नाम महारस मीठा निज कर तत गुसाई कह ही मन जह ही तै राखिया ऐसी गुरमत पाई सनक सनाद ब्रह्माद इंद्रादिक भगत रत्ते बन आई नानक हर बिन करी न जीवा हर का नाम बढ़ाई सारंग महला पहला हर बिन क्यों तीरै मन मेरा कोट कल्प के दुख बनासन साच दृढ़ाए निबेरा रहाओ क्रोध नवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी अनुभव बिसर गए प्रभ जाचिया हर निर्माल संगी चंचल मत त्याग भव भंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल लय बड़ भागी अपरत सिंच पये सुपर सर गुरमत साच निहाला मन रत नाम रते नेह केवल आद जुगाद दयाला मोहन मोहे लिया मन मोरा बड़े भाग लिव लागी साच विचार किल विख दुख काटे मन निर्मल अनरागी गहर गंभीर सागर रतनागर

अद कहाई एक सबिन मैं अवर ना जाना सतगुर बूझ बुझाई अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार भरे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया गुर प्रसादी अकथो कथिया कहो कहावे सोई नानक दीन दयाल हमारे अवर ना जानिया कोई सारंग महला तीजा अष्टपदियां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन मेरे हर कै नाम बढ़ाई हर बिन अवर ना जाना कोई हर कै नाम मुक्त गत पाई रहाओ शब्द पौ भंजन जम काल निखंजन हर सेती लिवलाई हर सुख दाता गुरमुख जाता सहजे रहे आसमाई भगतां का भोजन हर नाम निरंजन पैनन भगत बढ़ाई निज कर वासा सदा हर सेवन हर दार शोभा पाई मन मुख बुद्ध काची मनुआ डोले अकथ न कथे कहानी गुरमत निश्चल हर मन वसिया अमृत साची बानी मन के तरंग शब्द निवारे रसना सहज सुपाई सतगुर मिल रही है सद अपने जिन हर से ती लिवलाई मन शब्द मरे ता मुक्तो होवे हर चरणी चित लाई हर सर सागर सदा जल निर्मल।

अंतरनेह केवल हरदविया सब आत्म राम मरारी सेवक सेव रहे सच राते जो तेरे मन पाणी दुबदा महल ना पावे जग झूठी गुण अवगण ना पछाणी आपे मेल लए अकत कथिया सच शब्द सच बाणी नानक साचे सच समाणी हर का नाम बखाणी सारंग महला तीजा मन मेरे हर का नाम अत मीठा जन्म जन्म के किल विख पौ भंजन गुरमुख एको डीठा रहाओ कोट कुटंतर के पाप बनासन हर साचा मन पाया हर बिन अवरना सूजै दूजा सतगुर एक बुझाया प्रेम पदार्थ जिन घट वसिया सहजे रहे सुमाई शब्द रते से रंग चलूले राते सहज सुपाई रसना शब्द विचार रस राती लाल पई रंग लाई राम नाम ने केवल जानिया मन तृप्तिया शांति आई पंडित पढ़ पढ़ मोनी सब थाके ब्रह्म भेख थके भेख तारी गुर प्रसाद निरंजन पाया साचै शब्द विचारी आवा गौण निवार सच राती साच शब्द मन पाया सतगुर सेव सदा सुख पाई जिन विचों आप गुआया साचै शब्द सहज तुन उपजै मन साचै लिव लाई अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई एक समय सब जगतो वरतै विरला एक पछाणै शब्द मरै ता सब किश सूजै अन दिन एको जाने जिसनो नदर करे सोई जन बूजै होर कहना कथन ना जाई नानक नाम रते सदा बैरागी एक शब्द लिव लाई सारंग महला तीजा मन मेरे हर की अकथ कहानी हर नदर करे सोई जन पाए गुरमुख विर ले जानी रहाओ हर गहर गंभीर गुणी गहीर गुर कह शब्द पछानिया बहु विध कर्म करह पाए दूजे बिन शब्द बहुरानिया हर नाम नावै सोई जन निर्मल फिर मैला मूल ना होई नाम बिना सब जग है मैला दूजे परम पथ खोई क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी मैं ता बूझ ना पाई हो दयाल कृपा कर हर जियो नामो होए सखाई सच्चा सच दाता कर्म विदाता जिस भावै तिस नाए लाए गुरु द्वारे सोई बूझै

द्वारा जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़ै सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावै आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावै जिन गुरमुख साच अधारा मन मुख दूजै परम भुलाए ना बूझै विचारा आपे गुरमुख आपे देवै आपे कर कर वेखै नानक से जर थाए पए हैं

करन करावन अपाए समावन सगल सत्र पत बीठा रहाउ। राणा राउ राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो।

पावक काष्ट संगे नीर तरन कर राखे एकत कोए ना किसी ही संगे काट काट कथा राजन की चाल कर कर तुझे उमाहा जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजित समाहा जो किछ करना सो आपे करना मसलक काहू दीनी अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बडाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई मुक्त भए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिनको देख भए कृपाला तिन भव सागर तरिया हम नाने नीच तुमे बड साहिब कुदरत कौन बिचारा मन तन शीतल गुर दर्श देखे नानक नाम आधारा सारग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहू मैं नाहे अनक ब्रह्मे जाके वेद धुन करह अनक महेश बैस ध्यान धरह अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंदर उभे दरबार अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दाद खीर अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात अनक बसुदा अनक काम तेन अनक पार जात अनक मुख वेन अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड अनक बना अनक फल मूल आपह सूख में आपह असथूल अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तह चीत सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग अनक अनाहद आनंद चुनकार वार रस का काश अंत न पार सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बेआप कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते भय निहाल सारंग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अनपाता कट कट पूर्ण कर बिस्थीरन जल तरंग स्यो रचन किया अब रस माने भोग कटाने आन ना बिया कोथिया हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता नानक दर्श लीना ज्यो जल मीना सब देखिए अनपह का दाता कौन उपमा देओ कमल बढ़ाई पूर्ण पूर रहो सर्ब ठाई पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन जब खिंचे तब शाई क्यों ना अराध हो मिल कर साधु हो करी मोहतक बेला आई अर्थ दर्ब सब जो किस दिस संग ना कछु हूं जाई कहो नानक हर हर अराध हो।

ऐसा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देसा बंधन ते मुक्ता काट काट जुगता कह ना सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सोरदा जे चरण बसाया चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गुआया भया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख नाठा सुख घर मह बूठा महा आनंद सह जाया कहो नानक मैं पूरा पाया कर कृपा अपने पह आया सारंग की वार महला चौथा राय महमे हसने की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला दूजा गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़ै अवर न कुंजी हाथ महला पहला ना पी जय रागी ना दी वेद ना पी जय सुरती ज्ञानी जो ना पी जय सोगी की तैरोज ना पी जय रूपी माली रंग ना पी जय तीत पवे नंग ना पी जय दाती की तै पुन ना पी जय बाहर बैठिया सुन ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर ना पी जय केते हो धूड़ लेखा लिखिए मन कै पाए नानक पी जय साचै नाए महला पहला नव शे खटका करे विचार निस दिन उचरे पार अठार तिन पी अंत न पाया तोहे नाम बिहून मुक्त क्यों होए नाभ वस्त ब्रह्म अंत न जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिने आप उपाया आपे खेल रचायोन सब जगत सबाया त्रै गुण आप सिरजियन माया मोह वधाया गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया नानक सच वरतदा सब सच समाया।

देखै तंदे लाई, किसै थोड़ा किसै अगला, खाली कोई नाही। आवह नंगे जाहे नंगे, विचे करह वथार, नानक हुक्म ना जानियै अगे काई कार। महला पहला, जिन सथाप जिया को भेजै, जिन सथाप लै जावे, आपे थाप उथापै।

आए तले आवह नानका सदे उठी जाए। महला दूजा सिफत जिना को बख्शी है से पोते दार कुंजी जिन को दितिया तिना मिले पंडार। जह पंडारी हूं गुण निकल है ते की यह परवान नदर तिना को नानका नाम जिन्ना निशान पौड़ी। नाम निरंजन निर्मला सुनिए सुख होई सुन सुन मन वसाई है बूझे जन कोई। बहदिया उठदिया ना विसरे साचा सच सोई भगतां को नाम आधार है नामे सुख होई। नानक मन पन रव रहिया गुरमुख हर सोई। श्लोक महला पहला नानक तुलिया है।

मूर्ख की गिरही का सतदान राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना धुपे मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिया सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिया नौ निध मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिया संतोख हुए कबला चरण ते आवे नाए सुनिया सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमती ना उपाइये नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करहे पुकार दुख किया पंडा खुलिया सुख ना निकले ओ कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रतिया मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारिय है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग।

हुक्म चलाए आपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाए सच सभा दीबान पौड़ी नाए मने सुख उपजे नामे गत होई नाए मने पत पाई है हिरदय हर सोई नाए मने पवजल लंघी है फिर विघ्न ना होई नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई नानक सतगुर मिले नाओ मनी है जिन देव सोई श्लोक महला पहला पुरिया खंडा सिर करे एक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिके किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए अपने।

सहजे सुख पाया, नाए मन्ने शांत उपजे, हर मन वसाया, नानक नाम रतन है, गुरमुख हर त्याया। सलोक महला पहला, होर शरीक होवै कोई तेरा, तिस अगे तुद आखां, तुद अगे तुदै सलाही, मैं अंधे नौ सुजाखा। जेता आखन साही शब्दी, भाखिया भाई सुपहाई।

सब कारण करता करी देखे वारु वार जे चुपै जे मंगे दात करे दातार एक दाता सब मंगते फिर देखे आकार नानक।

हल्ला पहला मनो जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी मन अंधे ऊंधे कवल दिसन खरे कुरूप एक कह जान है कहया बुझ है ते नर सुगड़ स्वरूप एक ना नाद ना वेद ना गी रस रस कस ना जानंत एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत पौड़ी गुरमुख सब पवित है धन संपै माया हर अर्थ जो खर्च दे दें दे सुख पाया जो हर नाम त्याएं दे तिन तोट ना आया गुरमुखा नदरी आमदा माया सुट पाया नानक भगता होर चेतना आवे हर नाम समाया सलोक महला चौथा सतगुर सेवन से बड़ भागी सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी ग्रह कतंब मह सहज समाधि नानक नाम रते से सच्चे बैरागी महला चौथा गणत सेव ना होवे कीता थाए ना पाए शब्द साध ना आयो सच ना लगो पाओ सतगुर प्यारा ना लगे मन हटिया वै जाए जे एक विख अगाहां भरे ता दस विखां पछाहां जाए सतगुर की सेवा चाकरी जे चल है सतगुर पहाए आप गुआए सतगुरु।

पाई, घर मंदिर गच गीरियां किस साथ ना जाई, सोएन साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतुराई, शक्ति अमृत प्रकार करह बहु मैल वधाई, नानक जो देवै तिसह ना जाननी मन मुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, गे संतर भव थके भेख तारी, दूजे पाए नाओ कदे ना पाइन दुख लागा अत पारी, मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव है माया कै व्योहारी, अंदर कपट उदर भरन कै ताई पाठ पढ़े गवारी, सतगुर सेवे सो सुख पाई जिन्ह मैं विचों मारी, नानक पढ़ना गुणना इक नाओ है बूझै को बीचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना हर हुक्म पाया।

सहजे हर रस पीजै, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजै। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धरमाई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई, दुख खाना दुख भोगना गर्भै गर्भाई, नानक नाम ना चेत्यो अंतले छुड़ाई। सलोक महला तीजा, सहजे सुख सुत्ती शब्द समाए, आपे प्रब मेल लई गल लाए, दुबदा चूपी सहज सुपाए, अंतर नाम वसया मन आए, से कंठ लाए जे पन कढ़ाए, नानक जो तुर मिले से हुण आन मलाए। महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया क्या जप जप है होर, बिस्ता अंदर कीत से मुठे तंदे चोर, नानक नाम न ना विसरै झूठे लालच होर। पौड़ी नाम सलाहन नाम मन अस्त्र जग सोई, हिरदय हर हर चितवै दूजा नहीं कोई, रोम रोम हर कुचरै खिन खिन हर सोई, गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, नानक जीवन दा पुरख त्याया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावह होर, नानक जानपुर बदे मारी है ज्यो सन्नी उपर चोर। महला पंजवा, तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदिया हर नाउ, नानक नाम मिहूनिया तिन तन खावह काउ। पौड़ी नाम सलाहन भाउ कर निज महली वासा, उए बहुड़ जोन ना आमनी फिर होहे ना बनासा, हर से तीरंग रव रहे सब सास ग्रासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, उए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। सलोक महला तीजा, जिचर इहो मन लहरी विच है हऊ मैं बहुत अहंकार, शब्दै साध ना आवई नाम ना लगे प्यार, सेवा थाए ना पवई तिसकी खप खप हुए खुआर, नानक सेवक सोई आखी जो सिर धरे उतार, सतगुर का भाणा मन ले शब्द रखे उर धार। महला तीजा, सो जप तप सेवा चाकरी जो खसमै पावे, आपे बख्शे मेल ले आपत गुआवे, मिलिया कदी न विछड़े ज्योति ज्योत मलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिसे आप बुझावे। पौड़ी सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे ना चेतई जम काल सिर मारी, पाप विकार मनूर सब लदे बहु भारी, मार्ग बिकमंड रावणा क्यों तरिये तारी, नानक गुर राखे से उभरे हर नाम उधारी। सलोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जम्मै वार वार, मोह ठगौली पाईन बहु दूजै पाए विकार, एक गुर प्रसादी उभरे किस जन को करह सब नमस्कार, नानक अन दिन नाम त्याए तू अंतर जित पावह मूख द्वार। महला तीजा, माया मोहि वसारिया सच मरना हर नाम, तंदा करतिया जन्म गया अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूर्व लिखिया कराम। पौड़ी लेखा पढ़िया हर नाम फिर लेख ना होई, पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई, जम काल मिले दे भेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई, नानक अनहद धुनी दर वज दे

करनी पव कटिय नानक पावे पार महला तीजा सच पराणा ना थीय नाम ना मैला होए गुर कै भाणे जे चल बहुड़ ना आवन होए नानक नाम वसारे आवन जाना दुए पौड़ी मंगत जन जाचे दान हर देहु सुभाए हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए खिन पल घड़ी ना जीवऊं बिन देखे मरा माए सतगुर नाल दिखालिया रल रहिया सब थाए सुत्या आप उठाल दे नानक लिव लाए सलोक महला तीजा मनमुख बोलना।